मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम

0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना और आराधना की शुरुआत करते हैं मंगल मूर्ति राम भक्त परम ज्ञानी परम बलवान

इस संसार में जब हमसे अपना कोई प्रिय बहुत दूर होता है और उससे हमें मिलने की बहुत व्यग्रता होती है, बहुत तड़प होती है, तो हम सोचते हैं कि अपना संदेशा हम कैसे उस तक पहुंचाएं, क्या करें कि हमारे मन की विरह व्यथा वहाँ तक पहुंचे। ऐसे ही जब एक भक्त का मन प्रभु में लग जाता है तो वह विरह से व्याकुल हो जाता है और सोचता है कि ऐसा क्या करूँ कि मेरे भगवान तक मेरी विरह व्यथा पहुँचे। वो हर उपाय करता है, हर परिश्रम करता है उस माध्यम तक पहुँचने के लिए जिसके द्वारा उस प्रभु तक, उस परम सत्ता तक, उस ईश्वर तक, उस आत्मस्वरूप बोध तक पहुँचा जाए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001।

0: 4-2-4-2
1: ओ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 लो अभी फोन लगाता हूँ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 पर।

0: 4-2, 4-2। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
1: अगर हम चाहते हैं कि इस संसार में और उस ईश्वर के धाम में हमें सदैव सुख प्राप्त हो, तो बस एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है जो हमें परम तत्व की ओर लेके जाता है, और वो है ईश्वर की भक्ति। निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना हमें सदैव अपने परम कल्याण के मार्ग की ओर लेकर जाता है।

0: कृष्ण गोखले के विचार से किसी देश की उन्नति केवल एक विषय पर ही निर्भर नहीं करती है, अपितु समस्त विषयों को सुधारने तथा उन्नत करने की आवश्यकता हुआ करती है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा कला एवं प्रौद्योगिकी आदि सभी के अभ्युदय के बिना पूर्ण विकसित नहीं कहा जा सकता है। जैसे हमारा पूर्ण स्वस्थ विकास तभी स्वीकार किया जाता है जब शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण संतुलित विकास होता है। हमारे राष्ट्रीय जीवन में समर्पित और सच्चरित्र नागरिकों का निर्माण नवयुवकों के हृदय में पवित्र राष्ट्रीय विचारों का संचार किए बिना कदापि संभव नहीं है। हमारे नौनिहालों में श्रम के प्रति निष्ठा, ज्ञान के प्रति जिज्ञासु पिपासा और सच्चरित्रता के प्रति व्याहमोह उत्पन्न करना समकालीन समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता है। आज हमारे लिए धन की अपेक्षा चरित्र का अधिक महत्व है। मनुष्य का आभूषण शील है। जिसका चरित्र उत्तम है उसके आगे धन दौलत सब तुच्छ है। वे लोग जो सोने चांदी की जगमगाहट में अपने पापों को छिपाए रहते हैं वे कदापि उन लोगों की समता नहीं कर सकते जो अपने सरल स्वभाव, विनम्र वाणी और स्वच्छ आचरण को अनेकानेक व्यवधानों के बाद भी बिगड़ने नहीं देते हैं। क्या ऐसे सपूतों का मन भौतिक सुखों के आकर्षण से आबद्ध नहीं होता होगा? अच्छे आवास, भोजन, उच्च शिक्षा और पदों की मादक सुगंधि उन्हें नहीं सताती? समाज स्वीकृत मार्गों से हटकर धन अर्जित करने की अतृप्त लालसा क्या उन्हें नहीं मथती? इन सभी पीड़ाओं से वे अवश्य गुजरे होंगे और अकल्पनीय स्थिति के बाद ही वो अपने को बचा पाए होंगे। ऐसे सुधीजनों का निर्माण ज्ञान और चरित्र की आभा से मंडित शिक्षक ही कर सकता है। ऐसे शिक्षकों की कमी एक बहुत ही बड़ी चुनौती है जिसका निराकरण अणुव्रत के अनुसार करना होगा और छात्रों की स्मरण शक्ति में इसका योग देना होगा। इसके साथ ही शिक्षा केंद्रों को छोड़ने के बाद भी उन्हें ज्ञानार्जन में लगे रहना चाहिए, ऐसी धारणा होनी चाहिए। समस्त स्त्री जात के लिए तो ज्ञान रूपी दीपक की परम आवश्यकता है और उन्हें आधुनिक ढंग से शिक्षित किया जाना चाहिए। आधुनिक विज्ञान, आधुनिक कलाएं और अधुनातन चिंतन, ये सभी पद्धतियां अपनाकर ही नारी समाज में संपूर्णता और संप्रभुता उत्पन्न की जा सकती है। हम चाहे पूजा, नमाज, ध्यान, धारणा, अनुष्ठान आदि में आस्था न रखें, परमात्मा के साकार रूप के उपासक न हों और न ही तीर्थाटन करने में रुचि रखते हों, किंतु अपने दैनिक कार्य में एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का योगाभ्यास कर उसका प्रयास करें और इस तरह से अवश्य आगे बढ़ें ताकि हम ध्यानास्थ रहकर शुचिता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। व्यक्ति को अकारण किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखना चाहिए और अपने अंदर ऐसी सोच विकसित करनी चाहिए कि दुर्भाव को कभी भी दुर्भाव से नहीं समाप्त किया जा सकता है। सद्भाव और सहानुभूति ही उसके निराकरण का एकमात्र उपाय है।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले के विचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने कृषि जगत।

0: इसी के साथ आज की आराधना अब संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले के विचार।
1: समाज सेवा व राजनीति के निस्वार्थ योगी श्री गोपाल

किसान भाइयों को आज इस कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और बचाव विषय पर डॉक्टर पलक त्रिपाठी से की गई प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत।

0: किसान भाई, कृषि के क्षेत्र में अनाज उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण कार्य बाटे। बहुत से किसान भाई हमारे यहाँ जो पशुपालन कई के भाई दुग्ध उत्पादन कराता है, उससे 4 पैसा का आमदनी कराता है। और मौजूदा समय में देखा बरसात लगभग लगभग शुरू हो गई बाटे, और यह समय में केह तरह से किसान भाई जो भी पशुपालन करता है अपने पशुओं को सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि उनका जो पशु हैं वो रोग ग्रसित न हो। आज इस विषय में जानकारी दे के खातिर डॉक्टर पलक त्रिपाठी जी हैं, आप होलागढ़ में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हैं। डॉक्टर साहब, आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। हम सबसे पहले अपने किसान भाइयों के लिए जानना चाहब कि जो बरसात के मौसम बाटे, एहमा जौन अपने पशुपालक भैया रहे हैं, वो किस तरह से अपन व्यवस्था रखें कि जो उनका पशु वहाँ सुरक्षित रहें।
1: सर्वप्रथम किसान भाइयों को अपने पशुशाला पे या जहाँ पे पशुओं को रखने की व्यवस्था है उसका उचित ध्यान रखना है। उसकी शेड की मरम्मत करा लें, किसी तरीके से उसमें जल का प्रवेश ना हो सके। आसपास जितने भी जल निकासी की व्यवस्था है उसे दुरुस्त कर लें। जो आसपास की नालियाँ हों या कोई भी गड्ढे या इस तरीके का स्थान हो जहाँ पे जल भराव की समस्या हो सकती है, उन सभी को बेहतर तरीके से मरम्मत करा लें, गड्ढों को भर लें और नालियों को साफ़ कर लें। या मैं पुनः जोर देना चाहती हूँ कि जल निकासी की व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए। जहाँ भी जल भराव होगा वहाँ पर बैक्टीरिया होने के, जू, चिंचड़, किलनी या बहुत अनंत प्रकार के कीड़े होने के संभावना बनी रहती है और इसी से बहुत प्रकार की बीमारियां फैलती हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात ही है कि किस तरह से अपने पशुपालक भैया हरे अपन तैयारी रखें, लेकिन देखा जाता है कि जब बरसात के मौसम होता है तो हम अलग अलग तरह के भाई रोग के भी संभावना बन जाते। तो ये जो मौसम बाटे, इसमें किस तरह के रोग के संभावना बा, किस तरह के कितने प्रकार के रोग लग सकते हैं, और उनसे बचाव अपन किसान भाई कैसे करें, एक के बारे में जानकारी दें।
1: पहले तो मैं आपको रोगों के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले जो रोग हो सकता है वो गलघोंटू है, और गलघोंटू की समस्या का थोड़ा मैं लक्षण बता दूं। इसमें गले के पास जबड़े के नीचे सूजन हो सकता है, बहुत तेज ज्वर से पीड़ित होगा पशु, हाँफेगा, खाना नहीं खाएगा और इससे आपके दुग्ध उत्पादन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और पशुधन की हानि भी हो सकती है। यह बीमारी इतनी तेजी से फैलती है, यह पूरे शेड के साथ साथ पूरे गाँव में भी फैल सकती है। इसके बचाव के उपाय के लिए आपको नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करना चाहिए। बारिश के मौसम के पूर्व वहाँ पर टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है, तो आप पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। 6 महीने से बड़े पशु को आप उसका टीका लगवाएं। तो चिकित्सा के लिए नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें, वो आपको अच्छी एंटीबायोटिक और दवाइयों का उपयोग तो बताएंगे ही, साथ ही साथ आप एक सरकार द्वारा चल रही योजना मोबाइल वेटनरी यूनिट, जो चलित चिकित्सा आपके घर पर आके
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आपके पशुओं को रोग से निदान देगी। दूसरी जो प्रमुख बीमारी है वह खुरपका मुंहपका है, जिसे फूट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं। यह जो बीमारी विषाणु जनित है और यह भी HS की ही भांति बहुत तेजी से फैलती है। अगर यह एक अस्वस्थ पशु को हुई तो यह पूरे आपके पशुशाला और धीरे धीरे आपके सारे गांव को कवर कर सकती है। इसके इलाज के लिए भी आपको चिकित्सालय या MVU से संपर्क करना चाहिए। इनके बचाव के उपाय यही है कि अगर गलती से भी किसी अस्वस्थ पशु आपके यहाँ पाया जाता है या आपको लक्षण लगते हैं कि उसका लार बह रही है, मुंह में सड़न है, खुर में सड़न है, तो आप उसे अन्यत्र रखें, दूसरे स्वस्थ पशुओं से बहुत ही अलग रखें, उसका समय पर उपचार कराएं। समय पर उपचार मिलना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त बारिश में जल भराव की समस्या होती है। किसान भाई, पशुपालक भाई कई बार उसकी सफाई अच्छे से अपने पशुशाला की नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके खुर में सड़न हो जाती है, जिस सड़न को वो देख नहीं पाते और धीरे धीरे वो फुट रॉट नाम की एक समस्या हो जाती है। जब पशु चल नहीं पाता वह बैठ जाता है और धीरे धीरे यह समस्या उनको ज्वर और सिस्टेमिक डिसीज के रूप में आ जाती है, जिससे उनके दुग्ध उत्पादन में बहुत ज्यादा ही हानि होती है। इसके अतिरिक्त जो मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले भी बताया, जल भराव हो जाता है, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े का फ्लरिश होने का समय है, बारिश का समय जो होता है यह उनके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है, बहुत से बैक्टीरिया के लिए, बहुत से इंसेक्ट्स और परजीवी के लार्वा के लिए, तो आपको इससे बचाव करना चाहिए। क्योंकि पशु को बहुत ही साफ सुथरा रखना चाहिए, उनके ऊपर फिनाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर उसमें चिंचड़ी, चमोकन, किलनी, जू, इस तरीके का अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई समस्या है, तो नज़दीकी पशु चिकित्सालय से 1% साइपरमेथ्रीन या अन्य बहुत सी दवाइयां हैं, ये दवाइयां आप संपर्क करके जल्दी से जल्दी इलाज कराएं, नहीं तो ये आपके पशु का पूरा खून ले लेंगी और ये बहुत सारी बीमारियों को फैलाती हैं और जिससे आपके पशु की हानि हो जाएगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आप बताएं कि पशु का बीमार जब इस तरह से जब रोग होता है तो बुखार भी ओके आवत है, लेकिन देखा ही जाता कि भाई आमतौर पर किसान भाइन की पहचान नहीं रहती, क्योंकि खुरपका बीमारी

0: के मुंह को पा गए, कैसे घर से बाहर। बस इतना जाना था कि जब बुखार आ जाता है तो भाई घरेलू उपचार है उसके सामने, भाई धुआं करे लागत या जो और भी चीज़ें हैं उसका मालिश करते हैं जिससे कि ओकर बुखार उतर जाए। तो ये कितना कारगर बाटे, और खास करके जब ओके बुखार आवत बाटे तो यह समय कौन सी सावधानी बरतने से।
1: जो वो मालिश करते हैं वो दर्द वगैरह में अगर वो कुछ ऐसे यूज़ करके करते हैं तब तो फ़ायदेमंद है, पर बुखार में वो किसी तरीके का उसका उपयोग नहीं है। जो धुआं करने की बात है, नीम का धुआं लोग करते हैं, तो वो मक्खी मच्छर से बचाव है, क्योंकि मक्खी मच्छर भी कई तरीके की बीमारियों को फैलाती हैं। जैसे मनुष्य में मलेरिया फैलाती हैं, वैसे बहुत सारे पैरासाइट का जो है वाहक होते हैं मक्खी और मच्छर। और बारिश में खास करके एक बहुत बड़ी मक्खी होती है जिसे सांस बोलते हैं लोकल भाषा में, हमारे टैबिनस, उसे सर्रा नाम की बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। तो नीम का धुआं इस तरीके पर तो फायदेमंद होगा कि एक पशु से बीमारी दूसरे पशु में नहीं फैलेगी। इसके अलावा आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करना चाहिए और उसके बुखार को देखना चाहिए। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो पशु सुस्त रहेगा, पशु सिर झुका के खड़ा होगा, खाना ठीक से नहीं खाएगा, जो नॉर्मल एक एक्टिविटी या सक्रियता पशु की रहेगी वो नहीं होगी। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण इतर दिखे स्वस्थता से, तो आपको ज़रूर अपने पशु चिकित्सालय या MVU कहीं भी संपर्क करके उसका उचित इलाज लेना चाहिए।
0: बारिश के समय में खान पान के विशेष ध्यान दे के आवश्यकता होता है कि भाई जो हरा चारा हो तो उनमें भी बहुत कीड़ा मकोड़ा होते हैं, साथ साथ जो भूसा भी दिन जात बाटे, जो संतुलित आहार बाटे जिससे उनका हर तरह के पोषक तत्व तो भी मिल जाए, उनका दूध उत्पादन भी बना रहे, एक के बारे में थोड़ा तो प्रकाश डालें।
1: साधारणतः आपको अपने पहले जैसे मैं बताया, बारिश आने के पूर्व ही अगर आपके पास गोडाउन है, अगर आपके पास शेड है, आपके पास पर्याप्त जगह है, तो आपको सूखी जगह पर अपने एक अच्छे शेड के नीचे आपको उसका जमाव कर लेना चाहिए। आपके भूसा चूनी चोकर या हरा चारा आपको मिल सकता है। तो अगर आपके पास संभावना नहीं है तो आपको नज़दीकी जो आपके स्टोर है जहाँ से आपको मिल सकता है, वहाँ से आप 15-15-20 दिन के अंतराल पर खरीदें। पर किसी भी परिस्थिति में आप उसको ऐसा जमाव ना करें जहाँ पे गीली ज़मीन हो या गीला आपका चारा या भूसा हो, क्योंकि इससे हानि ये होगी कि वहाँ पे फंगस आ जाएगी, उससे और अफ्लाटॉक्सिकोसिस नाम की बीमारी होती है जो ज़्यादातर पशुपालक ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। और उसमें डायरिया हो जाएगी, धीरे धीरे वही ज्वर हो जाएगा, पूरे सिस्टम उसका काम करना बंद कर देंगे और दुग्ध की हानि तो बहुत ज़्यादा होगी, अंत में पशुधन की हानि हो जाएगी। ये छोटी बीमारी से स्टार्ट होगा जिसे लोग नोटिस नहीं करेंगे कि डायरिया हुआ है, पतला गोबर कर रहा है, पर धीरे धीरे यह पशु के अंत की ओर अग्रसर होगा। तो आपको सबसे पहले सूखा संतुलित चारा देना है, कम से कम 5 किलो भूसा रोज दें, हरा चारा उचित मात्रा में दें क्योंकि उस समय उपलब्ध भी है। पर जैसा आपने बताया कि हरा चारा हमेशा आप जल भराव की स्थिति है जहाँ पर तालाब हो, नदी हो, उसके आसपास का ना दें, वहाँ पे कीड़े मकोड़े होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पैरासाइट के लार्वा जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उनके होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। जब भी आप चारा दें तो उसे कम से कम 1 इंच 2 इंच ऊपर से कटिंग का दें, जो ज़मीन से 1 इंच 2 इंच ऊपर का हो, वो ज़मीन से जड़ के सहित निकाल के अपना दें। उसमें कीड़े मकोड़े और कुछ सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जिसे हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते।
0: बिल्कुल,
1: तो ये छोटी छोटी चीजें अगर पशुपालक भाई ध्यान रखेंगे और चूनी चोकर पर्याप्त मात्रा में दें, उस समय नमी का मौसम है, कभी ठंडा मौसम है, कभी गर्म मौसम है, तो इसको ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ 50 ग्राम का मिनरल मिक्सचर अवश्य दें।
0: चलो चलाओ, तो हम किसान भाइयों के लिए एक प्रश्न है कि जानना चाहे कि जो उनका सरकार की तरफ से कह कह तरह की सुविधा मिला था उसके बारे में जानकारी दें।
1: सबसे पहले तो आपके विकास खंड में नज़दीकी पशु चिकित्सालय उपलब्ध हैं, उसके अलावा न्याय पंचायत पे भी सेंटर उपलब्ध हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा 1962 एक नंबर है जिस पे आप कॉल करके मोबाइल वेटनरी यूनिट, एक चलित एम्बुलेंस बुला सकते हैं जो घर आपके आपका उपचार करेगी अपनी उपलब्धता के अनुसार। और वर्ष में बारिश के पूर्व हमेशा HS का निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है सरकार द्वारा, और साल में 2 बार खुरपका मुँहपका का टीकाकरण भी निःशुल्क किया जाता है। इन दो सुविधाओं का किसान भाइयों को लाभ लेना चाहिए।
0: आप जानकारी दें, जो हमारे पशुपालक भैया हैं निश्चित रूप से उनका से लाभ मिले। जानकारी दे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और बचाव विषय पर किसान भाई अभी डॉक्टर पलक त्रिपाठी से की गई प्रवीण मिश्र की ये बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। और इस कार्यक्रम में हम आपको डॉक्टर आशुतोष राय की वार्ता सुनवा रहे हैं। विषय है ईयरफोन के ज्यादा उपयोग से होने वाली हानियां।
1: ईयरफोन लगाने और उससे होने वाली हानियां, उसके बारे में आज बताना चाहूँगा। आजकल हम लोग देखते हैं कि हर इंसान, चाहे वो एडल्ट हो, बच्चा हो, ख़ासतौर से स्टूडेंट्स हैं, कोचिंग जाने वाले हैं, और इवन आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, तो ईयरफोन का जो यूज़ हो गया है, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। और गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके मेट्रोस तक, हर इंसान ईयरफोन कान में लगाए हुए आजकल चला जा रहा है। चाहे वो मेट्रो में बैठा है, बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, क्लास कर रहा है, म्यूज़िक भी लोग सुन रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो भी ईयरफोन लगे रहते हैं। तो आज मैं उसके फ़ायदे और नुकसान ईयरफोन से होने वाले बताना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि ईयरफोन इसलिए लगाया जाता है कि जो आपके बगल में बैठा हो या आपके साथ दूर हो, उसको आपकी म्यूज़िक या आपके क्लास या कुछ भी जो आप सुनना चाहते हो उसको सुनाई ना दे, वो डिस्टर्ब ना हो, तो आप दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, इसके लिए ईयरफोन लगाया जाता है। लेकिन उसके नुकसान ये हैं कि आपका जो कान का नेचुरल तरीका है आवाज़ सुनने का, वो नेचुरल नहीं रह जाता है। ईयरफोन में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे साउंड को कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने का, या मास्किंग होता है, बैकग्राउंड नॉइज़ मास्क, बहुत तरह के ईयरफोन्स आते हैं, बहुत कॉस्टली भी, बहुत सस्ते भी। तो जो सस्ते वाले होते हैं उनमें कोई भी फिल्टर नहीं होता है मास्किंग का, साउंड कंट्रोल का, अचानक से साउंड तेज़ हो गई, तो एक तो ये कारण है कि कान में बहुत सारे एकॉस्टिक इंजरी जिसको कहते हैं, साउंड से जो इंजरी, जैसे हम लोग देखते थे पहले कि दिवाली में पटाखे बजाते हैं लोग और पर्दा फट जाता है तेज़ पटाखे से, तो आजकल वो ईयरफोन से भी कभी कभी होने लगा है, जो लो क्वालिटी की ईयरफोन्स हैं। तो एक तो होता है कि पर्दा फट गया, दूसरा होता है कि कान की नसों में जो आवाज़ सुनती है नसें, उनमें एकॉस्टिक ट्रॉमा, उनमें साउंड से एक चोट लग जाती है कभी कभी तेज़ साउंड की वजह से, तो उसकी वजह से भी सुनाई देना कम हो जाता है या कान में आवाज़ आने लगती है, जिसको हम लोग टिनाइटस कहते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये आदमी में बहरापन हो जाता है, उसको सुनाई नहीं देता, और सिर दर्द भी होता है कभी कभी लोग, कुछ लोगों को बहुत सिर दर्द होता है। तीसरा ये कि कान में दर्द, अगर इल फिटिंग ईयरफोन्स हैं, जैसे रबड़ के होते हैं, कड़े रबड़ हैं, सिलिकॉन नहीं है जो ये ईयर के अंदर डालते हैं, तो वो चारों तरफ चमड़ा लाल कर देगा और दर्द करेगा, तो ये भी एक कारण है। दूसरा ये कि जब आप दिन भर कान में लगाए रहते हैं तो अंदर हवा नहीं जा रही है, मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, तो बरसात में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या वैसे भी उसमें और दर्द भी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, चमड़ा लाल हो जाता है, तो दर्द है, बहरापन है, कान में आवाज़ है, इन्फेक्शन है, ये सब चीज़ें ईयरफोन के मिसयूज़, यूज़ तो नहीं रोक सकते लेकिन मिसयूज़ से होता है, जिसको हमें देखना पड़ेगा। इसके तरीके ये हैं कि हम ईयरफोन एक तो अच्छी क्वालिटी का लें, उसमें कंजूसी ना करें, अपना कान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि ये बहुत सस्ता वाला लें, जैसे हम चश्मा अच्छा लगाते हैं, अच्छा लेंस लगाते हैं, उसी तरह कान में भी हमें अच्छा ईयरफोन लगाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, ब्रांडेड हो। दूसरा ये है सॉफ्ट हो उसका जो ईयर टिप हो, या फिर ईयरफोन की जगह हेडफोन लगाएं, जो ऊपर से लगता है उसमें कान अंदर से दबता कम है, कान के चमड़े कम दबता है, उसमें दर्द कम होता है, तो कान में अंदर मॉइस्चर या गंदगी ये जमा नहीं होती। ईयरफोन से क्या होता है, जो अंदर वैक्स बन रहा है, जो उसको हम लोग खूट कहते हैं, वो कभी कभी अंदर पुश हो जाता है, तो अच्छा ईयरफोन यूज़ करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, हर समय इस्तेमाल ना करें, साफ़ सुथरा रखें और अपने को बचा के रखें हाई साउंड से, बहुत लो वॉल्यूम पे सुने, इससे आपका कान बचा रहेगा।
0: ईयरफोन के ज्यादा उपयोग से होने वाली हानियां विषय पर अभी आप डॉक्टर आशुतोष राय की ये वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर सुनिएगा मनोज कुमार गुप्ता के गाय गीत और भजन और शाम 7:45 पर सात्विक मिश्रा के गाय भजन हम आपको सुनवाएंगे।

सुबह 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे सूरज सोनकर, सुषमा मौर्य और भरतलाल और साथी। दिन में 12:30 पर फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का प्रसारण होगा। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें परिचर्चा सुनेंगी। प्रतिभागी होंगे जयश्री आर्या, ममता पांडे, संगीता देवी और मधुबाला पांडे। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे राम बाबू यादव और साथी।

ग्रामीण भाई पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे श्यामाचरण पांडे से सुनेंगे रामायण पाठ। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र कुमार त्रिपाठी रसराज से सुनिएगा काव्य पाठ। रात 8:30 बजे सबरस और गजलों पर आधारित प्रोग्राम कहकशां का प्रसारण होगा रात 9:30 बजे। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण सुन रहे थे। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य जकार्तायां इंडोनेशिया देशस्य प्रधान

गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी ज्ञान और भक्ति की मीमांसा कर रहे हैं। प्रश्न है, ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है? काकभुशुंडी कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में माया द्वारा प्रेरित रिद्धि सिद्धियां विघ्न उपस्थित करती हैं। माया के अतिरिक्त देवगण भी बाधाएं उत्पन्न करने में पीछे नहीं रहते। इंद्रियां झरोखों के समान होती हैं, जिनसे आती विषय वासना रूपी हवा के प्रवाह को रोकना बड़ा कठिन होता है। इन झोंकों से ज्ञान रूपी दीपक का बुझ जाना भी बड़ा सरल और स्वाभाविक है। इस दीपक के बुझते ही जीव आवागमन के क्लेश भोगने लगता है। संतों और ज्ञानियों का मत है कि ज्ञान मार्ग से मोक्ष रूपी परम पद पाना अत्यंत कठिन है, किंतु ये पद भक्ति मार्ग से बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है।

लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन। सबसे पहले हम आपको बसंत बहार फिल्म की ये रचना सुनवा रहे हैं। रचना है एसएच बिहारी की, संगीत है शंकर जयकिशन का और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

अभी आप अनुराधा पौडवाल के स्वर में सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस भजन के बाद अब हम आपको अखंडा फिल्म में सपना पाठक की आवाज़ में किशन पालीवाल का लिखा हुआ ये भजन सुनवा रहे हैं। संगीत है थमन का।

0: आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के लिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महास

0: सचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित। स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने यह जानकारी दी।
1: इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्याग पत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है।
0: ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने पत्र के माध्यम से कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की घटना से वह बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट के गठन के साथ ही स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
2: 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी। इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा।
0: श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने श्रम विभाग की ओर से गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल तथा वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को सहमति दी है।
3: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है। मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी। 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
0: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक

0: में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को स्वीकृति दी गई। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
1: कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस सुविधा का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन को मंजूरी दी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल

0: और कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन को मंजूरी दी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी 12 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत उत्सवपूर्ण वातावरण में एक दिन में 35 करोड़ पौधों का वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ आयोजित किया जाएगा।
2: 12 जुलाई को इसके लिए हम लोगों ने तिथि तय की है। हर एक घंटे में कहां कहां पर कोई बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है ये भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। कितना वृक्षारोपण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है इसको भी हम वहां पर बताते हुए जाएंगे। आपको हर टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज के कालीघाट पर स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंगल की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि विकास करने के लिए विरासत का सम्मान करना जरूरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से टनकपुर से पीलीभीत और बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नई ट्रेन के चलने से पूर्णागिरी देवी मंदिर, नेपाल रीठा साहिब आदि कैलाश और नानक मत्ता साहिब तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी।
3: जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था पीलीभीत की धरती पे और उन्होंने कहा था कि पीलीभीत का कायाकल्प करके दे देंगे और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलने का काम रेल मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। ये ट्रेन से जुड़ाव उद्योग बनाता है। भारत की जनता इस पीलीभीत की धरती पे आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी के जरिए मिलेंगे।
1: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित। स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। आज हम आपको विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन सुनवा रहे हैं।

राग है भैरवी में ठुमरी। बोल है कैसी बजाई गई श्याम, तबले पर आपके साथ संगत की कौशल कुमार, कौशल किशोर भट्ट ने और हारमोनियम पर श्रीयुत श्रीकांत वैश्य ने। तो आइए सुने विदुषी मुनीर खातून बेगम की राग भैरवी में ठुमरी।

उप शास्त्रीय गायन के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे विदुषी मुनीर खातून बेगम की राग भैरवी में ठुमरी। तबले पर आपके साथ संगत की कौशल किशोर भट्ट ने और हारमोनियम पर आपके साथ संगत की श्रीयुत श्रीकांत वैश्य ने। इसके साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: बार हुआ तुम इतने दिन थी कहां, मैं
0: कहां?
1: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार हुआ।
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, प्रतीक्षा करें।
1: रेन बारिश के पानी की
2: आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज

0: जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners. We are
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स

0: भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बाइलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बाइलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं।

0: लीटर का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्स फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक

0: साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। NEET PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा। अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad. Warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including

0: जनाब मोदी सदर प्रबो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोजा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। खुसूसी खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए सदर प्रबो बजाते खुद हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंडोनेशिया की फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने इंडोनेशिया की फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद वजीर आजम के तैयारे को हिफाजती हिसार में भी फराहम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने इस्तकबाल को नहायत शानदार और दिल को छू लेने वाला करार देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि वो सदर प्रबोवो के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं ताकि भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार दी जा सके, जिसकी बुनियाद 2018 के उनके दौरे के दौरान रखी गई थी। वज़ीर आज़म ने जकार्ता आमद पर पेश किए गए रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी रिश्तों की अक्कासी करते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के तलबा पर मुश्तमिल समन्वय ग्रुप की जानिब से पेश किए गए भरतनाट्यम रक्स की भी सताइश की। भारतीय बिरादरी के तई तशक्कुर का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जकार्ता में उनके पुरतपाक इस्तकबाल ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। वह होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय बिरादरी ने उनका नहायत जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया। इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम मोदी का यह दौरा भारत और जुनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत इंडोनेशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान दिफा, समंदरी सिक्योरिटी, डिजिटल राबताकारी, अहम मादनियात और तजारत के शोबों में कई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ये जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के क्याम के बाद वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया का पहला दो तरफा दौरा है। ये दौरा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के सदर के यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खसूसी की हैसियत से भारत के दौरे के बाद हो रहा है। इंडोनेशिया वजीर आजम मोदी के 3 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है। इस दौरे के अगले मरहले में वो इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेंगे। जकार्ता से संदीप अंदास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और उम्मीद पैदा की है। नई दिल्ली में इमदाद बाहमी की वजारत के 5वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2021 में कायम की गई इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद, शफाफ, टेक्नोलॉजी पर मबनी और मुसाबिकती बना दिया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: उन्होंने कहा कि वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदेही की, नीज इसकी तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक जामे रोड मैप तैयार किया और ऐसी इस्लाहात नाफिज की जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को नई शक्ल दी। अमित शाह ने मजीद कहा कि जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी की सदसाला तकरीबात मनाएगा तो इमदाद बाहमी की तहरीक एक खुशहाल भारत की मजबूत बुनियाद साबित होगी। 6 जुलाई 2021 को इमदाद बाहमी की वजारत के क़याम को याद करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इस फैसले ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद के 75 साल के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया। जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी के शोबे को दहाइयों से नज़रअंदाज किया जा रहा था, ताहम इमदाद बाहमी की वजारत ने इसमें नई जान डाल दी है। उन्होंने इस तनकीद को भी मुस्तरद किया कि ये वजारत रियासतों के इख्तियारात में मुदाखलत करेगी। उन्होंने इमदाद बाहमी की वजारत के सुलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक मरबूत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया है जिसमें 30 मुख्तलिफ शोबों की 8,58,000 से ज्यादा इमदाद बाहमी सोसाइटियों और उनके 32 करोड़ अरकान का रिकॉर्ड शामिल है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल

0: सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट रुक ने डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इन दोनों ने राम मंदिर दान में मुबैना तौर पर बदउनवानी का मामला सामने आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफा दिया था। ट्रस्ट ने नई तकरूरी तक कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। उन्हीं की शिकायत की बुनियाद पर मुबैना तौर पर दान बेजाब्तगियों के मामले में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर करने का भी फैसला किया है और इसके लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। ट्रस्ट के खजांची गोविंद दियोगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी वाजह किया कि मंदिर को दान किए गए तमाम जेवरात और कीमती अशिया महफूज हैं और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है और तमाम अशिया की तफसीलात ट्रस्ट के पास महफूज हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बुहरान के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAACने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को हतमी और फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा। एक बाजाब्ता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके मुतालबात पूरे नहीं होते। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और POK में 600 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है। हजारों लोगों ने एहतजाज करके मुबैना नाकाबंदी को खत्म करने, मुवासलाती खदमात की बहाली, खुराक और दवाओं की बिला रुकावट सप्लाई, हिरासत में लिए गए लीडरों की रिहाई और 38 निकाती तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत JAAC पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। एहतजाज के मुंतजमीन का इल्जाम है कि 600 से ज्यादा कारकुनों और सियासी लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही खुराक, आटा और लाजमी दवाओं की सप्लाई को रोककर हुक्काम ने इक्तसादी नाकाबंदी लगा दी है। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजीर खारजा डॉक्टर SJ शंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर कतर से बहरीन पहुंचे हैं। ये उनके 4 खलीजी मुल्कों के दौरे का दूसरा मरहला है जो 5 से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के शाह को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक तमन्नाएं पेश की और बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी की सलामती, तहफ्फुज और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी के अफराद से मुलाकात भी की। अपने इस दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मजकूरा 4 खलीजी मुल्कों के वज़राए खारजा और आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जा सके और इलाकाई हालात व वाक़ियात के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। महाराष्ट्र के साहिली और घाट के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के घाट इलाकों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब मुंबई समेत साहिली अजला और शुमारी महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बाज़ मुकामात पर औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र इंतजामिया ने एहतियाती इकदाम किए हैं, जबकि NDRF और SDRF की को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के घाट के इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जहां लोनावाला में 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मिट्टी के तोदे खिसकने के खतरे के बायस कई सड़कों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद सियाहती मकामात को एहतियातन बंद कर दिया गया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसी बारिश की पेशगोई के बाद इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक, सतारा और पुणे के हसास घाट इलाकों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ मुंबई समेत कई साहिली जिलों में 100 سے 200 ملی میٹر بارش

0: रिकॉर्ड की गई जिससे मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मुल्क के शुमाल मशरक के बाज इलाकों, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। भारत के पहलवानों ने थाईलैंड के शहर पाटाया में हुए 20 साल की उम्र तक के एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहलवानों ने मजमूई तौर पर 20 तमगे अपने नाम किए, जिनमें 4 तलाई, 7 चांदी और 9 कांसे के तमगे शामिल हैं। भारत ने मुख्तलिफ वजन के जुमरों में मुसलसल उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खवातीन की कुश्ती और मर्दों के फ्री स्टाइल दोनों जुमरे के टीम मुकाबलों में टॉप 3 में जगह बनाई। फुटबॉल में स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल मिकेल मेरिनो ने दूसरे हाफ के पहले मिनट में किया। इधर पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐलान किया है कि वो अपनी टीम के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाने के बाद अगले फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर जकार्ता पहुंचे, सदर प्राबोवो सुबियांतो ने किया इस्तकबाल। इसी खबर को रोजनामा इनकलाब और दीगर अखबारात ने भी अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले में NIA की जिमनी चार्जशीट में हाफिज सईद मुलजिम करार, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप लिखता है, मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों पर 24 जुलाई को होगा जिमनी इंतखाब। फीफा आलमी कप में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से शिकस्त देकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकत दारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। और भारत में पाटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले

0: कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, प्रयागराज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज 7 जुलाई का दिन हम सब के लिए एक साथ कहीं खुशी का, गर्व का तो कहीं दुख का दिन भी है। आज का दिन मिठास के लिए भी जाना जाता है, यानी 7 जुलाई को ही हम विश्व चॉकलेट दिवस भी मनाते हैं। तो शुरू करते हैं खुशी की बात से। आज हम सबके चहेते क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म आज ही के दिन यानी 7 जुलाई 1981 में तब के रांची बिहार में और आज के झारखंड में हुआ था। हम सब इन्हें कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। उन्हें विश्व क्रिकेट में बेहतरीन फिनिशर माना जाता है और उनका हेलीकॉप्टर शॉट काफ़ी प्रसिद्ध है। महेंद्र सिंह धोनी अब तक के सभी कप्तानों में सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं और सबसे अच्छे विकेट कीपर भी। साल 2014 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। 10 बार चेन्नई सुपर किंग्स टीम को ये फाइनल तक लेकर गए हैं और 5 बार खिताब दिलवा चुके हैं। ये रिकॉर्ड इन्होंने रोहित शर्मा के साथ संयुक्त रूप से बनाया है। साल 2008 में धोनी को भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2009 में चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री और 2018 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त हुआ। धोनी को भारतीय प्रादेशिक सेना की पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद प्रदान किया गया है। ये सम्मान उन्हें भारतीय सेना ने 2011 में दिया था। 2025 में उन्हें ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आज हम अपने इस चहेते क्रिकेटर को आकाशवाणी परिवार की ओर से जन्मदिवस की शुभकामना देते हुए उन्हीं पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का ये गीत सुनवा रहे हैं।

अब बात उस जाबाज की जिसने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हम सब का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हम बात कर रहे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में हुआ था। 1 जून 1999 को कैप्टन बत्रा की टुकड़ी 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स को कारगिल युद्ध में भेजा गया। युद्ध में उनका कोड नेम शेर शाह था। इस युद्ध में उनकी टुकड़ी ने अदम्य साहस का परिचय दिया। सबसे पहले उन्हें 0.5140 चोटी को जीतना था। इस चोटी को जीतना आसान नहीं था, बिल्कुल खड़ी ढलान और दुश्मन ऊपर से भारी गोलीबारी कर रहा था। विक्रम बत्रा ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे होकर आमने सामने की लड़ाई में कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और 20 जून 1999 की रात 3:30 बजे इस 5140 चोटी पर जीत हासिल की। इस जीत के बाद अपने रेडियो संदेश में उनका ये ऐतिहासिक संदेश सुना गया, ये दिल मांगे मोर। इस जीत के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया और अगला सबसे मुश्किल मिशन 4875 पर कब्जा करना था, क्योंकि चोटी दोनों तरफ से खड़ी ढलान थी। दुश्मन की जबरदस्त नाकेबंदी के बाद भी कैप्टन बत्रा ने अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन के बंकरों पर धावा बोल दिया और अपने एक घायल सैनिक को बचाते हुए 7 जुलाई 1999 को सर्वोच्च बलिदान दिया। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने वीरता का परिचय दिया। मात्र 24 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने प्यारे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा था, या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। कैप्टन बत्रा ने अपनी बात पूरी की और तिरंगे में लिपट कर आए। देश के इस बहादुर सपूत पर हम सभी देशवासियों को गर्व है।

माहौल थोड़ा गमगीन हो गया है, उससे बाहर निकलते हैं, थोड़ा मुंह मीठा करते हैं, बात करते हैं विश्व चॉकलेट दिवस की। विश्व चॉकलेट दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई साल 2009 से। इसके इतिहास के बारे में बात करें तो 1550 में ये यूरोप में पहली बार अस्तित्व में आया। क्रमिक परिवर्तन होते हुए आज हम सबके लिए चॉकलेट हर तरह की खुशी मनाने में प्रयोग में लाया जाता है।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किस

0: मांगा तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: Yeah, wanna feel that? Come on, girl.
6: फिल्म संगीत का ये पहला गाना हम आपको चॉकलेट फिल्म से सुनवा रहे हैं। सोनू निगम की आवाज़ है, मयूर पुरी के बोल, प्रीतम का संगीत।
5: Refresh.

आप सुन रहे थे कॉकटेल फिल्म में बेनी दयाल और शाल मलिक खोलगड़े की आवाज़ों में इशाद कामिल की बोल। धुन तैयार की थी प्रीतम ने। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको शब्द फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं। आवाज़ है विशाल दादलानी और सुनीत चौहान की। इशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। हमारे अगले प्रसारण के लिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अलीगढ़ और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनेश सिंह का।
1: अलीगढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा ग्राम सचिवालयों को और अधिक प्रभावी बनाने, ग्रामीणों को राजस्व सेवाएं उनके गांव में ही सुलभ कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद के सभी ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर जारी कर दिया है। निर्धारित रोस्टर के अनुसार लेखपाल अपने आवंटित ग्राम सचिवालयों में नियमित रूप से बैठक, आमजन की राजस्व संबंधी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम सचिवालयों को ग्रामीण जनसेवा का प्रभावी केंद्र बनाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम सचिवालय में लेखपालों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर लागू किया गया है। इससे ग्रामीणों को आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, वरासत, भू अभिलेख सत्यापन तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक रूप से तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एडीएम प्रशासन सौरभ भट्ट ने बताया कि लेखपाल अपने निर्धारित दिवस एवं समय पर ग्राम सचिवालयों में उपस्थित रहकर राजस्व संबंधी प्रकरणों में आवश्यक मार्गदर्शन, अभिलेखों का सत्यापन, जांच एवं

0: अन्य प्रशासनिक कार्य संपादित करेंगे। इसे राजस्व सेवाओं के निस्तारण में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा ग्रामीणों को समयबद्ध सेवाओं का लाभ मिलेगा। सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदारों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी रोस्टर का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही प्रत्येक ग्राम सचिवालय में रोस्टर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए ताकि ग्रामीणों को लेखपाल की उपलब्धता की पूर्व जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर अलीगढ़ में अस्मिता साइकिलिंग का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस कंट्रोल रूम सेवा भवन से हुई। साइकिल रैली सेवा भवन से विभिन्न मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एसएसपी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी साइकिल चलाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। युवाओं ने पूरे जोश के साथ भाग लिया और कार्यक्रम में फिटनेस व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामघाट रोड स्थित RAF 104 बटालियन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, जवानों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर बटालियन के कमांडेंट विनोद कुमार ने परिसर में पौधा रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ अन्य अधिकारियों एवं जवानों ने भी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में शामिल नल्ले मुन्ने बच्चों ने भी उत्साह पूर्वक वृक्षारोपण किया और स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता का संकल्प लिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधों की नियमित देखभाल करने तथा उन्हें वृक्ष के रूप में विकसित करने का प्रण लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की इगलास तहसील के कस्बा वेसवा निवासी भारतीय नौसेना के जाबाज मरीन कमांडो राम गोयल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2024 में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन चुंतावाड़ी के दौरान भारी गोलाबारी के बीच अदम्य साहस, असाधारण वीरता और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च समर्पण का परिचय देने पर उन्हें देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार में शामिल शौर्य चक्र प्रदान किया गया। देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले इस वीर सपूत ने न केवल भारतीय नौसेना बल्कि पूरे अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। वेसवा से राष्ट्रपति भवन तक यह सम्मान हर युवा के लिए प्रेरणा है। अलीगढ़ में 7 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब जिले से भी नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बनकर तैयार होंगे। उच्च कोटि के कोचों की देखरेख में खिलाड़ी अपने खेल में निखार लाएंगे, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है,
1: स्मार्ट सिटी अलीगढ़ द्वारा लगभग 60 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें नेशनल लेवल का ऑल वेदर हीटेड स्विमिंग पूल है। इसके अलावा 4 उसमें बैडमिंटन कोर्ट हैं, इसके अलावा उसमें बास्केटबॉल कोर्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं जैसे पिकल बॉल इत्यादि हैं, उनको लाया जा रहा है। लगभग 550 लोगों के बैठने की उसमें दर्शक भीड़ है।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफलता पूर्वक 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के नगरीय विकास विभाग के मार्गदर्शन में डूंडा स्थित कार्यालय सभागार में पीएम स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।
2: अलीगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
3: झांसी प्रशासन ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों तथा जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में विभागवार समीक्षा बैठकों का आयोजन, अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा की गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जनपद में उत्साहपूर्ण मनाया गया। ऐतिहासिक झांसी के लिए परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागिता की। उन्होंने योग को स्वास्थ्य जीवन का आधार बताते हुए जनपद वासियों से नियमित योग अपनाने का आह्वान किया। जिले के सभी विकास खंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों में भी सामूहिक योग अभ्यास आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने झांसी प्रवास के दौरान मंडलीय विकास एवं कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अवैध खनन, भू माफिया, ओवरलोडिंग तथा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही झांसी में प्रारंभ किए गए जनसंवाद मॉडल की सराहना करते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा की। विकास परियोजनाओं में

0: प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानसून को देखते हुए संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया गया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, स्वच्छता अभियान तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर लोगों को बीमारी से बचाव के उपाय बताए। महिला एवं बाल विकास तथा पोषण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार ने झांसी की उपलब्धियों की सराहना की। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री ने जिले में जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, ICDS, कुपोषण उन्मूलन तथा आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार तथा आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। जल संरक्षण एवं पेयजल उपलब्धता के क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। कई ग्राम पंचायतों में ग्रामीण समुदाय ने स्वयं पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी, जिससे जन भागीदारी आधारित जल प्रबंधन को नई दिशा मिली। शिक्षा के क्षेत्र में नए शैक्षिक सत्र के मद्देनजर स्कूल चलो अभियान, नामांकन अभियान तथा विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की गई। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं 100% नामांकन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में झांसी को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य जारी रहा। प्रशासन द्वारा निवेश औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजन करने के प्रयास लगातार जारी है। कृषि विभाग की खरीफ फसलों की तैयारी को लेकर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना तथा कृषि यंत्रीकरण योजना की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण, संपर्क मार्ग निर्माण तथा रोजगार सृजन के कार्य में तेजी लाई गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पूरे जिले में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। सरकारी विभागों, विद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों ने पौधारोपण कर हरित झांसी के निर्माण का संकल्प लिया। श्रम विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से झांसी ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। जिले के सभी 496 ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे झांसी उत्तर प्रदेश का पहला एक ऐसा जिला बनने की दिशा में असर हुआ जहां ग्रामीण क्षेत्र बाल श्रम मुक्त घोषित किए गए। इस अभियान के अंतर्गत हजारों बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ा गया और उनके परिवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी अलीगढ़ और झांसी जिलों की खबरें। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में देशगान।

अभी आप समूह स्वरों में देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा, प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपका मेजबान फरीदुल्ला खान हाजिर है। हमारा पुरखलूस अदाब कबूल हो, आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ऐसे ही अनगिनत शेरों, अनगिनत गज़लों के मालिक जिगर मुरादाबादी, जिन्होंने अपनी गज़लों से अपना नाम, शहरे जिगर का नाम रोशन किया। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। सामीन, कुछ शख्सियात का नाम रहती दुनिया तक तारीख के औराख में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाता है, उन्हीं में ये शख्सियत जिगर साहब भी शामिल हैं। आज हम इस प्रोग्राम में लेकर हाजिर हुए हैं जिगर मुरादाबादी की गज़ल गोई। आज के हमारे मुकर्रर हैं डॉक्टर मिज़बा अहमद सिद्दीकी। समात कीजिए ये तकरीर।
1: शेख मोहम्मद अली सिकंदर सिद्दीकी, मुतखल्लिस बजिगर मुरादाबादी, 15 अप्रैल 1890 में पैदा हुए और 9 सितंबर 1960 में वफात पा गए। मगर इस कलील अरसे में जिगर मुरादाबादी जिगर सोजी व जिगर कावी करते हुए उर्दू गज़ल को वो मुकाम अता कर गए जिस पर प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। जिगर मुरादाबादी बुनियादी तौर पर गज़ल के एक वहबी और वजदानी शायर थे। मुझे उर्दू शेर

0: हसरत दाग की रोशनी में करना चाहिए, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि जिगर की आवाज़ इस बिरादरी में सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ बाजगश्त नहीं है, अपनी लय और अपना जीरो बम भी रखती है। इक्तबास खत्म। मैं सुरूर साहब के इस बयान से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। हमें जिगर के यहाँ जगह जगह गालिब व इकबाल का धोखा होता है, मगर इस पर जिगर की एक इनफरादियत भी है कि इनकी आवाज़ पूरी तरह अपनी आवाज़ है, और जिगर का वो भी अंदाज़े बयान और ही है। देखिए गालिब के मुकाबले में ये गज़ल। सहने काबा न सही, कुए सनम खाना न सही, खाक उड़ानी है तो फिर कोई भी वीराना न सही, जिंदगी तल्ख हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं, इसमें कुछ चाशनीए मशरबे रिंदाना सही, अपनी शोरीदा मिजाजी को कहाँ ले जाऊँ, तेरा ईमान न सही, तेरा इशारा न सही, हुस्न खुद पर्दा कुशाए रुख मकसूद तो है, इश्क को हौसला अर्ज तमन्ना न सही, हुस्न अजल हुस्न यकीन आसमान कतरा जर्रा तूफान बंदगी फितरत इंसानी सजदा जबीन पस्ती और मुकाम अर्श बरी ज़ौक यकीन इश्क जिंदा व पाइंदा वगैरह वगैरह तमाम ही अल्लामा इकबाल के ख़ास इस्तियारे हैं, मगर जिगर मुरादाबादी ने इन्हें अपने यहाँ इस्तेमाल करके और अपना मखसूस रंग देकर एक हुस्न पैदा किया है। और यहाँ तो जिगर मुरादाबादी ने अल्लामा इकबाल के पूरे शिकवे का जवाब सिर्फ एक शेर में ही भरपूर अंदाज में दे दिया है कि हमें शिकवे थे क्या क्या उनसे, लेकिन हम ही साबित हुए ऐसा फरामोश। प्रोफेसर आलम सुरूर साहब ने जिगर से मुतालिक एक बहुत ही अहम बात ये कही है कि पहले तो ये सोचना चाहिए कि जिगर के यहाँ कोई मुनफरिद कारनामा, कोई अनोखी आवाज़, कोई अहम नक्श ऐसा भी है जो इनसे पहले या तो न हो या इनकी वजह से रोशन हो गया हो। ये एक मुसलमा हकीकत है कि हर बड़ा और साहिब फिक्र फन शायर या अदीब कोई न कोई मुनफरिद कारनामा, कोई ना कोई अनोखी आवाज़ और कोई बहुत अहम नक्श ज़रूर छोड़ता है, जिसके सबब वो अपनी अलग एक पहचान लगता है। इसकी आवाज़ हज़ारों आवाज़ों में पहचानी जाती है, इसका नक्श हर नक्श में अपनी अलग आबोताब रखता है, और ये मामला उर्दू शायरी के अमीक मुताले से अच्छी तरह बयक नज़र वाज़े हो जाता है। इन सारी आवाज़ों में इश्क हकीकी की चाशनी से लबरेज और रिंदी और सरमस्ती से भरी एक आवाज़ है, और ये आवाज़ है जिगर मुरादाबादी की, और यही इनकी इनफरादियत है। इसी सिलसिले में एक मिसाल पेश करता हूँ कि उर्दू फारसी के तमाम ही शायरों ने रकीब को अपना दुश्मन माना है। मेरे नज़दीक भी एक हकीकत है, मगर ये एक हकीकत है, मगर जिगर मुरादाबादी ने रकीब को क्या अहमियत दी है सुनिए। वो हज़ार दुश्मने जहाँ सही, मुझे फिर भी गैर अजीज़ है, जिसे खाके पा तेरी छू गई वो बड़ा भी हो तो बुरा नहीं। अब जिगर मुरादाबादी के कुलिया से चंद शेर गज़लिया अशार के पेश खिदमत करने की इजाज़त चाहूँगा। फिर दिल से कसदे कूचे जाना किए हुए, रग रग में नेशे इश्क को पिन्हा किए हुए, फिर रज़्ज़ते ख्याल से घबरा रहा है दिल, हर वसते ख्याल को जिंदा किए हुए, फिर जी ये चाहता है कि बैठे रहे जिगर, उनकी नज़र से भी उन्हें पिन्हा किए हुए, अरसा हुआ कि रस्म मोहब्बत बदल गई, दामन से अब मामले चश्मे तर कहाँ। मैंने सिर्फ मज़मून की तवालत के सबब अपने कलम को बाज रखा। आखिर में इस बात की भी वजाहत कर दूं कि हर बड़े शायर या अदीब को अपनी अहमियत व इफादियत का अंदाज़ा हो जाता है। हज़रत जिगर साहब को भी यह अंदाज़ा पूरी तरह और बजा तौर पर हो गया था, तभी उन्होंने ये ज़रूल मसल शेर कहा जो अहले उर्दू अपने हर मोहसिन व मुरब्बी के साथ चश्मा कर देते हैं। जान कर मिन जुमले खासाने मै खाना मुझे, मुद्दतो रोया करेंगे जामो पैमाना मुझे।
1: अभी आप ये तकरीर समाप्त कर रहे थे जिगर मुरादाबादी की गज़ल कोई। मुकर्रिर थे डॉक्टर मिसबा अहमद सिद्दीकी। आइए सामीन अब अदब

0: से जुड़ी हुई एक और सिन्फ और बहुत खूबसूरत सिन्फ सिन्फ़े शायरी की बात करते हैं। इसमें गज़ल, जिसको हर दौर में पसंद किया जाता रहा है, गज़ल हुस्न व इश्क की तर्जुमान है। और अगर ये ख़ुद कलाम शायर की शक्ल में हो तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है और चार चांद लग जाते हैं। तो आइए कलाम शायर के तहत समात करते हैं डॉक्टर जावेदुल्ला खां जावेद नसीमी से उनका ताज़ा तरीन कलाम।
1: गज़ल के चंद अशआर पेश खिदमत हैं। मतला समात फरमाइए। अर्ज़ करता हूँ कि कब भला उसकी ज़बाँ लफ्ज़े अमां बोलती है, कब भला उसकी ज़बाँ लफ्ज़े अमां बोलती है, जब भी खुलती है तो बस शोला फशां बोलती है, जब भी खुलती है तो बस शोला फशां बोलती है। अपना अंजाम बता दे तो जिएगा फिर कौन। आखिरी शेर है, जमात फरमाएं कि जिस पे तारीकी ये शब रश्क किया करती थी, अब तो उस जुल्फ में भी कहा कशां बोलती है, कब भला उसकी जबां लफ्ज़े अमां बोलती है, जब भी खुलती है तो बस शोला फिशां बोलती है। एक दूसरी गज़ल के चंद शेर समात फरमान। मतला पेश खिदमत है कि गैर तो साहिब किरदार समझते हैं मुझे, गैर तो साहिब किरदार समझते हैं मुझे, ये जो अपने हैं गुनाहगार समझते हैं मुझे, गैर तो साहिब किरदार समझते हैं मुझे, ये जो अपने हैं गुनाहगार समझते हैं मुझे। और जिसकी राहों से हटाता हूँ मैं काटे वो लोग, जिनकी राहों से हटाता हूँ मैं काटे वो लोग, अपने तलुओं में चुभा खार समझते हैं मुझे, जिनकी राहों से हटाता हूँ मैं काटे वो लोग, अपने तलुओं में चुभा खार समझते हैं मुझे। और मुझको महदूद नज़र वाले हैं कहते बेसूद, और पारिख जो हैं शाहकार समझते हैं मुझे। और दरमियाँ अपने नहीं, ये शेर ख़ास तौर पर समात फरमाएंगे, दरमियाँ अपने नहीं रस्म दिलाजारी तक, दरमियाँ अपने नहीं रस्म दिलाजारी तक, लोग क्यों तेरा गिरफ्तार समझते हैं मुझे, लोग क्यों तेरा गिरफ्तार समझते हैं मुझे। और मेरे साये से भी बचकर हैं गुजरते अहबाब, मेरे साये से भी बचकर हैं गुजरते अहबाब, यानी गिरती हुई दीवार समझते हैं मुझे, मेरे साये से भी बचकर हैं गुजरते अहबाब, यानी गिरती हुई दीवार समझते हैं मुझे। आखिरी शेर मक्ते का शेर समाज फरमा लें कि मैं समझता हूँ जिन्हें राहते जाँ ए जावेद, मैं समझता हूँ जिन्हें राहते जाँ ए जावेद, जान का अपनी वो आज़ार समझते हैं मुझे, मैं समझता हूँ जिन्हें राहते जाँ ए जावेद, जान का अपनी वो आज़ार समझते हैं मुझे, गैर तो साहिब किरदार समझते हैं मुझे, ये जो अपने हैं गुनाहगार समझते हैं मुझे। एक और गज़ल है, देखिए शायद पसंद आए। मतलब पेश खिदमत के ज़बानों पर सभी की अपना चर्चा छोड़ आए हैं, जबानों पर सभी की अपना चर्चा छोड़ आए हैं, हम उसकी बज्म में एक ऐसा किस्सा छोड़ आए हैं, जबानों पर सभी की अपना चर्चा छोड़ आए हैं, हम उसकी बज्म में एक ऐसा किस्सा छोड़ आए हैं, यही है फिक्र झेली होंगी कैसे बारिशें अब के, यही है फिक्र झेली होंगी कैसे बारिशें अब के, हम अपने घर की दीवारों को झुकता छोड़ आए हैं, हम अपने घर की दीवारों को झुकता छोड़ आए हैं। और ये शेर ख़ास तौर पर समात फरमा लें कि चलो हम लौट तो जाएं, मगर उनसे कहेंगे क्या, चलो हम लौट तो जाएं, मगर उनसे कहेंगे क्या कि जिन आँखों में सुंदर घर का सपना छोड़ आए हैं, चलो हम लौट तो जाएं, मगर उनसे कहेंगे क्या कि जिन आँखों में सुंदर घर का सपना छोड़ आए हैं, जो याद आता है अपनों से सवा परदेश में हमको, जो याद आता है अपनों से सवा परदेश में हमको, हम अपने देश में एक ऐसा रिश्ता छोड़ आए हैं, जो याद आता है अपनों से सवा परदेश में हमको, हम अपने देश में एक ऐसा रिश्ता छोड़ आए हैं। आखिरी शेर इस गज़ल का कि हमारी प्यास को क्या आजमाएंगे तेरे सागर, हमारी प्यास को क्या आजमाएंगे तेरे सागर, हम अपनी राह तकता एक दरिया छोड़ आए हैं, हमारी प्यास को क्या आजमाएंगे तेरे सागर, हम अपना राह तकता एक दरिया छोड़ आए हैं, जबानों पर सभी की अपना चर्चा छोड़ आए हैं, हम उसकी बज्म में एक ऐसा किस्सा छोड़ आए हैं। चंद शेर एक अलग से किस्म के खालिस गज़ल के शेर हैं, और समात फरमा लें कि देखिए।

0: ये बिल्कुल खालिस गजल के, मैंने तो तुमसे मजाकन थी चुरा ली आंखें, मैंने तो तुमसे मजाकन थी चुरा ली आंखें, तुमने तो वाकई रो रो के सुजा ली आंखें, तुमने तो वाकई रो रो के सुजा ली आंखें, और ढूंढता कैसे उन आंखों में मोहब्बत की चमक, ढूंढता कैसे उन आंखों में मोहब्बत की चमक, मुझसे मिलते ही नजर उसने झुका ली आंखें, मुझसे मिलते ही नजर उसने झुका ली आंखें। और ये शेर देखें खास तौर पे, के ख्वाब आएंगे कहाँ ऐसे सुलगते घर में, ख्वाब आएंगे कहाँ ऐसे सुलगते घर में, रात भर जाग के क्यों तुमने जला ली आंखें, ख्वाब आएंगे कहाँ ऐसे सुलगते घर में, रात भर जाग के क्यों तुमने जला ली आंखें। वो जो कहता था कि जी लेगा बिछड़ कर मुझसे, शेर देखेंगे, वो जो कहता था कि जी लेगा बिछड़ कर मुझसे, उसने एक दिन में ही रो रो के सुजा ली आंखें, उसने एक दिन में ही रो रो के सुजा ली आंखें। और दूर जाकर बड़ा नाजुक से शेर है कि दूर जाकर भी न रोया तो वो मर जाएगा, दूर जाकर भी न रोया तो वो मर जाएगा, वक्त रुखसत तो है पत्थर की बना ली आंखें, दूर जाकर भी ना रोया तो वो मर जाएगा, वक्त रुखसत तो है पत्थर की बना ली आंखें। और खीरगी अब जो मुकद्दर है तो हैरत क्या है, खीरगी अब जो मुकद्दर है तो हैरत क्या है, क्यों भला आपने सूरज से लड़ा ली आंखें, क्यों भला आपने सूरज से लड़ा ली आंखें। और आखिरी शेर इस गजल का, कि जाने क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, जाने क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, उसने शर्मा के जो हाथों से छुपा ली आंखें, जाने क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, उसने शर्मा के जो हाथों से छुपा ली आंखें। मक्ता समात फरमा लें कि हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, और कहीं मैंने भी दानिश्ता बचा ली आंखें, हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, और कहीं मैंने भी दानिश्ता बचा ली आंखें, मैंने तो तुमसे मजाकन थी चुरा ली आंखें, तुमने तो वाकई रो रो के सुजा ली आंखें। दूर जाकर भी ना रोया तो वो मर जाएगा, वक्त रुखसत तो है पत्थर की बना ली आंखें। और खीरगी अब जो मुकद्दर है तो हैरत क्या है, खीरगी अब जो मुकद्दर है तो हैरत क्या है, क्यों भला आपने सूरज से लड़ा ली आंखें, क्यों भला आपने सूरज से लड़ा ली आंखें। और आखिरी शेर इस गजल का, कि जाने क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, जाने क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, उसने शर्मा के जो हाथों से छुपा ली आंखें, जाने क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, उसने शर्मा के जो हाथों से छुपा ली आंखें। मक्ता समात फरमा लें कि हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, और कहीं मैंने भी दानिश्ता बचा ली आंखें, हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, और कहीं मैंने भी दानिश्ता बचा ली आंखें, मैंने तो तुमसे मजाकन थी चुरा ली आंखें, तुमने तो वाकई रो रो के सुजा ली आंखें।
1: अभी आप डॉक्टर जावेद नसीमी के कलाम से महसूस हो रहे थे। और सामीन, ये प्रोग्राम आ पहुँचा है इख्तिताम की जानिब। अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नश्र किया जा रहा था। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700001424।
5: नंबर एक बार

0: फिर नोट करें 8700014242।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मनोज कुमार गुप्ता। हम आपको सुनवाएंगे इनके गाए गीत और भजन। सबसे पहले हम आपको मनोज कुमार गुप्ता के स्वर में सुनवा रहे हैं सूरदास जी का ये भजन।

0: सर्व स्नान का।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मनोज कुमार गुप्ता के गायक गीत और भजन। यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे समाचार, प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी

0: खुराक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने पीओजेके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता रविवार को तेज हो गई। मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों से गोलाबारी और झड़पों की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएगी। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने 6th स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के तटीय और घाटी क्षेत्रों में तेज बारिश जारी है। पालघर, रायगढ़ और नासिक तथा पुणे के घाटी क्षेत्रों के लिए मंगलवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का ये पहला गाना हम आपको बागी फिल्म से सुनवा रहे हैं। मीत ब्रदर्स मोनाली ठाकुर और अमाल मलिक की आवाज़ों में है। गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने, संगीत मीत ब्रदर्स का।

फिल्म संगीत में अब हम आपको गब्बर इज बैक फिल्म से मनोज यादव का लिखा हुआ गीत सुनवा रहे हैं। संगीत है चिरंतन भट्ट का, आवाजें हैं अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की।

श्रोताओं, आज हमारे इस खूबसूरत से शहर का मौसम भी कुछ ऐसा ही हो गया है कि बस बारिश में निकलकर भीगने का मन हो रहा है। हम तो नहीं निकल सकते भाई, हम स्टूडियो में हैं, लेकिन आप अगर हो सकते हैं तो ज़रूर बाहर निकलें और इस मौसम का आनंद उठाएं। बहुत दिनों से इतनी ज़बरदस्त जो गर्मी पड़ रही थी और सबको परेशान हाल कर रखा था इस गर्मी ने, उससे आज बहुत राहत मिली है। आज जो हमारे बादल है वो बहुत प्रसन्न है, इंद्र भगवान बहुत प्रसन्न है और खूब बारिश कर रहे हैं। बस थोड़ा बचा के कि हमारी तबीयत ना ख़राब हो जाए, आनंद हम लें लेकिन अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए। और सुनिए इस प्यारे से खूबसूरत से गीत को।

श्रोताओं, जब बारिश हो रही होती है तो कुछ गर्मा गर्म खाने की इच्छा होती है, जैसे फ्राइड कोई भी ऐसी चीज़, चाहे अब आपका बिरयानी जैसी कोई चीज़ हो, या ज़्यादातर समोसे और पकौड़े और चाट की लोगों को इच्छा हो जाती है खाने की। लेकिन इस मौसम का हमें आनंद लेना चाहिए, अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए खाएँ, थोड़ा संभल कर खाएँ। और बहुत से लोग तो घूमने भी निकल जाते हैं भीगने के लिए, क्यों उन्हें भीगना है। लेकिन हाँ, जब बारिश हो रही होती है तो गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि गाड़ियों के

फिसलने का डर रहता है। हालांकि आजकल बहुत ही टेक्निक्स एडवांस हो गई हैं, गाड़ियां भी ऐसी आ गई हैं जो स्किड नहीं करती, लेकिन फिर भी दुर्घटना की आशंका रहती है। इसलिए आनंद मनाएं, लेकिन हर जगह सावधानी अपनाएं, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी।

भाई बात तो सही है। इस भीषण गर्मी के बाद जो आज बारिश हो रही है और इंद्र देवता जो आज प्रसन्न हुए हैं हमारे प्रयागराज शहर पर, तो क्या बच्चे क्या बूढ़े और क्या यंग जनरेशन, हम सब खुश तो होंगे ही और मन बिल्कुल मयूर सा हो जाता है इसमें। मयूर से मतलब मन एकदम प्रसन्नता से आनंद से भर जाता है। इच्छा होती है कि मतलब क्या करें, वो समझ में ही नहीं आता है। लेकिन ऐसे में जो कुछ ऐसे प्रेमी जोड़े हैं जो इस खुशी में बाहर निकल पड़ते हैं, वो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मौसम सिर्फ़ और सिर्फ आनंद लेने के लिए है। क्योंकि सावधानी और जो हमारे अपने अपनी जो सीमाएं हैं उनमें रह के ही अगर हम कोई काम करते हैं तो वो काम अच्छा होता है और हमें आनंद भी देता है। इस कार्यक्रम में फिल्म संगीत का जो आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में है, फिल्म है मंजिल, गीत को लिखा है योगेश ने और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। आप सुनिए ये गीत

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए लोकगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको आज सुनवाएंगे सूरज सोनकर, सुषमा मौर्य और भरतलाल और साथियों के गायन लोकगीत। सबसे पहले हम आपको देवी गीत सुनवा रहे हैं सूरज सोनकर के स्वर में।

0: सुषमा मौर्या के गाए इस खेमटा के बाद अब हम आपको भरतलाल और साथियों के स्वर में ये गंगा गीत सुनवा रहे हैं।
1: अरे महिमा तुहार जाने, ए महिमा तुहार जाने, सागरों जगत

आप सुन रहे थे भरतलाल और साथियों के स्वर में ये कजरी। इसी के साथ लोकगीत अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस जोड़ी की जिसने नए जमाने के बॉलीवुड संगीत को एक नई परिभाषा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी यानी विशाल शेखर की। रॉक, सूफी और रोमांस का ऐसा फ्यूजन कि हर दिल झूम उठे। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं साल 2008 की फिल्म बचना ए हसीनों के इस सदाबहार टाइटल ट्रैक के साथ।

श्रोताओं, इस गाने में जो थिरकन है वो विशाल शेखर की असली पहचान है। पुराने क्लासिक को बिना उसकी आत्मा से छेड़छाड़ किए मॉडर्न बीट्स देना कोई इनसे सीखे। लेकिन दोस्तों, विशाल शेखर सिर्फ पार्टी एंथम्स के उस्ताद नहीं हैं। जब ये जोड़ी जज्बातों के तार छेड़ती है तो आंखें नम हो जाती हैं। फिल्म माय नेम इज़ खान का ये गाना सूफी संगीत और रूहानी सुकून का बेजोड़ मेल है। सुनिए और महसूस कीजिए।

राहत फतेह अली खां की आवाज और विशाल शेखर का वो लाजवाब कॉम्पोजिशन सीधे दिल को छू जाता है। चलिए थोड़ा सा माहौल बदलते हैं और रुख करते हैं साल 2012 की तरफ। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर याद है आपको? कॉलेज लाइफ, दोस्ती और वो बेहतरीन धुने। इस एल्बम ने युवाओं को एक नया डांस एंथम दिया। आइए सुनते हैं इस सुपरहिट ट्रैक को।

श्रोताओं, विशाल शेखर का संगीत सिर्फ धुनों का मेल नहीं बल्कि यादों का एक खूबसूरत कारवां है। उनकी हर धुन में जिंदगी का एक नया रंग नजर आता है।

श्रोताओं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए इस जोड़ी ने बॉलीवुड के बड़े सितारों और बड़े बैनर्स के लिए कालजयी संगीत तैयार किया। शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर सलमान खान की सुल्तान तक इन्होंने हर फिल्म को संगीत के जरिए एक नया मुकाम दिया।

अभी आप मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त को सुन रहे थे फिल्म काला बाजार में, और अब मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म का नाम है अनजाना।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप इस समय आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से सुन रहे हैं। और अब सुनिए अनवर और सुलक्षणा पंडित को, फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

और अब शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में सुनिए हसरत जयपुरी की रचना। फिल्म का नाम है उजाला और आवाजें मन्ना डे और लता मंगेशकर की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपने ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।

0: विभिन्न क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President, in Jakarta, Mr. Modi said, growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration.
2: Aaj humne defense exchange, disaster management aur industrial sahyog badhane par sahmati banayi. अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education, expressing confidence in the future of bilateral ties. He said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
2: हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high-quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK, the Jammu and Kashmir Joint Awami Action Committee has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. The sixth batch of pilgrims for the ongoing Sri Amarnath Ji Yatra was flagged off from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu early this morning amid tight security arrangements.

0: Our correspondent reports that a total of 8,815 pilgrims left for the Holy Cave Shrine in Kashmir. 8 people were killed and some others were missing after thunderstorms and gales brought by severe convective weather hit the eastern part of central China's Hubei province. According to a provincial emergency management authorities, thunderstorms, strong winds and tornadoes struck several cities last evening. In Huang Kong, 275 people were injured while over 400 residents were shifted to safer locations. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today over parts of coastal Karnataka, Gujarat, Konkan and Goa, Madhya Maharashtra, parts of Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, Interior Karnataka, Madhya Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim are also expected to experience heavy rainfall during the day. In men's cricket, India will take on hosts England in the third T20 International of the 5-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as new skipper Shreyas Iyer is yet to register a win under his captaincy. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% up in the forenoon session today. The Sensex climbed 307 points to 78,592, while the Nifty advanced 83 points to 24,514 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात में 10:30 पर और दिन में 12:15 पर आप विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन सुनेंगे। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश होगा दिन में 12:30 पर। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहने परिचर्चा सुनेंगी खेती बारी। प्रतिभागी होंगी जयश्री आर्या, ममता पांडे, संगीता देवी और मधुबाला पांडे। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम सुनिएगा दिन में 2:30 पर। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे राम बाबू यादव और साथियों के गाए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई विष्णु राजा के गाए लोकगीत सुनेंगे और रामायण पाठ सुनाएंगे श्यामा चरण पांडे। संस्कृत कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र कुमार त्रिपाठी से सुनिएगा उनका काव्य पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगे सात्विक मिश्रा। हमारा सबरस प्रोग्राम होगा रात में 8:30 पर और गजलों पर आधारित प्रोग्राम कहकशां आप सुनेंगे रात में 9:30 पर। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

और अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। संजय दिवाकर सूचित करते हैं कि खुशी दिवाकर दिनांक 11 मई सन 2026 से लापता हैं। खुशी दिवाकर की आयु लगभग 18 वर्ष, कद 5 फुट, इकहरा बदन रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। वो काले रंग की साड़ी पहने हुए हैं। खुशी दिवाकर के मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें। संजय दिवाकर, ग्राम रसूलपुर टप्पा, थाना सराय अकिल, जनपद कौशाम्बी। पता एक बार फिर सुन लीजिए, संजय।

दिवाकर, ग्राम रसूलपुर टप्पा, थाना सराय अकिल, जनपद कौशाम्बी। एक और खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। राम नरेश सूचित करते हैं कि प्रतिमा दिनांक 15 मई 2026 से लापता है। प्रतिमा की आयु लगभग 19 वर्ष, कद 152 सेंटीमीटर और रंग गोरा है। वो सलवार सूट पहने हुए हैं। प्रतिमा के मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें। राम नरेश, पुत्र कृष्णा, गड़बड़ा मजरा बिदाव, थाना कौशाम्बी। मोबाइल नंबर है 9670433613। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9670433613। अभी आप खोई हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन। प्रस्तुत है राग पीलू में ठुमरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्रीकांत पांडे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन सुन रहे थे। आप सुन रहे थे राग पीलू में ठुमरी। तबले पर संगत कर रहे थे श्रीकांत पांडे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश है प्रोग्राम हेलो फरमाइश। पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: हेलो फरमाइश, परम आदरणीय मधु दीदी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। आपकी आज कौन सी फरमाइश है?
1: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे मथुरा वृंदावन में बारिश नहीं हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेघों का आवाहन कर दें कि बरसो रे मेघा, मेघा बरसो रे मेघा।
0: जब ये कार्यक्रम प्रसारित हो तब तक बरखा बहार आ ही जाए।
1: जी जी दीदी, बस यही उम्मीद से ये गीत को पसंद किया हूँ
0: जी।
1: और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी प्रयागराज से प्रसारण हेतु।
0: चलिए तो आपको सुनवाते हैं गुरु फिल्म का ये गाना।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए।
1: हमारा नाम गुलाब चंद्र मिश्रा, ग्राम पचोखर, पोस्ट रामदयालगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। मैं गुलाब चंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ।
0: जी जी गुलाब जी, आपसे तो हमारी बातचीत होती रहती है, पिछली बार भी आपने कॉल किया था।
1: हाँ, हम सोचे अपने दीदी से कम से कम बात तो कर ले, हमें कितना अच्छा लगता है।
0: नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने प्रयास से आकाशवाणी में फोन मिलाते हैं और अपनी पसंद के गानों को सुनते हैं और हम सुनवाते हैं। तो बताइए आज आपकी कौन सी पसंद है?
1: फिल्म लावारिस का गाना है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
0: अच्छा,
1: मैं अमिताभ बच्चन की आवाज सुना।
0: चलिए तो ठीक है, आपको सुनवाने जा रहे हैं लावारिस फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार
1: मेरा नाम नितेश आर्या है। फिल्म
0: जी। नितेश आर्या जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे
1: का नाम है प्रेम कैदी।
0: जी।
1: गाने बोले साजना, साधना जिंदा है जी।
0: प्रियतमा ओ मेरी प्रियतमा, एस बी बाला सुब्रमण्यम और साधना सरगम की आवाज में ये गाना है।
1: जी जी आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: धन्यवाद नीतीश जी कि आप हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं और अपनी राय भी बताते हैं। ये ज़्यादा अच्छी बात है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम और भी अच्छे कार्यक्रमों को प्रसारित कर सकें। तो नीतीश जी, आपकी पसंद का प्रेम कैदी फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट हंडिया तहसील हंडिया थाना हंडिया गांव मगरा जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम।
0: जी प्रेमचंद जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैम फिल्म का नाम है क्रिस
0: जी,
1: और गाने के बोल है, धूप निकलती है जहां से, धूप निकलती है जहां से, धूप

0: की खूबसूरत सा प्यारा गाना सुनूंगी मैं, श्रेया घोषाल की आवाज में है मैं।
1: तो सुनिए अपनी पसंद का क्रिश फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, जिला प्रतापगढ़ से।
0: जी रोशनी जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम गाने के बोल रहे, जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ।
0: राजा भैया फिल्म का ये गाना है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमें ये नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आइए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रण लें। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अनेकता में एकता इसकी विशेषता है। आकाश में सितारों की तरह आपस में मिलजुल कर रहिए। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खाते

0: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज प्रतापगढ़ और विश्वनाथगंज असेंबली हलकों में 384 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 111 तरक्याती प्रोजेक्टों और सुल्तानपुर और इसौली असेंबली हलकों में 819 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 99 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज समेत कई अहम तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी किया और मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों में चेक्स, आयुष्मान कार्ड, सिलाई मशीनें, मकान की चाबियां, सर्टिफिकेट्स और असनाद तकसीम कें। ये प्रोजेक्ट तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश के अज़्म को नई तवानाई और ताकत फराहम करेंगे। श्री राम भूमि मंदिर चढ़ावा केस में मुबैना बेजाबतगियों के मामले में ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और मेंबर अनिल मिश्रा के इस्तीफे कल श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग में मंजूर कर लिए गए। ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने बताया कि आइंदा इंतजाम की जिम्मेदारी उबूरी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जनाब कृष्ण मोहन को सौंपी गई है। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकरूरी का भी फैसला किया है, जिसके लिए मौजू उम्मीदवारों की सिफारिश के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने कहा कि अतिया की गई तमाम अशिया महफूज हैं। इस दरमियान इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कल एक मफाद आम्मा की अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नजराने में मुबैना बेजाबतगियों की CBI तहकीकात कराने का मुतालबा किया गया था। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई काबीना की मीटिंग में 27 तजावीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वज़ीर सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को फ़रोग देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की तश्कील के साथ ही स्टार्टअप पॉलिसी 2026 और डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 की तजावीज़ भी पास की गई।
1: 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल UPLC देखती थी, इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें CEO होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा।
0: मेहनत और रोज़गार के वज़ीर अनिल राजभर ने कहा कि वज़रा की काउंसिल ने गोरखपुर और मुरादाबाद में 100 बिस्तरों के अस्पतालों और वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से मुफ्त आराजी के अलॉटमेंट को अपनी रजामंदी दे दी है।
2: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है, मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी, 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
0: काबीना ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर और मुरादाबाद के जरिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने और क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से फंड फराहम करने की तजवीज़ को भी मंजूरी दी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज के कालीघाट पर वाक़ प्रेरणा पार्क का इफ्तिताह किया। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी

0: वाजपेयी और अशोक सिंघल के मुजस्मों की भी नकाबकुशाई की। अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि तरक्की के लिए विरासत का एहतराम जरूरी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शजरकारी मुहिम 2026 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ऐलान किया कि 12 जुलाई को एक पेड़ माह के नाम मुहिम के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने की एक बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम का इनाकात किया जाएगा। रेल वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल तरीके से टनकपुर से पीलीभीत और बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली हफ्ता वाराना ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलकत जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में मुनक्किद तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में वजीर ममलकत ने कहा कि नई ट्रेन मुसाफिरों को पूर्णागिरी देवी मंदिर, नेपाल, रीठा साहब, आदि कैलाश और ननकाना साहब तक रसाई फराहम करेगी। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलकत श्री प्रसाद ने शाहजहाँपुर तक बढ़ाई गई टनकपुर पीलीभीत मुसाफिर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब बहने सुनेंगी कार्यक्रम पनघट।

0: पनघट कार्यक्रम सुने बैठी सब श्रोता बहनी हरण के चंपा और
1: जमुना बहनी के
0: राम राम। और बताओ जमुना बहनी, देखा थी तू ऊपर से नीचे तक तो बढ़िया कपड़ा पहने है, लेकिन जब हम आए पनघटे पे तो देखे तो हाँ नीचे पूरा कपड़ा भीगल रहा है।
1: अब का बताई जौन बट चंपा, देखा जब सवेरे अपने पनघटे पे आवत रहे
0: हाँ?
1: तब दऊ राजा जौन घना घोर बारिश जौन का करत रहे कि सोची कि हाँ कतौ खड़ी हो जाई तो हाँ? जौन बट ना भीगी, एहरों से हवा चलत रही ओहरों से, अब
0: छाता वाता काम नहीं करता,
1: छाता तो ले रहे बहनी लेकिन छाता जौन बना उल्टा हो कि उड़े लगा
0: छाता तो हर पलटी गए,
1: छाता मार पलट गए तो अब करी तो का करी कतो खड़ी भाई, लेकिन जब बौछारी मारत रहा चंपा तब तू कितनों बचे
0: देखो जब जैसे घाम हुए तो हम पेड़ नीचे खड़े तो नहीं छाँव मिला था, लेकिन जब बरसात होता है पेड़ नीचे खड़े अगर तनी भर हवा चला तू और भेज देता,
1: देखो जो पेड़े पे पानी टपका ही लगा
0: और भेज देते
1: फिलहाल देखा वहाँ समय तो बहुत पानी बरसा, लेकिन अब देखा कैसन घाम बाटे
0: एकदम बढ़िया घाम हो गया,
1: खड़ा मनाई नहीं हो पाओ।
0: काले से देखो बरसात है बूंदाबांदी होता, लेकिन आज अब देखे में लगा था कहूँ बरिश नहीं भय रहा।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। और देखा आज जब हम आवत रहे ना
0: हाँ?
1: तो पानी तो भले बरसत रहा लेकिन लड़कियन के स्कूल के जौन खुली गया बटे
0: हाँ।
1: स्कूल का गाड़ी ऐसन दौड़त रहे कि तो उसे का
0: स्कूल गाड़ियों में लड़के कितना शोर शराबा करत स्कूल जात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और देखा तो स्कूल के बात की हूँ तो देखा गदेलन का तो स्कूल खुल गया है।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: और देखा जमुना बहनी स्कूल खुला खाली नई किताब और नई कक्षा के शुरुआत होए के समय नहीं होत है।
1: सही कहूँ
0: मुला गदेलन में अच्छा आदत के विकास करे के भी सुनहरा अवसर होते हैं।
1: जी, जी जी जी।
0: अगर देखा जमुना बहनी
1: हाँ,
0: गदेलन के शुरुआत से ही सही दिनचर्या और अच्छा संस्कार
1: हाँ,
0: दी जाए
1: हाँ,
0: तो गदेल पूरा वर्ष का हो गई हम हमेशा कर मतलब पूरी जिंदगी
1: हाँ,
0: अनुशासित और स्वस्थ और आत्मविश्वासी बना रहा था।
1: देखा चंपा लोग कहते हैं ना कि जौन छुटवार गदेला होते
0: हाँ हाँ
1: वो कच्ची मिट्टी के समान होते
0: बिल्कुल
1: हैं, जैसे कुम्हार घड़ा जब बनावा था तो
0: हाँ,
1: कच्ची मिट्टी लेके जैसे जैसे आकार दे था वैसे वैसे वो घड़ा तैयार होता
0: है। सही बात है।
1: तो जैसे
0: गदेल
1: जैसे हाँ वैसे गदेल होते हैं एकदम माने अबोध होते हैं
0: हाँ,
1: उनके कोनो जानकारी नहीं होते है, तो
0: जैसे
1: अगर उनके जैसे जैसे शिक्षा जैसे संस्कार हम दे जैसे हम अपने आस पास करब लड़कियां देखी तो वह चीज वो अमल करी
0: बिल्कुल,
1: तो जब अगर हम उनके अच्छी अच्छी चीज सिखाओ तो वो अच्छी अच्छी चीज पर ध्यान दे ही ना।
0: बिल्कुल सही कहा थी जमुना बहनी।
1: हाँ और जाना थू ये जौन बा ये मने संस्कार और ये सब ऐसा गुण होता है
0: हाँ
1: जौन महिला और पुरुष

0: के अच्छा इंसान बनावे में कोनो कसर
1: नहीं छोड़त।
0: हाँ, और देखा कोनो भी व्यक्ति के महानता ओकरे देखा चंपा पद प्रतिष्ठा या ओकरे बाहरी सुंदरता से नहीं देखा,
1: बिल्कुल कभी नहीं जाचे की चाहे,
0: ओकरे विचार से, ओकरे व्यवहार से और ओकरे चरित्र से ओके पहचाना जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा थू जमुना बहनी। और देखा जब इतनी अच्छी तो बात कहूँ तो हम सोचे थे कि अपने पनघटे पे यही पे कहे ना चर्चा कर लीन जाए कि अच्छी आदत बेहतर जीवन।
0: बहुत सही जौन बटे बात कहत हो तो चला कसना आज यही विषय बत कही कह लीन।
1: बिल्कुल।
0: तो देखा चंपा, मनुष्य का जीवन जौन बा उनके आदत का प्रतिबिंब होत।
1: बिल्कुल।
0: जैसे हमार दैनिक व्यवहार और दिनचर्या होत है ना, वैसे ही हमार व्यक्तित्व और भविष्य बनत है।
1: बिल्कुल सही।
0: और अच्छी आदत देखा चंपा, न केवल हमें एक बेहतर इंसान बनावत है
1: हाँ?
0: बल्कि सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाली की ओर हमें खींच के ले जाता है।
1: हाँ,
0: इसलिए कहा गया बना कि अच्छी आदतें ही बेहतर जीवन की सबसे मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल सही कहा तू जमुना बहनी। और देखा समय से उठब, नियमित व्यायाम करब और संतुलित और पौष्टिक भोजन करब,
0: जी जी
1: स्वच्छता बनाए रखब अपने आसपास, घर में, हर जगह, अपने पनघटे पे आओ यहाँ, हर जगह स्वच्छता बनाए रखब, समय के सदुपयोग करब, बड़न के सम्मान करब,
0: जी जी,
1: और सत्य बोलब, हमेशा सत्य बोला।
0: हाँ, माने केहू से जौन बा
1: झूठ ना बोला, कुछ बात हो तो का साफ बोला,
0: साफ बोला,
1: घुमाई के नहीं, और अनुशासन के पालन करब, और दूसरन के प्रति सहानुभूति रखब, अच्छी आदत में शामिल रहब, शामिल होत है, और ये आदत जोन है हमारे जीवन और शरीर
0: और मन,
1: सबके बना स्वस्थ बनाए रखत है।
0: जी, जी, जी।
1: और हमारा जो आत्मविश्वास होता है ओका भी बढ़ावत है।
0: बढ़ावत है, बिल्कुल सही कहा था चंपा। और देखा समय का महत्व तो समझे वाला व्यक्ति अपने सभी कार्य समय पर पूरा करत है और जीवन में निरंतर प्रगति करत है।
1: बिल्कुल
0: अगर
1: सही।
0: जौन बाबू काम मन से करे तो वो प्रगति जरूर करे, ठीक है ना?
1: सही बहनी।
0: और नियमित अध्ययन और नई बातें सीखे का आदत ज्ञान बढ़ावत है चंपा।
1: हाँ?
0: और व्यक्ति की हर चुनौती का सामना करे के योग बनावत है। सकारात्मक सोच और धैर्य भी ऐसी ही आदत है चंपा, जौन कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़े का प्रेरणा देते है।
1: बिल्कुल सही कहा जमुना बहनी। और देखा अच्छी आदत का प्रभाव खाली एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ओकर परिवार, समाज और राष्ट्र भी उसे
0: लाभान्वित
1: होते
0: हैं।
1: और एक जौन अनुशासित, ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक होते ना, उस समाज में सुख, शांति और विकास के वातावरण बनावत है। और वहीं जो है बुरी आदत वाला व्यक्ति जो होता है, ओकर क्षमता, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा के धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है।
0: जैसे ओकर धीरे धीरे वो निरंतर
1: नीचे गिर चला जाता है।
0: अच्छा, माने ऊपर ना उठे कि बल्कि
1: नीचे गिर चला जाता है।
0: और देखा चंपा, अच्छी आदत एक दिन में ना ही बनत, ओके अपनावे के लिए निरंतर अभ्यास, दृढ़ संकल्प और आत्म अनुशासन का आवश्यकता होता है। अगर हम छोटी छोटी अच्छी आदतों के अपने दीवर माने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए लेते हैं ना, तो समय के साथ वे हमारे व्यक्तित्व का भी पहचान बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा था जमुना बहनी। देखा अच्छी आदत ही सफल और स्वस्थ है और सुखी जीवन के वास्तविक कुंजी होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अगर हम अपने जीवन में अच्छा संस्कार, अनुशासन और सकारात्मक सोच के अपनाई ना, तो ना खाली हमार वर्तमान बल्कि हमार जोन भविष्य है वो भी उज्जवल होई, बेहतर होई, प्रेरणादायक होई।
0: बिल्कुल। और अब भविष्य मतलब कि हमार बाल बच्चा भी है ना,
1: ओके साथ ही आ जाएंगे।
0: बिल्कुल। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अच्छी आदतों के अपनावे और उन्हें अपने जीवन में अभिन्न अंग बनावे के संकल्प लेवे के चाहिए चंपा। और अच्छी आदतें हमारे उज्जवल भविष्य और बेहतर समाज का आधारशिला है।
1: बिल्कुल सही कहा तू जमुना बहनी। देखा तू इतनी अच्छी अच्छी जब बात कही की हूँ, तो चला हम तुम्हें एक नीक के झूमर सुनवाई दी सावित्री श्रीवास्तव बहनी से। चला तुम सुना, बहनी हरे भी सुने।

0: चंपा
1: आज अब नवेनी
0: गाने कैसन लगी सारी दिन
1: बहुत
0: स्वास्थ्य बढ़िया
1: जोरदार गाने रही एकदम
0: मन
1: मन खुश हो गया गाने
0: खुश
1: सुन
0: हो
1: के।
0: गया ना तो अच्छा मन खुश हो गया तो
1: हाँ
0: बताओ अब तू हमें कहाँ सुनवाओ चाहत
1: हम तुम्हें एक ठीक परिचर्चा सुनवाई
0: हाँ
1: खेती बाड़ी।
0: हाँ
1: और मैं भागीदार हैं जयश्री आर्या बहनी और दीपा मिश्रा बहनी और संगीता देवी मधुबाला पांडे ममता पांडे बहनी।
0: तो चला
1: चला
0: सुना जाए।
1: तुम सुना बहनी अरे भी सुने।
2: बहनी हरन कहा जाता है कि पढ़ी लिखी नारी घर की उजियारी। अगर बहनी हरन हम लोगन पढ़े लिखे रह तो देखा हम लोगन के काम करे के जौन तौर तरीका बा वही तरह से रहे। चाहे घर गृहस्थी के देखभाल करे के होए, चाहे खेती बाड़ी के होए, चाहे बाल बच्चन के स्वास्थ्य के होए, तो हम तो कहब कि पढ़ी लिखी बहनी हरन के सोच कुछ अलग ही होत है। मुला बहनी हरन आज हम जौन है को चर्चा करे

0: याद है।
1: हम तुम्हें एक ठीक परिचर्चा सुनवाई,
0: हाँ हाँ
1: खेती बाड़ी,
0: हाँ
1: और मैं भागीदार हैं जयश्री आर्या बहनी और दीपा मिश्रा बहनी और संगीता देवी, मधुबाला पांडे, ममता पांडे बहनी।
0: तो चला
1: चला
0: सुनी जाए।
1: तुम सुना, बहनी अरे भी सुने।
2: बहनी हरन कहा जाता है कि पढ़ी लिखी नारी घर की उजियारी। अगर बहनी हरन हम लोगन पढ़े लिखे रहब तो देखा हम लोगन के काम करे के जौन तौर तरीका बा वही तरह से रहे, चाहे घर गृहस्थी के देखभाल करे के होए, चाहे खेती बाड़ी के होए, चाहे बाल बच्चन के स्वास्थ्य के होए। तो हम तो कहब कि पढ़ी लिखी बहनी हरन के सोच कुछ अलग ही होत है। मुला बहनी हरन आज हम जौन है को चर्चा करे चाहता ही खेती बाड़ी के बारे में। अगर बहनी हरन पढ़े लिखे रही हैं तो उनकर खेती बाड़ी करे के तौर तरीका कैसन रहे, यही पे जानकारी देवे के खातिर देख हमारे पहुनौती में आई हैं बहनी, बैठी हैं संगीता देवी और बहनी ममता पांडे, बहनी दीपा मिश्रा और बहनी जयश्री आर्य। बहनी सब लोगन के हमारे पहुनौती में बहुत बहुत स्वागत बा। बहनी हम जाने चाहब कि खेती बाड़ी के जौन तौर तरीका बा ये तो देख सब बहनी हरण करत थी जे गांव से खेती बाड़ी से जुड़ी हैं। मुला जे बहनी हरण पढ़े लिखे हैं उनकर काम करे के खेत में कैसन तौर तरीका बा, का सहयोग बा, इमें आप लोगन का जानकारी देवे चाहत थी। मुला हम सोचे थे कि पहले दीपा मिश्रा बहनी से शुरू किया जाए।
3: बहनों आज बदलती दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में आधी आबादी अर्थात महिलाओं का योगदान पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, या फिर तकनीकी और या फिर कृषि का क्षेत्र हो। देश की 70% से अधिक जनसंख्या आज भी गाँव में निवास करती है, जहां पर किसान अपना खून पसीना एक करके पूरे देश का पालन पोषण करते हैं और अपनी कुटिया में महल सरीखे गौरव के साथ रहते हैं। पुरुषों के साथ खेतों में काम करती महिलाएं वीरांगना की भांति कर्म क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। आज की आवश्यकता है शिक्षा के द्वारा नए ज्ञान विज्ञान के नए प्रतिमानों के नए नए अध्याय खुल रहे हैं। कृषि का क्षेत्र भी इन प्रयोगों एवं परिवर्तनों से अछूता नहीं है।
2: बिल्कुल ठीक कहते हो बहनी दीपा। अब बहनी ममता आप कुछ अपन राय दी हैं।
4: हाँ बहनी, कृषि के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एक स्त्री का शिक्षित होना। एक शिक्षित महिला ये भली भांति समझती है कि नई तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन दर को बढ़ाया जा सकता है, अनाजों को सीलन आदि से बचाव, खाद्य पानी का पूरा हिसाब किताब, बीजों उर्वरकों का सही समय पर उपयोग, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, मशीनरियों को कृषि में उपयोग, कीटों आदि से फसलों का बचाव आदि ऐसे उत्तम विकल्प हैं जिन्हें एक शिक्षित महिला कृषि द्वारा उपयोग करके कृषि का उत्पादन स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार महिलाओं का शिक्षित होकर कृषि में अग्रसर होना पूर्ण समाज में लाभप्रद होगा। शिक्षित महिलाओं के कृषि में आने से कृषि का उत्पादन स्तर बढ़ेगा, जिससे सभी ओर खुशहाली आएगी, क्योंकि अंततः हम सब कृषि पर ही तो निर्भर हैं। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जब रीढ़ मजबूत होगी तभी तो देश मजबूत होगा। अतः प्रत्येक स्त्री को शिक्षित होकर कृषि में अपना सहयोग देना चाहिए, जिससे हमारा आपका एवं देश का सर्वांगीण विकास हो सके।
2: बिल्कुल ठीक बहनी, देखा जब सोच बहनी पढ़े लिखे रही हैं तब जो है उनकर सोच भी अच्छी रहे, तब जो नहीं आजकल के तौर तरीका तकनीकी विधि भी अपनाई हैं। बहनी जयश्री आप का कही हैं, जैसे खेती करे के तौर तरीका आजकल जो अपनावा जात बा उनके बारे में का आप राय दी हैं?
5: देखिए काम तो सभी करते हैं, हर महिला आज हर क्षेत्र में अपने मतलब अपना काम बखूबी निभा रही है, लेकिन अगर हमारी बहनें हरे अगर थोड़ा सा शिक्षित हैं पढ़ी लिखी हैं तो वो कृषि में बहुत अच्छी तरह लाभ उठा सकती हैं। वो शुरुआत में सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी जांच कराएंगी कि हमारे खेत की मिट्टी में उर्वरक कितना है, कम है तो उसके लिए देसी खाद का भी प्रयोग कर सकती हैं, और अगर भरपूर उसमें मतलब वो मात्रा है तो उसके लिए फिर वो अपना ये देखेंगे कि इसमें हम क्या बोएं, बीज के लिए कितने कम समय में कितनी हमको

0: उपज दे सकता है, इसकी वो जांच करेंगे।
1: बिल्कुल ठीक।
0: और आजकल तो देखिए ब्लॉक में भी बीज मिलते हैं, नहीं तो गांव में भी मतलब दुकानें खुल गई हैं, महिलाएं वहां भी जाके वो देख सकती हैं कि जैसे मान लीजिए गेहूं अब तो इस समय बो गया है, हाँ, देख सकती हैं कि कौन सा बीज कितने कम समय में और उपज हमको जो ज्यादा देगा और समय भी कम लगेगा, तो उसको वो वही बीज ला के अपने खेत में बोएंगी। और उसके बाद फिर ये भी ध्यान रखेंगी, इस मान लीजिए इसमें कौन से हम खाद डालें जिससे उपज हमारी खूब अच्छी हो। और फिर एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे फसल में वो आ जाते हैं घास उग जाती है, तो उसके लिए पहले लोग उसकी पूरी निराई नहीं कर पाती हैं, उसके लिए भी आजकल एक दवा निकल आई है।
1: अच्छा।
0: वो अगर उनको जानकारी है, नहीं भी है तो उसकी वो जानकारी दुकान पे जाके कर सकती हैं, वहां से दवा ला के उसको उसका घोल बना के मशीन से उसका खेत में छिड़काव करा सकती हैं।
1: अच्छा, कहे कि मतलब कि जो उन खेत में जो उन खरपतवार होते फालतू जो है,
0: हाँ, जिसकी निराई गुड़ाई करते हैं। तो बहने मान लीजिए एक दो बहने हैं, खेत ज्यादा लंबा है तो उतनी पूरी मतलब निराई गुड़ाई नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए दवा एक निकल आई है, दवा ला के उसको और उसको घोल घोल के और मशीन से छिड़काव होता है उसको, उसको मतलब दवा छिड़कवा दें तो उससे घास जो रहती है जल जाती है, तो जब घास नहीं रहेगी तो फसल हमारी अच्छी होगी।
1: बिल्कुल ठीक बहनी, देखा जो ना आप बताई हैं, बोला देखा एक बात और हम कहा कि जैसे जे बहनी हरन ना ही पढ़े लिखे हैं तो वो जो नहीं केवल अपने तरीके से काम कर थी, और जे बहनी पढ़े लिखे हैं उनकर थोड़ा सोच रहा था, दूसरे से जानकारी ले थी, जाए के ब्लॉक स्तर पे जानकारी ले थी, बीज भंडार जहाँ बा जानकारी वहूँ लेके जो नहीं अपन उपज बढ़ावे के पूरा कोशिश कर थी। तो बहनी संगीता आप कुछ जानकारी दी है जो उनसे जैसे बहनी तरह तरह की जानकारी रखें।
2: हाँ, जब हमारी महिलाएं शिक्षित रहेंगी, पुरुष वर्ग हमारा आज भी काफ़ी बाहर रहता है रोजी रोटी के चक्कर में, अधिकांश घर का भार महिलाओं के ऊपर रहता है, यदि वो शिक्षित हैं तो वो ये जान सकेंगी कि हम इसमें जैविक खाद का प्रयोग करें कि रासायनिक खाद का प्रयोग करें, और मिट्टी की उपजाऊ को उर्वरकता तो वो देख सकती हैं, जांच करा सकती हैं। अगर वो फसल है और उसमें कोई रोग लग गया है तो उसकी में जो कीटाणु लगे हैं वो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर सकती हैं, यदि वो पढ़ी लिखी हैं तभी वो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर पाएंगी, कितनी मात्रा में करनी है इसका भी प्रयोग कर पाएंगी।
1: बनी देखो में सावधानी भी बहुत रखना जरूरी होता है।
2: हाँ, तो वो मात्रा में जब वो पढ़ी लिखी रहेंगी तो उसकी मात्रा को ही जान के उसमें छिड़काव कर सकती हैं, ताकि रोगों से फसलों को बचाया जा सके। कब उसमें हमें पानी देना है, सिंचाई समय समय पर कितने अंतराल पे करना है बीज बोने के बाद, यदि वो पढ़ी लिखी हैं तो इसकी जानकारी उनके पास होगी, वो उस समय उसमें पानी देंगी। कब उसमें हमें निराई करनी है, गुड़ाई करनी है, और कितने अंतराल पे हमें खाद का प्रयोग करना है और कितना खाद का प्रयोग करना है। इस तरीके से महिला अगर हमारे घर की पढ़ी लिखी हैं तो वो खेती बाड़ी के विषय में अच्छी जानकारी रख।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहनी आप कुछ और यही संबंधी पे राय दें दीपा बहनी।
3: शिक्षित महिलाएं जानती हैं कि मौसम के अनुसार कौन सी फसल उगानी चाहिए और कौन सी नहीं, जैसे नवंबर से मार्च अप्रैल तक रबी की फसलें बोई जाती हैं, जैसे उसमें गेहूं चना मटर आदि ये सब फसलें बोई जा सकती हैं, और वो ये सब भी जानती हैं कि जुलाई से अक्टूबर के महीनों में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, और कौन से महीने में कौन सी सब्जी ज़्यादा पैदा होगी, कौन सी सब्जी ये इसके लिए बहुत ही हानिकारक है, वो सब इन सब चीज़ों के बारे में वो अच्छी तरह शिक्षित महिलाएं आपको वो सब जान सकती हैं।
1: बिल्कुल बहनी, देखा जैसे मौसम के अनुसार फसल और वही तरह की मिट्टी भी हो के चाहे पानी उतना उन्हें कितना ज़रूरत हो चाहे इस सब का चीज़ के जो है वो जानकारी रख सकत ही। बनी ममता आप कुछ बनी हरण के बताई हैं, हम तो सोचते हैं कि जैसे आर्थिक रूप से कुछ बनी हरण जैसे पढ़ी लिखी हैं तो अपन सोचत हैं कि कुछ आमदनी भी खेती बाड़ी में करत रहें, कहे से कि देखा घर गृहस्थी चलावे के खातिर तो पैसा रुपये सभी की जरूरत पड़त है, तो मैं कुछ आपका राय दी हैं।
4: यदि महिलाएं शिक्षित होकर कृषि में अपना योगदान देंगी तो इसके अनेक फायदे होंगे। जैसे एक शिक्षित महिला अन्य अशिक्षित महिलाओं की अपेक्षा उत्तम कोटि के बीजों का महत्व अच्छी तरह से समझती हैं, उर्वरकों के रख रखाव एवं उनका उपयोग अच्छी तरह से कर सकती हैं। एक शिक्षित महिला सूचना संचार के माध्यम से कृषि की नई विधियों को जानकर उनका उपयोग भली प्रकार से कर सकती है।

0: जैसे सरकार द्वारा जनहित में जारी किसान सेवा केंद्र हेल्पलाइन से बात करके नई जानकारियां प्राप्त कर सकती हैं। एक शिक्षित महिला ये भली भांति समझती हैं कि नई तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन दर को बढ़ाया जा सकता है।
1: बिल्कुल ठीक बहनी, देखा पढ़े लिखे कहा जाता है कि सोच तो बदलिन जात है, काफी स्तर तक ऊंचा हो जाता है। जयश्री बहनी, हम आपसे जाने चाहा कि जैसे आजकल देखा है लोगन सोचे थे कि ज्यादा ज्यादा हम आमदनी भी कर ली खेती बाड़ी में, तो कुछ सब्जी उब्जी से संबंधित कुछ ऐसा बहनी हरण के अपन विचार देवे चाहिए, कुछ आमदनी कर सकत ही।
2: देखिए अब समय पहले से काफी बदल गया है, आज हर सुविधा हर क्षेत्र में उपलब्ध है। पहले तो खेती इसलिए रुक जाती थी कि पानी की सुविधा थोड़ा सा कम थी, लोग नहर के सहारे रहते थे, फसल वही है, अगर नहर आया है तो सींचे, और अगर नहर नहीं आए तो भी फसल सूख जाती थी। लेकिन अब तो जगह जगह ट्यूबवेल हो गई है, तो उससे फसल हमारी समय से सिंचाई मतलब फसल की हो जाती, उससे फसल हमारी सूख नहीं पाती और फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। अब तो साल में समझ लीजिए 3-4 फसल खूब अच्छी तरह हो जाती है।
1: अच्छा,
2: पहले लोग गेहूं जैसे आलू बो दिए, देखिए आलू बोने की भी एक नई मशीन निकल आई है, मतलब मशीन से बो देते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा काफी समय बच जाता है। जो खेत बोने में समय हमारा नष्ट हो जाता था, अब वही समय का सदुपयोग हो रहा है, काफी समय बच जाता है, फसल भी जल्दी तैयार हो जाती है। तो लोग आलू खोद के फिर गेहूं बो देते हैं, और गेहूं काटने के बाद फिर उधर गर्मी वाली सब्जी उब्जी भी बो देते हैं, और जिसमें इस समय समझ लीजिए कि खेती में ये उन्नतशील बीज होने के कारण इतनी अच्छी पैदावार हो रही है कि खेती से ही आदमी अपने घर का खर्चा भी उठा रहा है, और उसी की आमदनी से 4 पैसा बचा भी ले रहा है, यहाँ तक कि मतलब लड़कों की पढ़ाई, शिक्षा, शादी ब्याह सब उसी खेती से ही बखूबी निभा रही हैं।
1: बिल्कुल बहनी, देखा कुछ समय पहले लोगन जो नहीं हुआ एक बार बो दें गेहूं और फिर खेत पड़ा रहा हुए, जब धान के समय आवे तो धान बोए।
2: मुला
1: आजकल देखा जात बा कि दू महीना में 3-3 महीना में एक एक फसल लोगन तैयार करते हैं, और उससे जो है अपन आमदनी करते हैं। तो बहनी जब पढ़ी लिखी बहनी हैरान रही है तो सब कुछ एक तकनीकी विधि भी मालूम रहे तो उनका सफलता भी मिले। बहनी आप कुछ कह चाहिए संगीता बहनी?
3: हाँ, अगर हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो वो नई तकनीकी का प्रयोग करेंगी, उत्तम कोटि के बीज का प्रयोग करेंगी जिससे अधिक उपज हो, और जो उपज होगी लागत भी निकल आएगी उनकी और वो बचत भी हो जाएगा। और जब उत्तम कोटि के बीज रहेंगे तो फसल अपने आप अच्छी होगी, उसमें अच्छी खाद पानी से भी अच्छी फसल का प्रयोग होगा।
1: अच्छा, जैसे बीज अगर मान ले एक बार फसल खेत में तैयार भा तो ओकर जो अच्छा बीज बा, तो बीज के कुछ रख रखाव पे भी बहनी हरण की जानकारी देंगे ताकि वो बीज सुरक्षित रहे।
3: हाँ,
1: फिर दूसरी बार इस्तेमाल कर सकें।
3: जी जी, वो बीज आप सुरक्षित कर सकती हैं, उसको सूखे में रखकर अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो उसको वो सुरक्षित रख सकती हैं। दवा उपलब्ध है बाजार में काफी, उस दवा द्वारा भी उसको सुरक्षित, ताकि उसमें कीड़े मकौड़े ना लगे, घुन ना लगे,
1: तो सीलन,
3: जी उसमें ना सीलन लगेगी ना कोई कीड़ा लगेगा, बीज भी सुरक्षित रहेगा ताकि वो अगली बार उसका प्रयोग हो सके। हमारी महिलाएं अगर पढ़ी लिखी है तो उसका प्रयोग कर सकती हैं, उस बीज को सुरक्षित रख सकती हैं।
1: बहनी खास करके वक्त देखा जैसे पढ़े लिखे हैं तो तौर तरीका तो अपनौबे कर रही नया, वो अपने समय की कीमत भी समझती और वही हिसाब से सामान की कीमत भी समझती, तो ये पे कुछ आप कही हैं जयश्री बहनी?
2: देखिए जहाँ तक बीज वाली आप बात उठाई हैं, तो बीज तो बहने लोग को जैसे मान लीजिए इस साल गेहूँ काटी तो अगले साल के लिए जो अच्छा बीज होता है उसको रख देती हैं, भूसे में करके रख देती हैं, तो वो अगले साल हमारा मतलब काम दे जाता है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि अपने बीज से अच्छा वो दुकान पे जो बीज मिलता है वो ज्यादा उन्नतशील रहता है।
1: अच्छा।
2: उसमें ज्यादा पैदावार होती है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक साल जब हम लोग बीज जैसे ये बो दिए, इसको दोबारा अगर बोते हैं तो उसकी पैदावार कम हो जाती है।
1: अच्छा।
2: इसलिए अगर वो दुकान से बीज ले ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उनको पैदावार भी अच्छी मिलेगी।
1: जांच परख कर रखा रहता है।
2: हाँ, वो सरकार से मतलब सरकार के यहाँ जैसे ब्लॉक में भी इसकी सुविधा रहती है, वहाँ भी जो बीज मिलते हैं उसमें काफी छूट रहती है। दुकान से तो लेंगे तो बल्कि पूरा दाम देना पड़ता है, लेकिन ब्लॉक से जो मिलता है उसमें छूट रहती है किसानों के लिए।
1: अच्छा,
2: तो अगर वहाँ जाके बीज ले लें तो और अच्छी बात है।
1: बनी तो, के खुद

0: जानकारी करे के चाहे कि कहाँ उन्नतशील बीज मिलत बा, कैसे मिलत बा, ये सब जानकारी भी तो देखा, यही में तो देखा जाता है कि बहनी अगर पढ़ी लिखी है तो उनका सोच दूर तक रहत है, तो हर जगह जाए के बोल चाल के अपन जानकारी लेके काम कर लेती। तो यही खातिर कहा जाता है कि पढ़ब लिखब बहुत जरूरी होता है। और बहनी देखा, अगर हम लोग पढ़ब लिखब और नई तकनीकी अपनाओं, समय का सही उपयोग करब, तो देखा खेती में हम अच्छी फसल उपजा सकी थे और हम लोगन अपने घर के समस्या भी दूर कर सकी थे। बहनी हरन, आप लोगन आई हमारे पहनौती और खेती बाड़ी के बारे में बहनी हरन का इतनी बढ़िया जानकारी दी, एक खातिर आप लोगन का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देख चंपा,
2: हाँ जमुना बहनी,
1: बहनी हरे कितना फरियाए फरियाए बताएं
2: खेती बाड़ी के बारे में।
1: तो आप सोचा था चला यही बात पे एक ठे गीत हो जाए
2: दिल्ली से
1: और गायिका है
2: रेखा भारद्वाज जी, तो चला सुन लिया जाए।

0: कैसा लगा?
1: जमुना बिन्नी गाना तो बहुत नीक रहा।
0: मन खुश हो गया ना?
1: बिल्कुल।
0: अच्छा अच्छा ये बताओ,
1: हाँ
0: काल तू हमरे यहाँ आए रहो,
1: हाँ
0: तो हमार पूरा बगीचा घूम घूम देखत रहो।
1: हाँ देखत हाँ, बगीचा खेती होती जन की है। खेती क्यारी कुल देखे
0: बागवानी के हो कि हाँ देखा, तुम भिंडी लगाए हो, नेनुआ लगाए हो, तोरई
1: लगाए
0: लगाए
1: हो,
0: हो, तो काल तो तोरई दे रहे हैं,
1: हाँ
0: तो ये बतावा कि ओकर कुछ बनाओ कि नहीं बनाओ?
1: बनाए हम कल बनाए सांझे के हमों का।
0: का बनाओ बहनी?
1: देखा हमारे गदेल तरुई सब्जी खाते नहीं,
0: हाँ
1: तो कहे माई कुछ ऐसा बनाओ कि जो नीको लागे हम सब्जी खा बनाइए के बनेबू।
0: अच्छा
1: हम कहे अच्छा ठीक है, तो का बनाए दी,
0: हाँ
1: तो कहे कुछ अलग बनाओ कि जो नीक लागे।
0: अच्छा। हाँ
1: हम सोचे का बनाई का बनाई,
0: तो
1: जैसे
0: वस्तु,
1: सोचा सोचा दिमाग में आया लाकर मसाला भरी के भरवा तरोई बनाई ली।
0: अरे वाह।
1: हाँ तो
0: हाँ
1: फिर हम
0: हाँ
1: बनाए भरवा तरोई,
0: तो कैसे
1: तो
0: बनाए
1: हम कहे
0: रहो?
1: हम बनाए, तो हम कहे आज जाओ जमुना बहनी बताई, देखो
0: हाँ।
1: तू कहते हम सब्जी बना खाए खाए वो भी गई।
0: वी आ गए
1: हाँ
0: हैं। हाँ।
1: तो हम कहे तू बताए बहनी अरे बनाई
0: तो
1: है।
0: का कैसे नहीं, का सामान लगा था, कैसे बनाए रहो तभी
1: देखा
0: बताओ था।
1: 500 ग्राम तरोई ले लें,
0: हाँ।
1: और 2 चम्मच बेसन, और 1 चम्मच धनिया पाउडर,
0: अच्छा।
1: और आधा चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच आमचूर पाउडर,
0: अच्छा
1: आधा चम्मच सौंफ ले लें दरदरा का कूट लें।
0: अच्छा मतलब एकदम महीन न पीसे,
1: हाँ
0: दरदरा
1: दरदरा
0: पूरा।
1: रहे हैं। हाँ
0: हाँ
1: और 3-4 चम्मच सरसों का तेल ले लें, और नमक अपने स्वाद के अनुसार।
0: हाँ भाई, तो देखा नमक भी डालना जरूरी है, बिना
1: हाँ
0: तेल को चूरे ना।
1: हाँ अब सबसे पहले देखा तरोई के अच्छे से धोई के
0: हाँ
1: छील लें,
0: अच्छा
1: और अब जब तरोई के

0: छील नहीं तो का करें, चाकू से वो में बीच में होकर फाड़ दें।
1: अच्छा
0: हाँ, जैसे बैंगन का वो बना था ना भरवा,
1: हाँ,
0: वैसे
1: जैसे बैगन
0: चीरा लगाए
1: का
0: दें।
1: हाँ
0: हाँ
1: बनावट जाए था, करेला का बनावट जाए थे।
0: वैसे
1: हाँ
0: चीरा लगाए दें
1: हाँ
0: और बेसन का हल्का सा भून लें।
1: अच्छा,
0: अब यहाँ सारा मसाला जो है, धनिया है,
1: जितना
0: हल्दी
1: बताओ
0: है,
1: वो सब।
0: हाँ सारा मसाला हमें मिलाई के सबके अच्छे से मिला लें। ओके ओके, भरावन तैयार हो जाइए।
1: हाँ,
0: अब तरोई में जहाँ चीरा लगाए हैं,
1: अच्छा तो जो भरावन बनाओ थे तो उनमें भरावन का उन नमक भी वहीं में मिला दे
0: हाँ
1: थे।
0: नमक डाल दें, तेल वेल सब मिला के बढ़िया से।
1: अच्छा,
0: थोड़े तेल में से डाल दें, थोड़े बचाए रहा होगा, फिर बाद में करे खड़ती तले
1: अच्छा
0: करती।
1: तले देना।
0: हाँ, अब तरोई में जहाँ चीरा लगाए हैं वो हमें ये मसाला के आराम से भर दें, सावधानी से भरें कि फट ना जाए ज़्यादा।
1: हाँ,
0: अब
1: भाई
0: कढ़ाई
1: मुलायम तो हो भाई करत है। हाँ
0: अब कढ़ाइया में तेल के गरम करें और भरी हुई जो तरोई है उसका कढ़ाई में रख दें धीमी आंच पे।
1: अच्छा
0: हाँ, अब एक ढक दें 15-20 मिनट के लिए, और लेकिन बीचे में उघार उघार के उघार चलावत
1: चलावत
0: रहा,
1: रहे, नहीं तो
0: नहीं
1: पता
0: तो
1: चला
0: नीचे
1: कि जो
0: नीचे एक तरफ जल जाए एक तरफ कच्चे रह
1: कच्चे
0: जाए।
1: रह जाए।
0: हाँ, और जब तरोई नरम हो जाए और मसाला अच्छी तरह से पक जाए तब गैस के बंद कर दें। और देखा तैयार हो गया, एक बढ़िया सा है, दाल चावल के साथ खाएं, चाहे पराठा के साथ खाएं, कुछ भी साथ का बढ़िया से खाए सकलने का।
1: एमे जौन तू बताओ तू चंपा जौन ही सौंफ हो, अमचूर हो, लाल मिर्च, हल्दी
0: ये
1: पाउडर,
0: कुल देखा कि
1: धनिया
0: अपने घर में
1: पाउडर
0: मिल जाला
1: मिल।
0: आसानी
1: अब
0: से।
1: देखा अपने अपन रसोइया ऐसा उठा के खजाना हवे कि तू अगर चली जा तो वहाँ कुछ न कुछ उम्मे मिलना ही मिलना
0: बिल्कुल
1: बाटे।
0: सही कहा तू। और देखा तरोई जो है कि फायदा कितना होता
1: का
0: है,
1: फायदा होता बहनी?
0: देखा में फाइबर भरपूर मात्रा में पाई जाता है,
1: अच्छा,
0: जौन कब्ज के समस्या के कम करत है
1: हाँ,
0: और पाचन तंत्र के स्वस्थ रखे में भी मदद करत है, और
1: अच्छा,
0: वजन घटाव में भी बहुत फायदेमंद होता है। काहे कि तरोई जो होता है में कैलोरी कम होता है और
1: हाँ
0: पानी ज्यादा होता है,
1: हाँ पानी तो
0: ऐसे
1: ऐसे तो ज्यादा रहते हैं में।
0: ऐसे ही का होता है वजन नियंत्रित रखे के लिए अच्छा एक विकल्प होता है।
1: हाँ,
0: और शरीर के भी ठंडा रखत है, गर्मी में तरोई की सब्जी खाए से
1: अब देखा
0: शरीर
1: कि
0: में,
1: देखा ये सब यही मौसम में
0: हाँ ये
1: मिला था।
0: मौसम मिले वो करा
1: हाँ तो ठंडा
0: था।
1: हुआ था, ठंडा करा था शरीर
0: हाँ
1: के।
0: ठंडा का तो ताजगी भी बनावा था शरीर के,
1: जी।
0: और देखा हृदय के लिए भी बहुत अच्छा होता है, में पोटेशियम जो होता है वो भरपूर मात्रा में होता है, जो रक्तचाप के संतुलित रखे में सहायक होता है,
1: अच्छा,
0: और
1: हाँ
0: में विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली के समर्थन करत है,
1: हाँ मन
0: मजबूती
1: मजबूत
0: देता
1: करत
0: है।
1: है।
0: हाँ, और त्वचा सबसे भैया अपने बहनी हरण के भैया हरण के लिए सबसे अच्छा तो त्वचा के लिए काव मिले, काव लगाई
1: कि
0: कि जो
1: चमन
0: त्वचा
1: चा
0: हमारे
1: चा
0: चमकत रहा
1: चमकत
0: है।
1: रहे।
0: ते में पर्याप्त मात्रा में पानी हो पे करत है तो
1: हाँ
0: पोषक तत्व जो होते कर वो
1: हाँ
0: त्वचा के स्वस्थ बनाए रखत है,
1: हाँ
0: और देखा मधुमेह के जो रोगी होते हैं
1: हाँ हाँ
0: और उनके लिए भी संतुलित मात्रा में और कम तेल में बन जाता है,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उनके लिए भी बहुत
1: बहुत
0: फायदेमंद होता
1: रामबाण
0: है।
1: रामबाण का काम करे थे। तो देखा कितना जोन बा एकर देखा हमें तू भरवा तरुई बताए दू, और
0: हाँ,
1: एकरे बाद ओकर ऐसे फायदा का
0: फायदा भी
1: बा।
0: बताए
1: हाँ
0: दिए,
1: फायदा भी
0: अब
1: बताए
0: तू
1: दू।
0: हमें का बताई वो सुनाई
1: हाँ तो चलो यही बात पे तोके हम जोन बटे एक गीत सुनावत है दूल्हा गंगा पार के, और गायिका हैं लता उषा मंगेशकर जी।
0: चला सुन लिया जाए।

0: जमुना बहनी गौनई कैसन रही?
1: गौनई तो अच्छी रही, लेकिन हम देखा था गौनई जब बजत रही तो तुहार पैर जोन बड़ा बड़ा थरकत रहा।
0: इतना नीक गौनई जब अपने पनघटे बाजी ढोल मजीरा होत रही तो काहे ना पैर थिरकी।
1: बिल्कुल। तो चला आप देखा अपने बहनियरन के एक संदेश सुना दिया जाए।
0: चला सुनवा दिया जाए।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमार ईमेल एड्रेस है
5: panghatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMME@gmail.com। पनघट प्रोग्राम एट द रेट ऑफ gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमार व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
6: बेसब्री से इंतजार रही।
1: चंपा आज संदेश सुन लिया गया। हाँ। एक चीज तो उसे बहनी हरन से भी कहे चाहब कि देखो बरसात शुरू हो गया बा, और अपने सबके घरे में चाहे कच्चा वाला घर हो चाहे जो
0: फर्श हो
1: फर्श वाला बा, अगर कतौ चूहा जौन बा बिल वगैरह करे है तो ओके जौन बा बरसात होए के पहले जौन बा
0: मुंदवा दे।
1: कहे कि देख खतरा बताए कि नहीं आवत।
0: हाँ? बिल्कुल।
1: और कहे कि पानी बरसत है ना तो बाहर से जानवर उनके बिल में पानी चला जाता है, वो घरे के अंदर आवत है और वो जाके वहाँ अपन शरण ले लेते हैं।
0: हाँ, दरवाजे के नीचे उचे भी अपन देखा कुछ लगा दे कि घर में कोनो कीड़ा मकोड़ा ना
1: कीड़ा मकोड़ा ना आवे। कहे कि देखा लोग कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना
0: घटी,
1: तो इसलिए जौन बटे भैया बहनी हरे चैतन्य रहें और इस सब पर ध्यान दें। और धीरे धीरे देखा घड़ी जौन पर इशारा करता है कि अब अपने अपने घरे जौन पर विदा ले जा। तो राम राम बहनी
0: राम राम बहनी हरे।

0: अभी बहने पनघट कार्यक्रम सुन रही थी। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को हैं।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. MOUs exchanged in several areas including critical minerals, technology, agriculture and maritime security. Prime Minister Modi conferred Indonesia's highest honor Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. President Draupadi Murmu flags off trophies of Durand Cup Tournament 2026 in New Delhi today. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of Memoranda of Understanding, MOUs, aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President in Jakarta, Mr. Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration. The two leaders also reaffirmed their commitment to strengthening the Indonesia comprehensive strategic partnership. During talks in Jakarta, the two leaders witnessed the signing of several MOUs covering defense, critical minerals, agriculture, steel, maritime cooperation and emerging technologies. They agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. The two sides also agreed to strengthen collaboration in manufacturing, food security and digital technology.
2: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी।
1: Mr. Modi expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. He dedicated the award to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia.
2: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education, expressing confidence in the future of bilateral ties. He said a new golden chapter in the India-Indonesia

0: Bona Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की

0: संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि यह सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
4: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण

0: की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
2: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताहिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित

0: कई क्षेत्रों में समझौतों और ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए, किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
0: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाणे, अर्चना ताई गोंडाणे, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाणे।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
0: जी
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
0: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी,
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
0: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
0: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
0: जी, तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
2: जी
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
2: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
2: जी
0: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
0: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
2: जी
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
2: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
2: जी
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
2: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे

0: पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी,
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादल।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहाँ श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
7: आओ चलो।

0: और सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ
3: पापा, पापा वो देख।

0: नील नदी है ना?
1: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
2: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
1: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
2: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
1: अच्छा अच्छा।

0: नादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो, वो देखो, औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
1: हाँ। चलो।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।

0: यहाँ गीजा में तीन पिरामिड है, वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
1: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
0: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
1: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
0: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरो के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरो की कब्रें हैं।
0: कब्रें नहीं है, शव रखे, जिन्हें ममी कहते। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
1: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
0: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
0: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
0: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
1: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
1: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
3: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
1: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
3: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
1: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
3: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
1: तो फिर चलिए।
3: हाँ तो आओ, चलो आओ, खा दे रहा हूँ।

0: कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा

0: किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
1: पूछिए।
0: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
1: हर साल पानी चढ़ता है।
0: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
0: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
0: हार गए?
1: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
0: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
0: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
1: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकादर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
0: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
1: वहां क्या है अंकल?
0: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। हाँ। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवा कर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
1: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
1: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली पूछ दो तो।
1: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार। उमंग, उमंग,
5: उमंग। अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती के गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं रामबाबू यादव और साथियों के गाए लोकगीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए देवी गीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती के गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं रामबाबू यादव और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में लीजिए।

0: धरती के गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम बाबू यादव और साथियों के गाए लोकगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूजा यादव और मेरे साथ
1: मैं हूँ सुष्मिता श्रीवास्तव
0: और हम दोनों मिलके आप सभी का आपके ही फेवरेट शो यानी कि युववाणी में स्वागत करते हैं।
1: पूजा,
0: हाँ,
1: आप हम लोग ने देखा यहाँ पे स्टूडियो आते वक्त ही कि हल्का हल्का कभी बारिश मिल रही है और कभी एकदम से लग रहा है कि नहीं नहीं अब जा सकते हैं, अब नहीं मिलेगी और हम लोग भीगेंगे नहीं। तो ये जो मौसम है ना बारिश का, थोड़ा सा अनसर्टेन भी हो जाता है बाहर निकलना भी।
0: सो ट्रू।
1: और हम लोग देखते हैं कि सड़कों पे पानी वानी रहता है, तो उससे एक चीज़ जो मैं आते समय भी सोच रही थी वो ये थी कि सबसे पहले आके अपने दोस्तों से इसी पे चर्चा करेंगे कि बारिश का मौसम किसे नहीं पसंद होता। बाकी इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप थी, उसके बाद थोड़ी तो राहत मिलती है, अच्छा भी लगता है शाम को, अगर स्पेशली जब अच्छी हवा चलती है और हमारा जब कार्यक्रम भी आ रहा है तो हमारे दोस्त उसको टहलते घूमते सुन भी सकते हैं। तो इसी के साथ ये भी दिमाग में आता है ना पूजा कि इस मौसम में स्पेशली अपनी हाइजीन का ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है सुष्मिता, हमें कई सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि बारिश में सबसे ज़्यादा वाटर बोर्न डिसीज़ यानी कि थायराइड जैसी बीमारियां फैलती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम साफ पानी पिएं, और पानी अगर फिल्टर हो तो चलेगा, या तो आप उसे उबाल कर पिए। बाहर का खाना जितना हो सके आपको अवॉइड करना है, हरी सब्जियाँ ध्यान से खाएं क्योंकि कीड़े अक्सर लग जाते हैं इसमें, और जैसे कि तुमने कहा कि हाइजीन बहुत ज़रूरी है तो उसका भी ख्याल बेशक रखना चाहिए।
1: कुछ डिजीजेस हैं, टाइफॉइड हो गया, कॉलरा हो गया, जॉन्डिस, क्योंकि ये सब ऐसे डिजीजेस हैं ना जो जब हम हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं या कभी कभी थोड़ा सा कम पका खाना, कई बार होता है कि वो अच्छे से बॉयल नहीं है, अच्छे से वॉश नहीं है, तो इन सब खानों में थोड़ा सा स्पेशली इस मौसम में जहाँ पे हम कहते हैं ना बैक्टीरिया ग्रोथ थोड़ी ईजी हो जाती है क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो इन सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और क्योंकि पर्सनल हाइजीन का थोड़ा सा हमें लगता है कि हमको ना थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में हम कुछ चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली इस मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग को और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। और बाकी हाइड्रेशन का ख्याल हम हमेशा ही समझाते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि जब हम ट्रैवल करें पूजा, या कहीं भी हम ऐसी जगह हैं जहाँ पे वायर्स हैं, तो हमें ज़्यादा इस मौसम में स्पेशली सतर्क रहना चाहिए कि कई बार होता है कि अचानक से हम रास्ते में हैं, बाहर हैं हम घर से और बारिश हो गई, तो हम किस शेड के अंदर खड़े हैं, कहाँ अपना बचाव कर रहे हैं, तो ये जगह देख के आप देखें कि, और क्योंकि हमेशा गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट की तरफ से आती रहती हैं, तो उसको इग्नोर मत करें और उसको किसी और नोटिफिकेशन की तरह स्वाइप ना कर दें, उसको पढ़ें और समझें कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए और कैसे आप अपनी लाइफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने आसपास के लिए भी जो एनवायरमेंट है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है।
0: थैंक यू सो मच सुष्मिता, तुमने जितने भी बातें कही है मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है और जितने लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अब बढ़ते हैं अपने चर्चा के विषय पर, और आज का हमारा विषय है पर्यावरण प्रदूषण में प्लास्टिक का कितना योगदान। आज के मॉडर्न एरा में हम देखें तो प्लास्टिक हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। आप खास तौर पे देखिए कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी भी फॉर्म में प्लास्टिक का यूज़ कर ही रहे होते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर हम आमूमन देखें तो कहते हैं कि जो एवरेज डेटा है हमारे पास, जो सबसे मॉर्निंग में हम उठते ही जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं दैट इज़ ब्रश, वो प्लास्टिक होता है ऑन एन एवरेज लोगों के पास। फिर हम जैसे जैसे अगर हम दिन भर की अपनी दिनचर्या देखें तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं पूजा, चाहे हमारे किचन में कितनी सारे ऐसे सामान हैं जो

0: जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तो वो भी किसी ना किसी प्लास्टिक में ही पैक्ड होते हैं, और कई बार हमें ये सोचने पर मजबूर भी कर देता है दोस्तों कि प्लास्टिक क्या वाकई हमारे लिए इतना ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया कि हमने जो हमारे पहले की जो रैपिंग थी हम की पेपर में करते थे या पत्तलों में भी कुछ चीज़ों की पैकिंग्स आती थी, हमने उसको इतना ज़्यादा डिटार्ट कर दिया है कि हमने सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए खुद को भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक्स का आए दिन हम पढ़ते रहते हैं, रिसर्चर्स उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करके रिसर्च कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने अपने नेचर को भी उसका एक तरीके से पोल्यूशन दिया ही है।
1: बिल्कुल, पर्यावरण में प्लास्टिक का योगदान पॉजिटिव वे में कम है, नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा हुआ है। आपको एक डेटा बता दें कि हर साल लगभग 400 मिलियन टन यानी कि 40 करोड़ प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें से लगभग आधा हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि एक बार यूज होने वाला प्लास्टिक, चाहे वो पानी की बोतल हो, स्ट्रॉ हो या थैलियाँ हो, उनका है।
0: और हम बता दें दोस्तों कि जो ऐसी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं ना, वो इतनी जल्दी डिकम्पोज भी नहीं होती हैं, तो लगभग 450 से 500 साल का जो समय है ना, इतना लगता है कि एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में। तो सोचिए जिस फ्रीक्वेंसी से इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं, तो और उसका जो डीकम्पोजिशन है वो इतना स्लो है, तो ऑब्वियसली वो हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको तो पल्यूट करेगा ही, और कितने टाइम तक वो उसमें रहेगा एज अ पल्यूटेंट। और अब हमारा जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो इससे बिगड़ेगा ही, और ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एरर ही है, हमारी तरफ से ही है कि हमने अपनी कन्वीनियंस को ज़्यादा ऊपर रखा और नेचर की जो उसका जो बैलेंस था उसको नज़रअंदाज किया।
1: बिल्कुल, और सुष्मिता, प्लास्टिक हमारे पूरे इकोसिस्टम को तीन तरीके से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लैंड पोल्यूशन हो गया, जब प्लास्टिक कचरे के ढेर में जाता है तो ये मिट्टी की फर्टिलाइट को कम कर देता है। प्लास्टिक मिट्टी में पानी के रिसने को रोकता है जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता। इसके अलावा कचरे में मौजूद प्लास्टिक जब धूप और गर्मी के संपर्क में आता है तो इससे जहरीले केमिकल्स निकलते हैं जिससे पेड़ों को नुकसान बहुत पहुंचता है।
0: और जो सीपेज नहीं हो पाता है दोस्तों, अंडरग्राउंड वाटर नहीं हो पाता है, तो कई बार हमने अर्बन फ्लडिंग, जैसे हमने कई ऐसे नए बने शहरों को भी देखा है जहाँ फ्लड जाते हैं, और हर बार वो आफ्टर रेन्स, क्योंकि वाटर को सीप करने की कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि हर जगह कॉन्क्रीट है या प्लास्टिक है, तो वो वाटर कहीं रिचार्ज होने के लिए नहीं जा पाता है, और हम देखते हैं कि फिर वापस से ही हमारी ही लाइफ को वो इम्पैक्ट करता है। अब बढ़ते हैं पूजा थोड़ा सा मरीन लाइफ की अगर हम बात कर लें, यानी कि जो वाटर बॉडीज में हमारे जानवर रहते हैं, कई बार इसी सीपेज के थ्रू या फिर जो हमने प्लास्टिक हटाया है, कूड़े में फेंका है, वो कहीं ना कहीं ऐसे किसी वाटर बॉडीज में चला जाता है, और फिर उसमें रहने वाले जो जानवर हैं, मछलियाँ हैं, उनके भी उनको भी फूड चेन में एंटर कर देता है, और एट द एंड ऑफ द डे वो हमारी ही फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं, और एक तरीके से हमें ही, क्योंकि वो पानी पल्यूट हो गया है, वो जानवरों के लिए भी इतना ज़्यादा हार्मफुल है, तो कहीं ना कहीं हमारे पर ही उसका इम्पैक्ट आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है।
1: और जैसे कि सुष्मिता ने शुरू में ही एक टर्म यूज़ किया था, माइक्रोप्लास्टिक। आखिर माइक्रोप्लास्टिक क्या है, ये किस तरह से हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, बात होगी इस पर, लेकिन पहले ही कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: तो सुष्मिता, हम बात कर रहे थे प्लास्टिक के बारे में, तो अभी हम माइक्रोप्लास्टिक पे भी बात करेंगे, लेकिन क्यों ना एक छोटा सा क्विक रिकैप हो जाए।
1: पूजा, क्योंकि ना प्लास्टिक की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं ना कि ये हम ऐसा किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे सामने रोज़ के लिए हमारे रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ें हैं जिस जो हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं, एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो जब सिंगल यूज़ प्लास्टिक की पूजा हमने बात की थी, तो हमने दोस्तों को ये बताया था कि एक बॉटल या एक स्ट्रॉ भी डीकम्पोज होने में कितने साल लग जाते हैं। तो सोचिए जिस फ्रीक्वेंसी से हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन कितनी स्लो रेट से हो रहा है, तो अक्यूमुलेशन हो रहा है। तो हमने फ्लडिंग की बात की, क्योंकि लैंड पोल्यूशन से जब हम एक कॉन्क्रीट जंगल जब हम कह रहे हैं कितनी ज़्यादा प्लास्टिक्स हैं, तो सीपेज नहीं हो पा रहा है पानी का, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों। और जब प्लास्टिक्स की बात करते हैं, तो हमने ये भी देखा कि मरीन लाइफ कैसे इफेक्ट हो रही है। पूजा, जो भी पोल्यूशन है हमारा ग्राउंड से, वो वाटर में जा रहा है, स्ट्रीम्स में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, और कई बार ओशंस तक में भी वो पोल्यूशन जा रहा है। तो जो समुद्री हमारे जानवर हैं, जो हमारे फिशेज रहते हैं रिवर्स में या किसी भी तरीके की वाटर बॉडीज़ में, उनको भी कितनी तरीके से वो इम्पैक्ट करता है उनकी लाइफ को, और उनकी पूरी फूड चेन इफेक्ट हो जाती है।
0: और अब तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है हम ह्यूमंस के लिए जानना, विच इज़ माइक्रो प्लास्टिक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, ये सन और वाटर से फ्रेगमेंट होकर यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जैसे कि माइक्रो

0: प्लास्टिक कहते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक हमारी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, नमक, यहाँ तक कि हमारे खाने में शामिल हो चुका है। साइंटिस्ट ने ये तक कहा है कि इंसानों के खून और लंग्स में भी माइक्रोप्लास्टिक के कण मिल रहे हैं, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ हमें देखने को मिल रही हैं।
1: और अगर हम इंडिया के रेफरेंस में देखें दोस्तों, तो CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक भारत में हर साल लाखों प्लास्टिक का जो कचरा है वो पैदा होता है, जिससे कुछ तो हम रिसाइकिल कर भी पाते हैं, लेकिन वही है, हमने पहले भी बात की पूजा, कि जो रिसाइकिलिंग का प्रोसेस है अगर हम उसको रिफ्यूज़ करें या हम अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ना इस्तेमाल करें और बैग्स का, जैसे हमने कहा कि हमारी एक हर बार हम जाते हैं एक सामान लेने भी तो हम प्लास्टिक में ही लेके आते हैं, तो वो अक्यूमुलेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी हैबिट भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हो रहा है। तो अगर वो रिसाइकिल होगा तो भी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, और तो और हमारा जो प्रोडक्शन है कचरे का वो ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस है ना वो ख़राब हो रहा है, जिसके लिए हमें लगता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कुछ

0: भारत में हर साल लाखों प्लास्टिक का जो कचरा है वो पैदा होता है, जिससे कुछ तो हम रिसाइकिल कर भी पाते हैं, लेकिन वही है, हमने पहले भी बात की पूजा, कि जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, अगर हम उसको रिफ्यूज़ करें या हम अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ना इस्तेमाल करें, और बैग्स का, जैसे हमने कहा कि हमारी एक हर बार हम जाते हैं एक सामान लेने भी, तो हम प्लास्टिक में ही लेके आते हैं, तो वो अक्यूमुलेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी हैबिट भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हो रहा है। तो अगर वो रिसाइकिल होगा तो भी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, और हमारा जो प्रोडक्शन है कचरे का वो ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस है ना वो ख़राब हो रहा है, जिसके लिए हमें लगता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कुछ ज़्यादा अच्छा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बुरा तो नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और साथ ही दोस्तों बता दें कि हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं पूजा, जैसे कहते हैं ना 3 R's, द वेरी फेमस 3 R's, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का तो अगर प्रण लें तो इसका इस्तेमाल हम कम से कम करें, और जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं और अपना कुछ सामान, जैसे कोई बैग हो गए, अगर आप अपना कैरी कर सकते हैं कहीं भी आप जा रहे हैं शॉपिंग या कुछ सामान लेने, तो अगर हम अपना बैग कैरी कर रहे हैं तो हम रिफ्यूज़ कर देंगे कि हमें प्लास्टिक्स नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और कई बार ऐसा भी होता है पूजा कि हम ना इस्तेमाल जो फ्रीक्वेंसी है हमारी उसको कम कर सकते हैं, अगर हमें नहीं ज़रूरत है तो कन्वीनियंस के लिए हम कई बार डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि शायद एक यूज़ में हम कर सकते थे,
1: बिल्कुल
0: तो रिडक्शन कर सकते हैं। और रीयूज़, हर चीज़ एक बार करके फेंक देना वो मेरे ख्याल से एक वेस्ट जनरेशन हम कहते हैं। तो अगर आपके पास एक कोई चीज़ है और आपको पता है वो ख़राब नहीं हुई है तो आप उसको दोबारा से इस्तेमाल कर लें, कोई भी प्लास्टिक है फॉर दैट मैटर, या हमने कोई ऐसी खरीदी कोई सामान जिसका हमारे साथ प्लास्टिक जनरेट हुआ ही है, तो उसको किसी और काम में भी ले आएं। और बात होती है रिसाइकिल की, तो सही जगह पर जब रिसाइकिल चीज़ें हो जाती हैं पूजा, तो हमने पहले भी बात की थी कि रिसाइकलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, बट यही है कि जो हम बैलेंस अगर बिगड़ेगा एनवायरनमेंट में तो उसका खामियाजा हम इंसानों को भी है और जो जानवर रहते हैं उनको भी है।
1: सुष्मिता, यूजुअली हम लोग बॉटल ही प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, बैग्स का, पॉलिथीन का, ये ऐसी चीज़ें जो हम अवॉइड कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए।
0: और पूजा एक चीज़ और जो मुझे लगता है कि लोग शायद इग्नोर कर देते हैं या हड़बड़ी में ध्यान नहीं देते हैं, कि जब हम अपना कूड़ा फेंकते हैं तो हमने बिन्स के कलर देखे हैं, ग्रीन बिन्स और ब्लू बिन्स, तो तब भी हम अपना जो कूड़ा है वो सेग्रीगेट करके अगर फेंकें, कि एक तरी अगर आपका वेजिटेबल वेस्ट अलग है और बाकी आपका वेस्ट अलग है, तो शायद जो रिसाइकलिंग के लिए जब
1: बहुत
0: जाता
1: ईजी
0: है
1: हो
0: सामान
1: जाएगा।
0: उन लोग को भी बहुत इस चीज़ से सहूलियत होगी, और जितना ज़्यादा हम वेस्ट जनरेट करेंगे वो उतना ही इजीली रिसाइकल हो जाएगा, तो वो जो चेन है वो हम कहीं ना कहीं बैलेंस कर पाएंगे।
1: अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि हैबिट, हमें उसे भी सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब क्यों ना सुष्मिता एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए,

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर. हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर. हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर. नया भारत, नया आकाशवाणी.
4: तो अब श्रोताओं, बढ़ते हैं अपने अगले बेहद खास सेगमेंट प्रेरणा पुंज की ओर.
5: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथन में, कम लिखो मगर अच्छा लिखो को सार्थक करने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 को जयपुर, राजस्थान में. उनके पूर्वज हिमाचल

0: प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र के गुलेर नामक स्थान के निवासी थे।
1: 10 साल की आयु में ही गुलेरी जी ने संस्कृत भाषा के ज्ञान और भाषण में अभ्यस्त हो गए थे। उन्होंने अध्ययन और स्व अध्याय के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृतिक, बांग्ला, मराठी के साथ ही जर्मन और फ्रेंच भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था।
0: दोस्तों, और इतना ही नहीं, उनकी रुचि धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा, साहित्य से लेकर चित्रकला, लोक कला, विज्ञान और राजनीति, समसामायिक सामाजिक स्थिति तथा राजनीति में भी उनका गहरा रुचि थी और गहरा उस पे अनुभव भी था।
1: वर्ष 1893 में जयपुर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया, फिर कोलकाता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1904 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की शिक्षा उत्तीर्ण की।
0: बता दे दोस्तों कि उन्होंने मेयर कॉलेज अजमेर में अध्यापक पद का कार्य किया और अपने शिष्यों में वो काफी लोकप्रिय थे। गुलेरी जी के असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें बनारस बुलाया और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलाया।
1: गुलेरी जी संपादक, निबंधकार और कहानीकार थे। उन्होंने कम रचनाओं के माध्यम से ख्याति अर्जित की। उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के संपादन के अतिरिक्त जयपुर के समलोचक नामक पत्रिका का भी संपादन किया।
0: दोस्तों, आपको बता दें कि उनकी कहानी उसने कहा था ने सभी कीर्तिमान तोड़ दिए थे। उनकी कहानी संग्रह गुलेरी जी की अमर कहानियां नाम से प्रसिद्ध है। उनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे अगर हम निबंध की बात करें तो कछुआ, धर्म, पुरानी हिंदी, देवकुल, संगीत, आंख। और अगर पूजा हम उनकी कुछ कहानियों की भी बात कर लें तो उसमें है सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्ध का काटा। और कविताएं हैं जैसे कि एशिया का विजय, भारत की जय, वेनॉग बर्न, अहितागर, झुकी कमान, ईश्वर से प्रार्थना। दोस्तों, 12 सितंबर 1922 को काशी में 39 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, हमने हमेशा ही पूजा, जब भी प्रेरणा पुंज अपना हम सेगमेंट लेके आए हैं तो हमने कई बार ऐसे कलाकारों की बात की है। आज हमने एक लिटरेचर से जुड़े हुए इनकी बात की, लेखक की बात की। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सीधा दोस्तों से यही रहता है कि आप जिस भी फील्ड के हों, आप अपनी फील्ड मत छोड़िए। कुछ लोग एज अ हॉबी भी परस्यू करते हैं, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो। तो मुझे लगता है कि आपको जितने भी आपका सीरियस प्रोफेशन क्यों ना हो, आपको जो अपना क्रिएटिव साइड है ना, उसका टच कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब भी आप अपने काम से, आप अपने कॉलेज से, अपनी पढ़ाई से फ्री होके जब बैठते हैं ना अपने साथ, तो पहली चीज़ जो हम लोग कर पाते हैं अपने लिए वो होती है कि हम अपनी क्रिएटिव साइड को निखार सकें। क्योंकि कई बार वो हमें सिर्फ एनर्जी तो देता ही है, साथ ही साथ ऐसा क्लिंजिंग का काम करता है ना हमारे माइंड को, कि हमारा माइंड फिर से रिजुविनेट हो जाता है और उतनी ही एनर्जी के साथ वापस आता है कि हम अपनी जो भी प्रोफेशनल लाइफ है, हम उससे जितना भी थक गए हों, लेकिन हमारा जो सेंटर है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, उससे हम तरोताज़ा हो जाते हैं।
1: शश्वता, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हमें उसे भी बना कर रखना चाहिए। जैसे कि हमने अभी देखा कि गुलेरी जी ने बहुत कम साहित्य लिखा है, लेकिन जितना भी लिखा है उसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क एंड कंटेंट बहुत ज़रूरी है।
0: और वही है कि कई बार लोग सोचते हैं, स्पेशली जो लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद अभी उनका काम रेडी नहीं है, तो या फिर वो इतने अच्छे नहीं हुए। तो इसमें एक चीज़ जो मुझे लगता है कि कई बार लोगों ने, टीचर्स हमेशा कहते हैं कि आपको अगर लग रहा है कि आपकी कला अभी शायद रेडी नहीं है, तो आप उसको छोड़िए मत कि जब एकदम वो परफेक्ट हो जाएगी तभी आप किसी को सुनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें अंदर शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो अगर आपको ऑडियंस चाहिए और आपकी कोई भी छोटी सी कहानी है, तो आप अपने दोस्त से शुरू करिए, फिर दोस्तों में बैठ के सुनाइए। कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करेगा और साथ ही साथ जब आपके पास अच्छे क्रिटिक्स के लिए लोग होंगे ना, तो आपको समझ में भी आएगा कि शायद वो कौन सी ऐसी कड़ी है जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको बाकी से, आपकी ऑडियंस से कैसे जोड़ेगी। और इसी के साथ पूजा, जब हम क्रिएटिविटी की बात करें तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी से चलते हैं गाने की तरफ और थोड़ा एंटरटेन हो लेते हैं।

0: तो दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद पूजा हम फाइनली अपने जो प्रोग्राम है उसके उस सेगमेंट पे पहुंच चुके हैं जहां हम अपने दोस्तों से कहते हैं कि हम उनसे कुछ सवाल करते हैं और हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा समझें और थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालें, और अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा रिसर्च करके आंसर्स एक्चुअली देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जनरल अवेयरनेस तो वाकई जीवन में कभी ना कभी तो काम दे ही देती है।
1: तो सुष्मिता, बता दूं कि कल का हमारा सवाल था, कौन सी भारत की नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है, जिसका सही जवाब है माही।
0: और दोस्तों, अब सवाल जो आज का है उसकी बारी है, और आज का सवाल हमारा है कि गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मैं दोहरा देती हूँ, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। सेंड योर आंसर्स ऑन आवर ईमेल आईडी जो कि है yuvvaniald@gmail.com, और हमारा नंबर है 8004926250। आई रिपीट, 8004926250 पर। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, और कई बार हमारा सेगमेंट पूजा जो ये क्वेश्चन आंसर का है उसका मेन पर्पस तो यही रहता है ना, कि कई बार हम कुछ चीज़ें जो सुनते हुए सीखते हैं, हर चीज़ हम किताबों से नहीं सीखते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू, और जब हम सुनते हुए सीखते हैं या कुछ विजुअल्स के साथ सीखते हैं तो वो हमारे माइंड में ना एज अ प्रेशर, एज अ पढ़ाई का प्रेशर की तरह नहीं जाती हैं, वो एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन की तरह जाती हैं और हमारा जो दिमाग है ना उसको रेस्टोर करके रखता है। तो आइए एक और गीत सुन लेते हैं।

0: तो श्रोताओं, अब बारी है करियर की बात में। सुष्मिता, हमारे कई सारे लिसनर्स हैं जो तैयारियां कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने की, तो बहुत ज़रूरी है कि उन्हें टाइम पे पता चले कि कौन सी वैकेंसीज इस वक्त आ रही हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं जिसके बारे में आपको सुष्मिता बताएगी।
1: तो दोस्तों, आपकी नॉलेज में ले आते हैं कि SBI PO की वैकेंसी आई है। तो जो आपकी साइट है उसकी लास्ट डेट 8 जुलाई है। तो अगर आपने अभी तक नहीं एलिजिबिलिटी चेक की है तो प्लीज़ डू, और अगर आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दें। बाकी इंडियन ओवरसीज़ बैंक में अप्रेंटिस की पोस्ट चाहिए, लास्ट डेट जो है वो है 20th of July। तो दोनों में हम यही कहेंगे आप ऑफिशियल साइट ज़रूर जाके चेक करें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, और अगर आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो प्लीज़ आप फॉर्म्स फिल कर दें, क्योंकि टाइम्स अब उतने ज़्यादा बचा नहीं है। और पूजा, समय तो अब ये हो रहा है ना कि हम अपना प्रोग्राम थोड़ा सा रैपअप की तरफ चलें, लेकिन तुम्हें तो नहीं लगता कि चलते चलते अपने दोस्तों को एक बेहतरीन सा गीत सुना देना चाहिए?
0: सुष्मिता, तुम कभी गलत नहीं हो सकती, तो प्लीज़।

0: तो दोस्तों समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। तो इसी के साथ मुझे यानी सुष्मिता श्रीवास्तव को
1: और मुझे यानी पूजा यादव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में

0: द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग अदिपुणा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मेपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अलशरा की राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम होगा पंचायत घर। इसमें श्रोता सुनेंगे श्यामा चरण पांडे से रामायण पाठ। संस्कृत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार त्रिपाठी रसराज का काव्य पाठ शाम 7:30 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर सुनिएगा सात्विक मिश्रा के गाए भजन और गीत। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण होगा रात 9:30 बजे। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 बजे सुनिएगा विदुषी मुनीर खातून बेगम का गायन। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम होगा रात 9:30 बजे। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर मुकेश पी मसीह से दुर्गेश मिश्र की बातचीत, फूलों की खेती में जैब्रेलिक अम्ल का महत्व। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष राय की वार्ता होगी बरसात के मौसम में कान में होने वाली सामान्य समस्या एवं उपचार, सुबह 6:45 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गंगूबाई हंगल का ख्याल गायन हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 बजे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन होगा दोपहर 12:15 बजे और पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन रात 10:30 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा लोकेश कुमार शुक्ल के गाए गीत सुबह 9:50 बजकर 50 मिनट

नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:45 पर, 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे एथलीट बजरंग पांडे से अभय कांत तिवारी की बातचीत। दीनानाथ यादव और साथी, जगत बहादुर यादव और साथी, राजमणि घायल और साथियों के गाए लोकगीत सुनिए सुबह 10:30। हेलो फरमाइश, इस कार्यक्रम में श्रोता अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे 12:30। प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा दिन में 2:30। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाड़ी शाम 5:15 होगा। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे सीताराम मिश्र से नीति वचन। हमारा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे शाम 7:31 पर होगा। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। गुलामीपुर मर्जर थाना सैनी कौशाम्बी से विजय कुमार प्रजापति सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री रूबी प्रजापति दिनांक 16 मई 2026 से लापता हैं। उनकी आयु है 15 वर्ष, कद 5 फुट, रंग सांवला और चेहरा गोल है। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस पते पर सूचित करें। पता नोट कर लें, विजय कुमार प्रजापति, ग्राम गुलामीपुर मर्जर थाना सैनी कौशाम्बी। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, विजय कुमार प्रजापति, ग्राम गुलामीपुर मर्जर थाना सैनी कौशाम्बी। इसी क्रम में ग्राम दलेलगंज थाना महेवा घाट जनपद कौशाम्बी से प्रेमचंद्र सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री नीलू देवी दिनांक 18 मई 2026 से लापता हैं। उनकी आयु है 22 वर्ष,

कद 5 फुट 3 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। इन्होंने काले रंग का सलवार सूट पहन रखा है। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस पते पर सूचित करें। पता नोट कर लें, प्रेमचंद्र, ग्राम दलेलगंज, थाना महेवा घाट, जनपद कौशाम्बी। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रेमचंद्र, थाना, ग्राम दलेलगंज, थाना महेवा घाट, जनपद कौशाम्बी। तो ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। रक्तदान तकलीफ देह नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता। इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है, वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें। रक्तदान महादान।

0: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

0: अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना जकार्तानगरे इण्डोनेशियादेशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यनेन सह द्विपक्षीयसम्बन्धं सुदृढं कर्तुं सहैव द्वयोः देशयोः व्यापकरणनीतिकसन्धेः कृते नूतन ऊर्जां प्रदातुं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयं विचारविनिमयम् अकारि। द्वयोः राजनेत्रोः समुपस्थितौ रक्षा महत्वपूर्ण खनिज कृषि सामुद्रिक सहयोग नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी इत्यादिषु विविध क्षेत्रेषु अनेकानि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। उभाभ्याम् नेतृभ्याम् जकार्ता नगरे भारतीय प्रबन्ध संस्थान बेंगलुरु इत्यस्य एकां नूतनां शाखां संस्थापयितुं सहमति च व्यक्तीकृता। सम्भाषणावधौ उभाभ्याम् भारत इण्डोनेशिया व्यापक रणनीतिक संधि सुदृढीकरणाय स्वकीया प्रतिबद्धता पुनः संशोधिता। जकार्तायाम् राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यनेन सह संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् परस्परं वर्धमानेन विश्वासेन रक्षा सुरक्षा तथा सामुद्रिक क्षेत्रेषु अस्मदीय पारस्परिक सहयोगः सुदृढः जातः।
1: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं।
0: इंडोनेशिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन बितंग आदिपूर्ण इति उपाधिना अलंकृतः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अस्य गौरवपूर्ण क्षणस्य कृते इंडोनेशिया सर्वकारं प्रति स्वकीयां गभीरां कार्तज्ञभावं प्राकटयत्। तेन अयं प्रतिष्ठित पुरस्कारः भारतस्य सार्धशतकोटि जनेभ्यः समर्पितः।
1: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: इतः प्राक् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपति प्रासादे इस्ताना मेर्देका इत्यत्र औपचारिक राजकीय सम्माननं प्राप्तवान्। अद्य अपराह्णे प्रधानमंत्री जकार्तायाम् इंडोनेशिया संसदः संयुक्त सत्रं च संबोधितवान्। प्रधानमंत्री सविशेषं न्यगादीत् यत् वैश्विक आतंकवादस्य प्रतिकाराय उभे अपि राष्ट्रे संयुक्त कार्यसमूह तंत्रस्य माध्यमेन अत्यंतं निकटतया कार्यं कुरुतः।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: केरल राज्यस्य वायनाड जनपदे मेप्पाडी समीपस्थे कल्लाडी स्थानके अद्य वायनाड सुरंग मार्ग परियोजनायाः निर्माणस्थले संजातेन एकेन भीषणेन प्राणहारक पंकपातेन त्रयः जनाः मृत्युमुपगताः। वार्ताहरैः सह भाषमाणः मुख्यमंत्री वीडी सतीशनः इमां घटनाम् अत्यन्तं कष्टप्रदां दुर्भाग्यस्पदां च अवर्णयत्। तेन आरोपः कृतः यत् जनपद आपद प्रबन्धन प्राधिकरणस्य समाह्वानानां पश्चादपि अधिकारिभिः दत्तानां निरन्तर निर्देशानां पालने गंभीरा उपेक्षा विहिता। तेन अग्रे ज्ञापितं यत् दुर्घटनास्थले सहायोद्धार कार्यार्थं राष्ट्रिय आपद उद्धार बलस्य दलानि राज्यारक्षक बलं सहैव अग्निशमन उद्धार सेवा विभागः सद्यः नियोजिताः सन्ति।

0: राम राम। कहो रानू भैया, का हाल चाल बटे?
1: देखो हो रघु भैया, खेती किसानी का हाल समाचार तो ठीक है?
0: हाँ भैया, ठीक है, रह चाहिए भैया।
1: देखो मुला दौ राजा या बखत देख एकदम खुश भइल हैं।
0: हाँ भैया, देखा था कि तू वहाँ भीग गया बटा भैया।
1: अरे का करी भैया, पंचायती में आवत रहे और देखे कर से रामकरण भैया धान लगावत रहें जाना।
0: अच्छा।
1: हाँ तो भैया हमहू 2 मिनट रुक गए और वही बारिश में हमहू भीग गए हो भैया।
0: हाँ देखा भैया, तनी बारिश से बच बचा के रहा भैया। हाँ
1: हाँ हाँ
0: क्या भैया, देखा मौसम बदलत बाटे भैया, सर्दी जुकाम हो जाए तो भैया खेती किसानी सब प्रभावित हो जाए भैया।
1: एकदम सही कहे, जोन बात कहता है भैया। देखे ये समय बारिश होता है
0: हाँ भैया, हाँ
1: तो देखे रघु भैया अपने साथे साथे किसान भैया बहनी हरण के अपने पशु का भी बहुत ध्यान देवे के
0: बिल्कुल
1: जरूरत
0: बिल्कुल,
1: है।
0: हाँ भैया।
1: और उमन सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के जोन शुरुआत होते हो भैया, उमन का है कि पशु के कई रोग
0: हाँ

0: जाने, जैसे मुंह पका भय, खुर पका भय, और
1: थनैला रोग है का,
0: थनैला भय,
1: लंगड़ी
0: और
1: बुखार
0: लंगड़ी
1: है।
0: बुखार, तो ये सब होए के संभावना जो है वो बढ़ जाती है।
1: और अक्सर भैया देखा ये सब बरसातें में होते हैं, क्या भैया देखा बरसात में जो है पशु
0: हाँ
1: जहाँ बने रात दिन कीचड़ होएगा जरको, तो भैया देखा काफ़ी देर तक कीचड़ में तो खुर खराब हो जाता है,
0: हाँ हाँ
1: और भैया उनके खाए वाला बर्तन अगर खाना उनमें सड़ गा हुआ है, पशु खा लेने या गंदा पानी पी लें, तो भैया देखा उनके मुँह पकड़ लगाता है, तमाम तरह की बीमारी होती है भैया, ये सबसे बचे चाहिए भैया।
0: ये तो एकदम सही कहे थे भैया। अच्छा एक बात और रहे हो, किसान भैया बहनिहारिन के चाहे कि भैया अपने जो जानवर के बांधत हैं, अगर भैया नीचे कनम से पक्का है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो भैया अब तक कहा है कि बाजार में ऐसा ऐसा पैड आवत है प्लास्टिक के,
1: हाँ बिछाए दे
0: जमीन के
1: भैया।
0: नीचे बिछाए देते हैं, तो उसे कहा है कि जो उनकर पैर है वो खराब ना
1: हाँ
0: होते हैं।
1: साथ साथ भैया अगर जमीन कच्ची भी बाटे तो
0: हाँ
1: देखें वहाँ कीचड़ ना होगा, सुखाए रहे भैया,
0: हाँ हाँ
1: राख उख
0: हाँ
1: डाल के सुखाए रहे हैं भैया, ताकि पशु जो है आराम से बैठ सके, फिसले
0: हाँ
1: बिना उसका चोट ना लगे, समय समय पशु के जो बर्तन बाटे भैया चारा वाला, हाँ

0: में ऐसा ऐसा पैड आवत है प्लास्टिक के,
1: हाँ बिछा दे
0: जमीन के
1: भैया।
0: नीचे बिछाई देते हैं, तो उससे कहा है कि जो उनकर पैर है वो खराब ना
1: हाँ
0: होते हैं।
1: साथ साथ भैया अगर जमीन कच्ची भी बाटे तो
0: हाँ
1: देखें वहाँ कीचड़ ना होगा, सुखाए रहे भैया,
0: हाँ
1: राख उख
0: हाँ
1: डाल के सुखाए रहे हैं भैया, ताकि पशु जो है आराम बैठ सके, फिसले
0: हाँ
1: बिना, उसका चोट ना लगे। समय समय पशु के जो बर्तन बाटे भैया चारा वाला, हाँ
0: हाँ
1: उसका बीच बीच में धोवत रहे हैं।
0: ये तो एकदम सही कहे भैया। अच्छा जो सबसे बड़ी बात ये है ना
1: बोला।
0: कि जो नमी और दलदल वाला जगह रहे थो एगो भैया, वहाँ का होता कि भैया मच्छर जो नहन
1: हाँ हाँ
0: वो बहुत परेशान करे थे उन्हों। तो
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हम तो कहे कि किसान भैया बहनी हरे ओके हमेशा सुरक्षित रखें, ठीक है।
1: हाँ जैसे नीम के सूखी नीम के पत्ते जलाए दें भैया अरे हैं, ताकि पशु पशुगन के मच्छर
0: हाँ,
1: मक्खी न लगे हैं।
0: एकदम सही कहे थे। तो हमके भैया आज पंचायती में काल आया है।
1: देखा भैया पंचायती में आज जो है एक ठो रामायण पाठ बाटे श्यामाचरण पांडे जी के, सुना जी?
0: हाँ हाँ
1: साथ ही साथ भैया देखा एक ठो बातचीत भी बाटे धान
0: अच्छा
1: की नर्सरी की देखभाल
0: हाँ
1: डॉक्टर प्रियंका सिंह से, भैया राकेश कुमार मौर्य जी बात किए, बाटे सुना जी?
0: हाँ
1: मुला देखा भैया जब तक पंचायती में कुछ गीत गाँव नहीं होते भैया देखा पंचायती कुछ निक नहीं लगता है।
0: एकदम सही कह भैया।
1: तो भैया देखा विष्णु राजा के एक ठो विकास गीत बाटे, हम कहीं
0: हाँ
1: तू सुना किसान भैया सुने।
0: सुनवा दे भैया।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया, देखा लोकेश सुनेगा विष्णु राजा के विकास की तरह भैया, बड़ा निक रहा। हाँ, साथ साथ भैया देखा संदेश होएगा,
4: एकदम सही कह रहा भैया। अच्छा एक बात और रहे हो, देखे बातचीत हो तो रहन की पशु के कैसे देखभाल किया जाए, तो मैं सबसे बड़ी बात यह है हो रघु भैया की, देखे ये बरसात में अगर किसान भैया समय समय पे चूना भ या ब्लीचिंग पाउडर भ एक भैया अगर छिड़काव कर देते हैं तो ऐसे कहा है कि जोन संक्रमण मुक्त हो जाता है। और साथे साथे भैया जैसे चारा और पानी देते हैं किसान भैया बहनी हरे,
3: अच्छा अच्छा,
4: तो ये बात का हमेशा ध्यान रखें कि बरसात में जोन भी पानी पियावे वो पानी एकदम साफ रहे, तालाब और जोन गड्ढा में भरा हुआ पानी है ओके भैया कोशिश रहे कि न पी पावे जानवर।
3: अच्छा अच्छा,
4: काहे कि वो जोन पानी है वो दूषित पानी है, ऐसे ही है कि उनके पेटी में कहा है कि कीड़ा मकोड़ा हो जाते हैं, समझता है कि नहीं?
3: मतलब भैया अरे नल के पानी पिलाओ।
4: हाँ, नल का पानी पियो। अच्छा। और साथे साथे हरा चारा ज्यादा हो तो ओके भैया सुखाई के चोकर के साथे मिलाई के अगर देते हैं,
3: अच्छा अच्छा,
4: तो उसे ये है कि जो उन पशु के दस्त होते हैं वो न होए।
3: अच्छा अच्छा।
4: और साथे साथे भैया देखे परजीवी नियंत्रण बहुत जरूरी है, उमन ये है कि बारिश के दिन में जब कीचड़ हो जाते हैं तो भैया कहा है कि जैसे लीक है, किलनी है, मक्खी है, मच्छर है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया।
3: हाँ भैया, ज्यादा हो जाते ना तो हाँ पशु के खून चूसने लगते हैं। हाँ, कमजोर हो जाते हैं,
4: पशु कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे ही है कि उसे बचाव भी दे भैया समय समय पे नहवाई दे, और भैया बहुत से ऐसा दवाई आवत है
3: अच्छा
4: जो उनके छिड़काव कर दे।
3: और साथ साथ भैया बरसात में जो है पशुवन के टीकाकरण जरूर करवाए।
4: एकदम सही कहे भैया, देखे कि जो उन टीका होता है वो चाहे तो भैया जो उन ब्लॉक है ब्लॉकी पे जाए।

0: के किसान भैया बहनी हरे भैया फ्री में टीका लगता है ओके करवा ले और समय समय पे एकर जानकारी के नाम से अपने पंचायती के माध्यम से लिहा भेजा था।
1: भैया देखा पशु जो है बहुत महंगा हुआ था ना,
0: हाँ
1: अगर को पशु नुकसान होगा भैया देखा
0: तो भैया नुकसान। अच्छा एक बात और है रघु भैया, बात यह है कि कर्म से देखे पशु जौन रहे भैया, भैया दूध दही जौन रहे भैया सब उहे है
1: बिल्कुल भैया।
0: तो भैया किसान भैया बहनी हरण के भैया कहीं से कहते हैं कि भैया कुछ नगद नारायण मिल गया था
1: तो भैया जो फसल के लिए खाद मिल जाती है।
0: हाँ हाँ हाँ तो ये बात है। अच्छा एक बात और कहें, जब बरसात फसल के बात कह दी है तो बरसात के मौसम में किसान भैया बहनी हरे सब्जी बोए हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो भैया एक बात का ये ध्यान रखें कि जौन कियारी बनाए हैं वो कियारी में पानी न रुके पावे, और जौने से ये है कि जौन पौधा है
1: अच्छा
0: वो मन भैया फंगस वगैरह न लगे। और साथ ही साथ भैया कुछ किसान भैया बहनी हरे नीम के जौन नीम कौड़ी रहते हैं
1: अच्छा अच्छा
0: वो के बचाए के अगर तेल पेराए रहते हैं तो भैया उही के तेल के छिड़काव कर दें तो भैया के नाम से बहुत बढ़िया हो
1: अच्छा
0: जाता।
1: अच्छा
0: और बरसात में सबसे बड़ी बात यह है रघु भैया कि छोटा हल्की गुड़ाई कर दें और जौन से कहा है कि सब्जी जौन है फरहर हो जाए।
1: बीच बीच भैया आ रहे खरपतवार निकालते रहे हैं।
0: हाँ एकदम सही
1: ताकि
0: कहा
1: जो
0: भैया।
1: खाद पानी नहीं है आपके फसल में लगी है भैया।
0: हाँ हाँ हाँ तो हम यह कह चाहते कि भैया जौन कीट फफुंदू हो उससे बचाव रखें और समय समय पे भैया के नाम से एकर देखभाल करें। और जौन किसान भैया बहनी है सबसे बड़ी बात यह है हो
1: अच्छा
0: कि यह समय भैया देखे हमहू तोहूँ को बहुत ध्यान देवे के है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: खान पान बहुत स्वस्थ रखब हो रघु भैया तबे के नाम से सही रहे।
1: हाँ भैया
0: और
1: ये बरसात में जो है
0: हाँ
1: भैया तेल मसाला जिन खा ज़्यादा कोशिश
0: हाँ
1: करा हरी सब्जी खा भैया
0: हरी सब्जी है
1: जो
0: जिसे
1: जल्दी पच
0: कर्म
1: जाए
0: से
1: भैया।
0: हाँ नेनुआ है लौकी है कोहड़ा है भाई किसान
1: भिंडी
0: भैया
1: है
0: बहनी के
1: तरोई है।
0: हाँ भिंडी है तरोई है ऐसे खाए से ये है कि भैया जो एकर पाचन क्रिया है वो आराम रहता है और ये नुकसान ना करे।
1: बिल्कुल भैया।
0: और सब्जी जोन बनावत है किसान भैया बहनी हरे घरे बनत है तो सबसे बड़ी बात यह है कि तनि ये बरसात में साफ सफाई का बहुत
1: हाँ
0: ध्यान
1: भैया
0: रखें।
1: खाए पीए सामान जो ढक के रखा भैया
0: हाँ
1: जर को मक्खियों की ना बैठो मैं।
0: और एक बात हो रघु भैया ये बतावे चाहते रहे हम के देखे लैकिया का दिलाए हैं
1: हाँ भैया
0: भैया उनकर बहुत ध्यान दे काहे कि का है कि कतो भैया खेले कूदे चला जाते
1: हाँ
0: हैं।
1: भैया पानी बरसत बाटे लड़कन का दिल खेलत बाटे भैया
0: हाँ
1: तो इससे भैया
0: और
1: सर्दी जुकाम हो जाता है।
0: एकदम सही कहा। और साथ ही साथ ही देखे एक बात का और ध्यान देवे
1: बोला भैया
0: कि ध्यान ही दें कि भैया देखे रात बिराते जमीनी पे न सोएं
1: बिल्कुल। हाँ भैया
0: काहे कि ये है कि भैया देखे गांव देहात में का है कि जमीनी पे आदमी सोई जाते हैं तो का है कि भैया कीड़ा
1: कीड़ा
0: गुजर
1: मकोड़ा
0: है
1: निकल आवत
0: हाँ
1: भैया।
0: निकल आवते हैं तो एक एक कांटे से नुकसान होता है।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही साथ भैया कोनो भी कपड़ा अगर किसान भैया बहनी हरे पहनते हैं या लड़कियाँ के दिला का पहनावत हैं तो ये बात के ध्यान दें क्योंकि खूब बढ़िया से झाड़ के
1: हाँ
0: पहने।
1: झार के पहने भैया
0: हाँ और जूता भैया पहनते हैं तो
1: वो
0: का है कि
1: एक बार देख लें वो गए
0: देख लें कहें कि कभो कभो भैया जूतों में का नाम से कोनो करकी
1: कीड़ा
0: रौना
1: मकोड़ा घुस
0: बैठे।
1: जाते हैं
0: हाँ तो
1: ये
0: हम
1: सब
0: ये
1: बात का
0: कहते
1: ध्यान
0: रहे
1: रखें
0: भैया
1: भैया।
0: देखे आज दिन मंगलवार है हो
1: हाँ भैया।
0: तो आज रामायण पाठ के दिन है आज श्यामाचरण पांडे भैया का एक ठे रामायण पाठ है।
1: अच्छा भैया
0: हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरण को सुनवाई दिया जाए
1: सुनवा दे भैया।
0: सुनवाई दे।
2: वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि

चंद्र सर्वत्र वंदते। गोस्वामी जी कह रहे हैं अनेक अक्षरों, अर्थों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाले श्री सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री भवानी जी और श्री शंकर जी की

यथा सुमंजन अंजदृग साधक सीध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान गुरुपद रज मृदु मंजुलयन जन नयन

गुरुदेव जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो सुंदर स्वाद तथा अनुराग सुगंधित रस से पूर्ण है। जो श्री गुरुदेव के चरणों के नखों की ज्योति मणि समूह के प्रकाश के समान है, वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। श्री गुरु चरण रज कोमल नैनामृत अंजन है। उस अंजन से अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सब संदेह को हर लेते हैं।

हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा।

सुनि समुझहि जनम उदित मन मन जहि अति अनुराग लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। साधुओं का चरित्र सुंदर कपास के तुल्य है जिसका फल रस रहित होने पर भी स्वच्छ और गुणमय होता है। साधुजन स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के दोष छिपाते हैं, इसी से संसार में बंदनी यश पाते हैं। संत समाज आनंद मंगल से परिपूर्ण है जो संसार में चलने वाला तीर्थराज प्रयाग है, जहां राम भक्ति ही गंगा की धारा है। कलिकाल के पापों को हरने वाली सूर्य पुत्री यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शिव जी की कथा मिलकर सुशोभित त्रिवेणी जी हैं।

मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ

गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस। यह सुनकर कोई आचरज न करें, क्योंकि सत्संगत की महिमा छिपी नहीं है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, और वह सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना मिलना

सहज नहीं है, सतसंगत आनंद मंगल की जड़ है। विधि हरि हर कब को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मनी गुण गन जैसे, बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजल गति शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई, संत सरल चित जगत हित, जान

0: जे बिनु काज दाहिने बाए परहित हानि लाभ जिनके रे उजरे हरस विषाद बसे रे कहत सुनत पर अघन अघाही जे पृथु शेष सरिष जगमाही हरिहर जसरा के सराहु से पर अकाज भट सहस बाहु से जे पर दोष लखही सहसाखी परहित घृत जिनके मन माखी तेज कृषान रोष महिषेशा अब अवगुण धन धनी दनेशा संत सरल चित्त और जगत हितकारी है। अब मैं सच्चे भाव से दुष्ट जनों की वंदना करता हूँ जो बिना प्रयोजन ही अपने हितैषियों के शत्रु बन जाते हैं, दूसरे के हित की हानि के लिए जिनके लिए लाभ जैसा होता है, जो कि श्री विष्णु और शिव जी के यश रूपी चंद्रमा को राहु के समान और दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए सहस्त्राबाहु के समान योद्धा बन जाते हैं।
1: हाँ भैया देखा, हाँ, रामायण पाठ रहा, हाँ, श्यामाचरण पांडे जी बड़ा निकला भैया, बड़ा फरिया बतियान भैया।
2: हाँ हाँ एकदम बहुत बढ़िया बतायन हो, आदमी के एकर अनुसरण भी करे के चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अच्छा एक बात और रहे हो रघु भैया,
1: बोला भैया।
2: देखे ए समय का नाम से किसान भैया बहनी हरे बेहन डाली है।
1: अच्छा अच्छा
2: भाई, धान के अपन नर्सरी डाली है जी के कहे थे, तो कुछ किसान भैया बहनी हरे अपन धान लगौ तो वह
1: अच्छा
2: आगे लगाए हैं, कुछ भाई अपन डाले हैं, कुछ के तैयार है।
1: बिल्कुल।
2: किसान भैया बहनी हरे के एक बात को बहुत ध्यान देवे के है कि भैया जो उन फसल है उमन आवश्यकता से अधिक पानी न दे।
1: हाँ भैया, कैसे भैया देखा बरसात तो बाटे है,
2: हाँ हाँ
1: ज्यादा पानी देवे तो फसल सड़ जाए,
2: फसल सड़ जाए। और दूसरी बात यह हो कि देखा जो उन काम से उपज है वह कमजोर हो जाता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात के ध्यान रखें। और दूसरी चीज ये है कि भैया किसान भैया बहनी हरन से अनुरोध है कि सिंचाई के पूर्व अपनी जौन गुल है ओकर सफाई कर लें।
1: अच्छा,
2: और पानी जौन है 15 सेंटीमीटर गहराई में लगावें।
1: अच्छा।
2: तथा दो सिंचाई के बीच में कम से कम 20 से 25 दिन का अंतर जरूर रखें।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और पानी लेवे के बाद कम से कुलाबा बंद कर दें, जिसे कहा है कि कुछ जनिक पानी जाता है तो चलु है।
1: हाँ।
2: तो ये बात का जरूर ध्यान दें।
1: अच्छा अच्छा।
2: और यदि भैया जो उन रोस्टर है नहर का, भैया पानी ना आवता है।
1: अच्छा।
2: तो नहर में खादी सोरी तथा पटरी के पानी जो उन बहत है ओकर सींच पाल कई के या अवर अभियंता और सिंचाई विभाग के अधिकारी के सूचित कैसे करते हैं।
1: अच्छा,
2: कि अब पानी ना आए।
1: अच्छा।
2: और कम से नहर न काटे भैया, किसान भैया बहनी हरे बहुत जन ऐसा नहन जो नहर गई है उसके काट लेते हैं।
1: हाँ, कुछ भैया कुछ किसान भैया जो है नहर हाँ, पर ही आश्रित बाटे भैया, नहर के पानी से सिंचाई करते हैं।
2: सिंचाई तो के काटे ना भैया, उमन से जो उन काम से पाइप द्वारा काम करें।
1: अच्छा।
2: और नहर में बंधा और रोध न लगावे। किसान भैया बहनी है इनके रोक देते हैं कि भैया हमारे खेत में पानी जाए।
1: अच्छा।
2: इसे कहा है कि भैया झगड़ा और तकरार के बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अधिक शीघ्र पानी लेवे में अप्राय कुलाबा न हटावे।
1: अच्छा।
2: और जो नहर है भैया सड़क किनारे जो रहे ट्रैक्टर उक्टर, कुछ किसान भैया बहनी हरे कहा है कि भैया ट्रैक्टर नहर के जो रहे ऊपर चलाए देते हैं।
1: हाँ।
2: उसे कहा है कि नहर जो है टूटे के डर रहे।
1: बिल्कुल। हाँ।
2: तो ऐसे ही है कि किसान भैया बहनी हरे के ये बात का बहुत
1: हाँ,
2: ध्यान देवे के चाहिए। तो हम तो उसे ये बताओ चाहते रहे कि भैया आज जो बातचीत है अपन धान के नर्सरी के देखभाल कैसे किया जाए।
1: अच्छा अच्छा।
2: उमन डॉक्टर प्रियंका सिंह से
1: राकेश
2: कुमार मौर्य भैया का बातचीत है। हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरन के सुनवा दिया जाए।
1: सुनवा दे भैया।
3: किसान भाई, खेती किसानी में यह समय जोन बा है जोन खरीफ के मुख्य फसल धान होत है ओकर बेहन डालत बाटे न, काफी किसान भाई डाल भी दे बाटे न। तब बात आवत

0: ई बात की कि भाई धान के नर्सरी अगर डाल दे बाटन तो ओकर देखभाल कैसे करें जौने से कोनो भी रोग दोख ना लागे, नर्सरी बढ़िया होए, ये आगे चल के धान का फसल पौध बढ़िया होए, सब बतावे खातिर आज कार्यक्रम में आए बाटिन डॉक्टर प्रियंका सिंह जी। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। एक विशेषज्ञ के नाते हमारे किसान भाई के बतावें कि धान के नर्सरी जौन बेहन डाले बाटन है ओकर देखभाल कैसे करें, बतावें आप।
1: सर्वप्रथम तो धान की जब हम पौध डाल देते हैं
0: हाँ,
1: तो उसके बाद चाहे पौध हम किसी भी विधि से तैयार करें
0: जी जी जी
1: लेकिन अंकुरण से पहले हमें सबसे पहले उनको पक्षियों से सुरक्षित करना अनिवार्य रहना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।
0: जी आपका है मतलब कि अगर धान को नर्सरी डाल दे बटन अगर जमाव नहीं आए तो पक्षी का खा सकते हैं, खाए ले ही तो जमाव कम होए तो जरूरत बात पक्षी से सुरक्षित किया जाए।
1: बिल्कुल जी, जी। उसके अलावा पर्याप्त नमी का भी प्रबंध रखना चाहिए पौध की बढ़वार के लिए।
0: जी जी, जी।
1: स्वास्थ्य हेतु सबसे ज्यादा आवश्यक है। दूसरा अगर निराई गुड़ाई के बारे में भी हम सोचते हैं तो हाथों से ही करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छा, इससे पौध खराब नहीं होती है।
0: यानी हाथ से निकाल दे तो जो धान उखड़े के डर न रहे। अब बात आओ तो मैं सिंचाई बराबर हमेशा हो चाहे, आप नमी की भी बात करें तो सिंचाई के बारे में भी कुछ बताएं आप।
1: नर्सरी जब हम लगाते हैं या पौधशाला लगाते हैं तो बुआई के पहले हफ्ते में रोज शाम के समय हल्की सिंचाई देना अच्छा होता है।
0: अच्छा।
1: दूसरा अंकुरण होने तथा पौध बढ़ने पर 2 से 3 सेंटीमीटर तक पौधशाला में पानी लगाना चाहिए।
0: यानी जब तक अंकुरण ना ही रहा तब तक रोज हल्की सिंचाई शाम का कई देख चाहे, और जब अंकुरण हो जाए तो 2-3 सेंटीमीटर पानी हमें लगाए देख चाहे।
1: और इससे हमें एक फायदा ये भी होता है कि खरपतवार भी कम आएंगे, पौध में लोहे या आयरन की कमी कम होगी,
0: जी
1: पौध अच्छे से तैयार भी होगी। और दूसरा जो है सिंचाई जब भी करें तो हमेशा शाम के समय में करें।
0: जी जी, अब बताओ बात ये आवत कि जो खरपतवार होता उकरे नियंत्रण बदे का करे के चाहे।
1: तो जैसा अभी मैंने बताया कि खरपतवार के नियंत्रण हेतु सबसे अच्छा हाथों से निराई गुड़ाई ही प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: रासायनिक विधि भी कौन होगा?
1: और अगर रासायनिक विधि से करना चाहते हैं तो 120 मिलीलीटर 50 cc ब्यूटाक्लोर या फिर 30 से 40 ग्राम प्रेटीला क्लोर को 60 से 70 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: अच्छा,
1: और इसका छिड़काव बुआई से 4 से 5 दिन के भीतर करना चाहिए।
0: अच्छा, 4-5 दिन के पहले कह दें खरपतवार नियंत्रित हो जाए, मतलब जमबई न करी है वो।
1: बिल्कुल।
0: अब बात ये आवा था कि भाई कौन कौन कीट बेरामी भी लग सका था पौध में धान के बेहन में, उसके बारे में भी कुछ बताओ। अब
1: धान की पौध में लगने वाले ये 3 कीट मुख्य है, जैसे की पहला पत्ता लपेटक कीट, दूसरा चना छेदक कीट तथा तीसरा हिस्पा कीट। ये धान की पौध में लगने वाले सामान्य कीट हैं।
0: यानी पत्ती लपेटक जोन होते हैं, तना छेदक
1: और हिस्पा कीट।
0: अच्छा, इनके बचाव के लिए क्या करें चाहे?
1: बचाव हेतु 2 मिलीलीटर क्लोरोपायरीफास का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी जी।
1: और लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र की नर्सरी या पौधशाला के लिए 60 से 70 लीटर घोल पर्याप्त रहेगा।
0: यानी 60 से 70 लीटर पानी में घोल बनाए के क्लोरोपायरीफास का छिड़काव कर दे ही तो नियंत्रित हो जाए।
1: हाँ बिल्कुल।
0: अब बात आवत धान के पौध में जो कृमि की समस्या हो तो एकरे बारे में भी कुछ बताऊं, क्या लक्षण हो तो कैसे निजात मिले एकरे बारे में भी कुछ बताऊं।
1: तो इसके लक्षण तो इस प्रकार है कि ये सफेद रंग के छोटे कीड़े होते हैं जो पौध की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं सर्वप्रथम।
0: जी जी।
1: अब तथा ये धान की पौध में गांठ बना देते हैं, जिस इस गांठ के कारण जिससे कि पौध की बढ़वार रुक जाती है तथा पौध पीली पड़ जाती है।
0: यानी पौध में कहूं गांठ पड़ जाए, पौध पीली पड़ जाए, समझ लेंगे सूत्रकृमि लग गया।
1: अच्छा, तो जब आपने लक्षण पहचान लिया तो उसके बाद रोकथाम हेतु कार्बोफ्यूरान 3G की 3 किलोग्राम मात्रा का प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में छिड़काव करना चाहिए।
0: जी जी जी।
1: सूत्रकृमि से रोकथाम हेतु
0: तो इसे नियंत्रित हो जाए सूत्रकृमि।
1: अब
0: बात आओ तो बुकनी भी रोग लागत है का?
1: बकानी।
0: बकानी रोग। अच्छा अच्छा, इसका क्या लक्षण है, क्या उपचार है बताओ।
1: बकानी रोग का लक्षण है इसमें जो कि हर किस्म में नहीं पाई जाती,
0: कोनो किस्म
1: किसी किसी किस्म में ये बकानी रोग पाया जाता है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो सबसे पहले तो इसकी पहचान हम ऐसे करेंगे कि जिस पौध में रोग लगा होगा वो पौध जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाएगी।
0: अच्छा।
1: तथा कमजोर और पतली रहेगी।
0: आप कहा है कि मतलब कुछ धान के फसल में जो बेहन बाटे है वो हमें अगर कोनो पौध बहुत लंबी होगी पतली होगी बे सामान्य से तो समझ लें कि वो बीमारी
1: कमजोर पतली और सामान्य से लंबी अलग दिखने वाली। तथा इस रोग के बचाव हेतु पहला काम तो हमें ऐसी पौध की रोपाई ही नहीं करनी चाहिए।
0: जी जी। उखाड़ देना
1: उसको उखाड़ देना ज्यादा अच्छा है।
0: जी जी जी। और
1: अगर ये रोग पूरी नर्सरी में दिखने लग

0: जाता है कि नर्सरी के ज्यादातर पौध में ये रोग बकानी दिखने लग जाए तो पूरी नर्सरी को ही नष्ट कर देना चाहिए।
1: अच्छा।
0: ऐसे पौध की ट्रांसप्लांटिंग या फिर रोपाई नहीं करनी चाहिए,
1: नुकसान हो
0: जाएगा।
1: अच्छा, रोपाई करें तो स्वस्थ पौधा
0: की करें। दूसरी चीज, अब वो नर्सरी नष्ट करके दूसरी जगह पे हमें तुरंत नई नर्सरी लगा देनी चाहिए।
1: अच्छा, दूसरा बीज ले आइए कि डाल दें।
0: बिल्कुल। और दूसरी चीज, जब भी पौध की रोपाई करने लगे तो इस चीज का ध्यान दें कि पौधे के अच्छे स्वास्थ्य हेतु 1 ग्राम बाविस्टीन को 1 लीटर पानी में घोलकर धान की पौध को लगभग आधा से लेकर 1 घंटा तक इस घोल में डुबा कर रखना चाहिए।
1: अच्छा।
0: उसके बाद पौध की रोपाई करने से स्वस्थ पौधे तैयार होंगे,
1: यानी कोनो रोग ना लागे तब।
0: बिल्कुल।
1: अब बात आवत है नाइट्रोजन की कमी अगर हो जाए तो का करे के चाहिए, ओकरे लिए बताऊं अब का लक्षण है, का पहचान है
0: नाइट्रोजन की कमी का? पहचान या लक्षण पहला तो ये है कि पत्तों का रंग पीला होने लगता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: पहले नीचे से शुरुआत होगी, पीला पड़ने की शुरुआत पौधे के नीचे वाले पत्तों से, निचले पत्तों से शुरू होगी। अगर ये कमी लगातार या निरंतर बनी रही तो धीरे धीरे ऊपर के भी पत्ते पीले पड़ जाते हैं।
1: यानी जब बेहन पियर आ जाए, एकदम पियर हो जाए, तो समझ ले कि हमें नाइट्रोजन की कमी है। अब वो करे लिए का करे चाहे अगर रोकथाम के लिए?
0: नाइट्रोजन की कमी के रोकथाम के लिए 10 से 12 किलोग्राम यूरिया को प्रति 1000 वर्ग मीटर नर्सरी में उपयोग करना चाहिए, जिससे कि नाइट्रोजन की रोकथाम की जा सके।
1: यानी यूरिया को हमें डाल दे चाहिए। अब बात आवत आयरन की कमी, जैसे हो जाता पियर आ जाता तब मोर्चा यस लग जाता है, तो करे लिए का करे चाहे? लोहा कमी का लक्षण है, का उपचार है बताऊं यार?
0: यदि यूरिया डालने के बाद भी पौध पीली ही बनी रहे तब समझ जाना चाहिए कि ये नाइट्रोजन के साथ साथ आयरन की भी इसमें कमी है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो ऐसे में पौध की ऊपरी पत्तियां पहले पीली पड़ेंगी और लगातार कमी बनी रहने पे नीचे की भी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी।
1: जी,
0: धीरे धीरे करके पौध सफेद रंग में बदल जाएगी और फिर सूख जाएगी, और सूखने के बाद जो है पौध भूरे रंग की नजर आने लगेगी। तो ये हो गया लोहे की कमी का लक्षण।
1: अच्छा,
0: उपचार
1: अच्छा।
0: के लिए सबसे पहला काम तो नर्सरी में पानी का उचित प्रबंध रखें,
1: यानी नमी रहे,
0: नमी पर्याप्त मात्रा में रहने पर लोहे की कमी
1: ना होए,
0: नहीं होने की जो है अनुपात कुछ कम रहता,
1: संभावना
0: है
1: कम,
0: संभावना कम रहेगी।
1: जी जी।
0: दूसरा जो है आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का 0.5% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: और तीसरी एक विधि है कि 0.5 लीटर आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
1: जी जी जी। इतनी रही बात आयरन की कमी के। अब बात आवत है मैं जिंक के कमी से भी देखे माओ तमाम रोग रहा था, तो एकर का लक्षण का उपचार वगैरह बारे में भी कुछ बताऊं?
0: जिंक की कमी होने पर जो है पौध में जो पत्ते हैं वो छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे या चकत्ते दिखाई पड़ने लगते हैं, और निरंतर कमी बनी रहने पर पूरा पत्ता ही सूख जाता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो इससे उपचार हेतु पहला तो है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का 0.5% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी जी।
0: और दूसरा है कि हम जो है 200 ग्राम चूना को 100 लीटर पानी में घोल कर भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे जो है जिंक की कमी पौध में नहीं होने पाएगी।
1: अच्छा अच्छा। और क्या करें कि चाहे माटी में भी कुछ करें?
0: अगर जो है कहीं कहीं जो है मृदा जो मिट्टी होती है वहां की पौध में जिंक या जस्ता जिसको बोलते हैं उसकी कमी मृदा में ही पाई जाती है। तो सब सर्वप्रथम अगर किसान भाई पहचान लेते हैं कि हाँ इस मृदा में ही जिंक की कमी है, यहाँ पौध नहीं अच्छे तैयार हो पाएगी,
1: तो माटी की जांच कराए पता चल,
0: हाँ मिट्टी की जांच करा के बिल्कुल पता चल जाएगी। तो और ये भी मतलब आंका गया है कि देश में लगभग 50% मृदा में जो है जिंक या जस्ते की कमी है।
1: जी जी।
0: तो इसलिए बुआई के समय ही मृदा में अगर हम 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में छिड़काव कर दे बुआई के समय ही,
1: अच्छा,
0: तो
1: अच्छा।
0: ऐसे मृदा में जिंक की कमी नहीं होगी।
1: जी,
0: तो जिसका आधार जो है असर पौधों पर भी देखा जा सकता है।
1: अच्छा अच्छा। तो ये तो रही बात भाई धान के नर्सरी में जिंक कमी, आयरन, नाइट्रोजन कमी से, और का सामान्य बात बताओ चाहिए कि देन नर्सरी की देखभाल करत रहे तो ठीक से हो जाए उनका नर्सरी, जैसे नमी पानी की कमी ना हो,
0: पानी की कमी बिल्कुल ना होने पाए, हमें निरंतर उसका ध्यान रखना चाहिए।
1: जी जी जी।
0: छिड़काव
1: और जमाव हल्की, पहले लोग ये भी कहा थे कि जैसे माल जमाव नहीं भवा बाटे, जमा शुरू हो तो दिन में तेज धूप हो तो ज्यादा पानी बात खराब हो सके तो पानी निकाल दे चाहे शाम को हल्की सिंचाई कर दे चाहे,
0: पानी निकालने की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए कि छिड़काव के वक्त कुछ अगर पानी ज्यादा पड़ गया तो थोड़ी सी

0: नाली बना के एक व्यवस्था रखनी चाहिए कि ज्यादा पानी होने पर उसकी निकासी भी की जा सके,
1: नहीं तो खराब हो सकता,
0: खराब हो सकता है। इसीलिए हल्का छिड़काव ही करें नर्सरी में, हल्का छिड़काव, हल्की नमी चाहिए,
1: हल्की सिंचाई करें। तो डॉक्टर प्रियंका सिंह जी, आप पाइन धान के नर्सरी के देखभाल के विषय में बहुत अच्छे तरीके से आप बताएं, किसान भाई आपके बातन का ध्यान रखें तो उनका नर्सरी बढ़िया हो। आपके जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, देखा हो रघु भैया, बातचीत रही धान के नर्सरी के देखभाल में डॉक्टर प्रियंका सिंह से, डॉक्टर राकेश मौर्य भैया के बातचीत,
3: बड़ी अच्छी नीक बातचीत रही।
2: हाँ, अच्छा एक बात और है, देखे राकेश भैया खूब फरिये फरिये पूछे न भैया,
3: हाँ भैया
2: काम से बहनी खूब बरिये फरिये बतियोबो की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एकदम सही चीज पूछन की भैया कौन पहचान कैसे होते और कब पता चले कि भैया नाइट्रोजन की कमी है, कब पता चले कि आयरन की कमी है। ऐसे
3: हाँ
2: ये है कि किसान भैया बहनी हरे एक ध्यान दी है,
3: बिल्कुल,
2: तो इसे लाभ बहुत।
3: हाँ, तो वही हिसाब से अगर भैया अपन धान लगाइएगा,
2: हाँ हाँ,
3: तो उनके भी धान पैदावार अच्छी हुई।
2: एकदम सही कह भैया। अच्छा एक बात और रहे हो भैया, देखे समय समय पर किसान भैया बहनी हरन के हम सभी नई नई जानकारी दे जाता, और साथ ही साथ किसान भैया बहनी हरन से एक राय भी लिया जाता है कि उन्हें अगर हमारे सबके प्रोग्राम में कोनो परिवर्तन करे के है,
3: अच्छा,
2: या कुछ सुझाव है तो वो हमें सबके बता ही सकते हैं,
3: या हम लोग के प्रोग्राम उनका कैसा लगा,
2: हाँ हाँ हाँ,
3: अपन राय दे सकते हैं।
2: हाँ, तो भैया वो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो 800-4926-2500
3: जी,
2: रघु भैया हम फिर से एक बार बताना चाहे थे, 800-4926-2500, ठीक है। तो किसान भैया बहनी हरे हम से आपस सुझाव हम इसको दी है, कर इंतजार रहे।
3: हाँ,
2: और देखो भैया चले के बेला होता,
3: हाँ,
2: है
3: मुला भैया, देखा बरसात समय बाटे,
2: हाँ हाँ,
3: तो चला चला फिर कहा भैया आ रहे हैं बरसात में, ज़्यादा लड़कन का दिल के ध्यान दें, ज़्यादा भीगे ना भैया,
2: हाँ हाँ,
3: भैया मौसम बदलत है, तमाम तरह के रोग बिरामी भी आओ थे।
2: हाँ, पंचो,
3: हाँ,
2: राम राम,
3: राम राम भैया।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
1: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
2: पहली बार
3: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को बताया निर्दोष, कहा कार्यप्रणाली में हुई चूक, दोषियों को मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाकर विकास को दी गति। राज्य में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री ने अभियान को जवाबदेही के साथ संपन्न कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले के बाद भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने पूरे प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय को निर्दोष बताया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कार्यप्रणाली में उनसे असावधानी जरूर हुई।
5: 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। लेकिन कार्य पद्धति के बारे में वे स्वयं असावधान रहे, ये बात तो माननी ही पड़ेगी।
4: श्री गिरी महाराज ने कहा कि जो कुछ हुआ है वह निगरानी में कमी और सावधानी न बरतने का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को दंड मिलेगा।
5: ये सारा जो हुआ यह निग्लिजेंस का परिणाम है, यह निगरानी न रखने का परिणाम है, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए, यह निश्चय ट्रस्ट ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतकरण पर

0: की है।
1: इस मामले में श्रीराम जन्मभूमि न्यास के महासचिव रहे चंपत राय ने एक पत्र में कहा है कि वह एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं मंदिर में चढ़ावा गबन मामले की जांच में अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की एक सप्ताह की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 18 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षा, सुशासन और रोजगार का एक मॉडल स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह बात आज प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अपनी कार्यशैली से विकास को गति दी है।
2: ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुल्तानपुर को 819 करोड़ रुपए से अधिक की 99 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी सुधार कर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जनता जब अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल बनता है, और जब सुरक्षा का माहौल होता है तो प्रगति को गति भी मिलती है, जिससे विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती मिलती है।
2: अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है, सुरक्षा का माहौल जब खड़ा होता है तो विकास भी होता है, और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है।
1: इसके बाद मुख्यमंत्री ने वाराणसी पहुंचकर कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और बारिश के मद्देनजर संभावित बाढ़ को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। हरियाली का यह उत्सव जन सहभागिता से मनाया जाएगा। अभियान को लेकर आज वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने राज्य सरकार के मंत्रियों संग बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बैठक में कहा कि 12 जुलाई को सभी विभागों के सहयोग से पूरे प्रदेश में पौधरोपण महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें केंद्र, प्रदेश सरकार के विभागों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों की सहभागिता रहेगी। उन्होंने बताया कि नोडल वन विभाग सर्वाधिक 15,50,00,000 पौधे लगाएगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि 12 जुलाई को प्रस्तावित वृहत वृक्षारोपण अभियान को पूरी तैयारी, समन्वय और जवाबदेही के साथ संपन्न कराया जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का आज 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर राष्ट्रहित में कार्य करने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में कुल 83 छात्रों को 84 पदक दिए गए। वहीं 62,537 छात्रों को डिग्री और 52 छात्रों को पीएचडी अवार्ड भी प्रदान किए गए। प्रदेश के होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज वृंदावन में बताया कि प्रदेश के कैबिनेट ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए 5,00,000 रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार होमगार्ड्स विभाग में तैनात अवैतनिक अधिकारियों को भी इस सुविधा के दायरे में लाया गया है।
0: एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, होमगार्ड के जवानों के लिए हर थाने में 2 रूम की व्यवस्था रहेगी, 1 रूम लड़कियों के लिए, 1 रूम लड़कों के लिए। होमगार्ड और अवैतनिक हमारे पदाधिकारी

0: अभी के परिवार को कैशलेस की व्यवस्था से जोड़ा है। आयुष्मान की तरह 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था हमारे होमगार्ड जवान कल ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं होमगार्ड विभाग के लिए। सभी
1: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज मिर्जापुर में बहुउद्देशीय खाद बीज और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
2: 20 लाख रुपए के लगभग लागत से यहाँ पर किसान कृषि कल्याण केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के भीतर लगभग 380 स्थानों पर हम लोग कृषि ब्लॉक विकास खंडों में ये अपना रहे हैं, जिसमें से एक पहाड़ी ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के भीतर आज सुबह का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इतना भव्य भवन कभी भी किसी सरकार ने किसानों के बैठने के लिए नहीं दिया।
1: हॉकी इंडिया ने ओमान के मस्कट में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली मेंस यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 से पहले राष्ट्रीय शिविर के लिए उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ियों को चुना है। इन खिलाड़ियों के नाम शाहरुख अली, राहुल यादव, केतन कुशवाहा, रोमित पाल और प्रहलाद राजभर हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। राजधानी लखनऊ समेत फरुखाबाद, शामली, बिजनौर, जौनपुर, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ समेत कई स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को बताया निर्दोष, कहा कार्य प्रणाली में हुई चूक, दोषियों को मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाकर विकास को दी गति। राज्य में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री ने अभियान को जवाबदेही के साथ संपन्न कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर राजेंद्र कुमार त्रिपाठी रसराज का काव्य पाठ।
4: सांप्रतम वर्षा काल अतएव गीतमेकं प्रस्तौमि। वर्षा कालोयं संप्राप्तः मेघो

हर हर मधुन गदंतो बम बम हर हर मधुन गदंतो भक्ता यांत

सखी रसना स्वादयितुं रसराजं त्वरयति गन्तुं गृहे सखी।

पुष्पे गमयति मधुपहा, पुष्पे पुष्पे गमयति मधुपहा, पुष्पे पुष्पे गमयति मधुपहा, पुष्पे पुष्पे गमयति मधुपहा, मदनो रसयति लोक सुखाय, राधा त्वरयति कृष्णं वीथ्यां विपिने सख्या।

0: वीत्याम विपिने सख्या सह मिलनाय।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र कुमार त्रिपाठी रसराज से उनका काव्य पाठ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। हम आपको सुनवा रहे हैं सात्विक मिश्रा के गाए भजन। तो लीजिए सबसे पहले मीराबाई की भक्ति रचना सुनिए सात्विक मिश्रा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सात्विक मिश्रा के गाए भजन। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म चिराग के गाने से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म मजबूर से। आवाजें मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की हैं, शब्द रचना आनंद बख्शी की, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब लीजिए सुनिए, शब्बीर अहमद का लिखा, हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गीत फिल्म डेंजरस इश्क से, आवाजी राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार की।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म दोस्ती से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म दोस्ती के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यानी चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले आपको सुना रहे हैं कुमार गंधर्व के स्वर में ये भक्ति रचना।

और इसी के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिज

0: के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांगी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब

0: छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
5: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है।

0: घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तरी, आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
3: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
2: Here is more from a correspondent covering the Prime Minister's visit.
4: Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Mr. Modi said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and common vision for the future. The Prime Minister said India believes in development, peace, stability and prosperity. Mr. Modi stressed the need for collective action against terrorism and unilateral actions that undermine regional security. He emphasized global South stability besides Indo-Pacific. The Prime Minister called for deeper cooperation in defense, maritime security, trade, digital technology, educational, artificial intelligence and critical minerals. He also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Chandipan Dasgupta, Jakarta, Indonesia.
2: The Prime Minister reached Jakarta last evening on the first leg

0: Champion Jannik Sinner has stormed into men's singles semi-final, beating Jan Lennard Struff of Germany in London this evening. In women's singles, Coco Gauff advanced to the semi-finals, defeating fellow American Jessica Pegula in a thrilling quarter-final match. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on Egypt in the round of 16 match in Atlanta tonight. The match will start at 9:30 p.m. Indian time. Later in another round of 16 clash, Switzerland will face Colombia in Vancouver at 1:30 a.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. Three persons killed and six go missing after a landslide hits Wayanad Tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India. And in men's cricket, India take on hosts England in the third T20 international of the five-match series in Nottingham tonight. That is all in the news at night. Good night.
1: Adab, ye Akashvani hai. खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शिमाली और जनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया के पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत किलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत तरक्की अमन इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वजीर आजम ने दिफा बहरी सलामती तजारत डिजिटल टेक्नोलॉजी तालीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने यूपीआई समेत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे को वसत देने के सिलसिले में इश्तराक की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत को भी उजागर किया। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तरीके कार के जरिए इंसदादे दहशतगर्दी के लिए करीबी तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
3: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश

0: पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। आज शाम इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक अरब से ज्यादा ख्वाबों को परवान चढ़ाने वाला मुल्क है।
0: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
1: वजीर आजम मोदी को आज एक रस्मी तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो से, इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज द बिंतांग आदिपूर्ण से सरफराज किया गया। वजीर आजम मोदी ने इस एजाज के लिए तशक्कुर का इजहार किया और इसे भारत के अवाम को वक्फ किया।
2: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है जिससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जोजीला टनल, जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क रास्ते को भी उजागर किया जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत समाजी और इक्तसादी तब्दीली की खातिर एक अहम तरीक़ेकार होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत में मसबूत इकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज करने का अज़्म किया है।
3: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया जिसका मकसद 20 लाख किसानों और 20,000 से ज्यादा ज़रई कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने विकसित भारत के नजरिए को हासिल करने

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कहकशा। जमी पे चल न सका, आसमान से भी गया, कट के पर परिंदा उड़ान से भी गया। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। आप सभी सुरीले दोस्तों का बेहद आत्मीय स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम कहकशा में। दोस्तों, कहकशा यानी सितारों का कारवां, आसमान की वो गैलेक्सी जहां हर सितारा अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता है, और हमारी इस महफिल के सितारे हैं हमारे वो जज्बात जिन्हें शायरों ने कागज़ पर उतारा, संगीतकारों ने धुनों से सजाया और फिल्मों ने अमर कर दिया। तो दोस्तों, अब से लेकर आधे घंटे तक हम और आप यादों, मोहब्बत और सुरेलेपन के एक ऐसे सफर पर बने रहेंगे जहां सिर्फ और सिर्फ सुकून होगा। दोस्तों, जब भी गजलों की बात आती है तो एक ऐसी आवाज जहन में गूंजती है जो रेशम जैसी नर्म और जिसमें समंदर जैसा ठहराव। साल 1982 में एक फिल्म आई थी अर्थ। इस फिल्म के सारे गाने एक तरफ और कैफी आजमी साहब की लिखी और जगजीत सिंह साहब की गाई ये गजल एक तरफ। जब जिंदगी में इंसान सब कुछ पाकर भी एक खालीपन सा महसूस करता है, तब ये गजल दिल पर दस्तक देती है। तो आइए कहकशा की पहली सुरीली किरण से आपको जोड़ते हैं और आपको सुनाते हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ।

दोस्तों, उम्मीद है आपको यह गज़ल ज़रूर पसंद आई होगी। शायद आपके दिल के तार हिल भी गए होंगे। यकीनन आप सभी इस वक्त यादों के किसी हसीन मोड़ पर खड़े होंगे। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कहकशां। दोस्तों, गज़ल लिखने वाले शायर और उसे पर्दे पर पेश करने वाले फ़नकार दोनों ही हमारे दिल में हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। वक्त की अपनी एक मजबूरी है जो किसी के लिए रुकता ही नहीं। थोड़ा रोमानी अंदाज में हम अगली गजल को सुनते हैं और उसे महसूस करते हैं।

दोस्तों, वो गजलें जिन्होंने हमारे दिलों को धड़कना सिखाया, जिन्होंने तन्हाइयों को आवाज दी। जिंदगी में जब शिकायतें बढ़ने लगे तो दिल कहता है कि शिकवा किससे करें, इस जिंदगी से तो एक अजीब सा रिश्ता है हमारा। तो अभी आप सुन रहे थे गुलजार साहब के लिखे उस शाहकार को, जिसे फिल्म मासूम से लिया गया था और संगीत दिया था आर डी बर्मन साहब।

सामने आवाज थी अनूप घोषाल की। दोस्तों, जिंदगी से भला कोई कितनी देर नाराज रह सकता है। आखिरकार ये जिंदगी ही तो हमें खूबसूरत मोड़ पर लाती है, जहाँ कभी किसी की आंखें दिल का हाल बयां करती हैं। गजल की बात हो और आंखों का जिक्र ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं, और जब बात फिल्म उमराव जान की हो तो उन आंखों की मस्ती में डूब जाने का दिल हर किसी का करता है। शहरयार साहब के लफ्ज़, खयाम साहब का संगीत और सुरों की मल्लिका, आशा भोसले जी की मखमली आवाज़।

दोस्तों, जब आंखों से जाम छलकने लगे तो होश कहाँ बाकी रहता है। लेकिन इस दुनिया में जो लोग खुद को बहुत समझदार समझते हैं और होशमंद समझते हैं, उन्हें क्या मालूम कि मोहब्बत का सुकून क्या होता है। होश में रहकर तो सिर्फ दुनियादारी निभाई जाती है, जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा मदहोश होना बेहद ज़रूरी है। अब हम आ पहुँचे हैं प्रोग्राम कहकशां के आखिरी पड़ाव पर। आइए चलते हैं उस दौर में जब जगजीत सिंह की आवाज़ ने हर आशिक के दिल को छुआ था। फिल्म सरफरोश से निदा फाजली साहब के लिखे ये बेहद खूबसूरत अल्फाज सुनिए और खो जाइए।

0: सचमुच दोस्तों, इन बेहतरीन गज़लों को सुनकर दिल तो यही करता है कि काश ये वक्त यहीं ठहर जाए, लेकिन वक्त का पहिया तो कभी रुका ही नहीं, चलता ही रहता है। उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा, आपके दिलों में एक मीठी सी याद बनकर ठहर गया होगा। तो हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए और अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, आपस में भाईचारा बनाकर रखें।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण। खेल दर्पण में आज आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति के साथ बरसों पुराना आपका रेडियो मीत एजे अमरजीत सिंह और इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है सरस्वती पाठक। खेल प्रेमी श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए पहले अयोध्या मंडल की स्थानीय खेल खबरों की ओर चलते हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में आयोजित दो दिवसीय पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का बुधवार 1 जुलाई को समापन हुआ। ये प्रतियोगिता विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों के तहत आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय के अटल बिहारी क्रीड़ा स्थल पर इस आयोजन में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग के लिए कबड्डी, खो खो, बोरी दौड़ और लंगड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। इसके अलावा बालक वर्ग के लिए गुल्ली डंडा और कंचा प्रतियोगिताएं भी शामिल थी। इन पारंपरिक भारतीय खेलों का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, शारीरिक दक्षता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जुड़ाव बढ़ाना था। समापन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पारंपरिक खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और इनके संरक्षण से युवाओं को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर प्रतिभागियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और इसे विश्वविद्यालय की एक सराहनीय पहल बताया। अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आयोजित 4 दिवसीय चयन ट्रायल के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मकबरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रायल मुकाबले में अंबेडकर नगर की टीम ने सुल्तानपुर को 55 रनों से पराजित कर जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अंबेडकर नगर की टीम ने निर्धारित ओवरों में 215 रन बनाए। टीम के बल्लेबाजों ने संयमित और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुल्तानपुर की टीम 160 रन पर ही सिमट गई और मुकाबला 55 रनों से हार गई। क्रिकेट एसोसिएशन के जिला सचिव उमेर अहमद ने बताया कि अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी के लिए मंडल स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किए जाते हैं। ट्रायल में अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और गोंडा जनपद के खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनकर्ताओं की ओर से खिलाड़ियों के बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण कौशल का बारीकी से मूल्यांकन भी किया गया। अयोध्या में 8.84 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा मकबरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा स्टेडियम के उच्चीकरण और नवीनीकरण के लिए भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अयोध्या के विकास खंड है रिंगटनगंज की ग्राम पंचायत ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और स्टेडियम की फिनिशिंग अंतिम चरण में है। इस स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए मल्टीपर्पज हॉल, बाउंड्री वॉल, बोरिंग गार्ड रूम, पंप हाउस, सीसी सड़क, ओपन जिम तथा आधुनिक रनिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा। स्टेडियम के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र में खेल गतिविधियों को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधाएं प्राप्त होंगी।

0: खेल दर्पण में अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अयोध्या मंडल श्री अनिमेश सक्सेना से। आकाशवाणी अयोध्या एफएम की ओर से सक्सेना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या में इस समय कौन कौन सी खेल गतिविधियाँ हैं जो चल रही हैं।
1: अयोध्या में बताना चाह रहा था कि पूरे यूपी का सबसे बड़ा एक स्टेडियम है जो कि लगभग 45 एकड़ में ये बना हुआ है और इसमें अलग अलग खेलों की बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पर चलती रहती हैं, जिसमें हमारे यहाँ कोचिंग जो चल रही है वो कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, हैंडबॉल, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, जूडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, ये सब खेल और कुश्ती, ये सब गेम यहाँ पर।
0: अभी हाल ही में कौन सा लेटेस्ट खेल गतिविधि चल रही थी?
1: अभी बिल्कुल बैडमिंटन खत्म हुई है 1 तारीख को। पूरा राज्य के बच्चे यहाँ आए हुए थे और उसमें से जो सिलेक्ट हुए हैं वो लोग नेशनल खेलने भी जा रहे हैं, तो इसलिए उस प्रतियोगिता का
0: ट्रायल हुआ था, उसका
1: प्रतियोगिता कम ट्रायल था।
0: जी।
1: एसोसिएशन द्वारा वो आयोजित की गई थी, क्योंकि यहाँ पर अपने खेल विभाग के अलावा अगर एसोसिएशन या क्लब्स या कोई भी आकाशवाणी भी चाहे तो अपने कोई प्रतियोगिता छोटी सी करा सकते हैं, तो कोई भी जना उसको कर सकते।
0: तो जो बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए वो कहाँ जाएंगे खेलने के लिए?
1: नेशनल
0: राष्ट्रीय
1: यूपी की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे
0: बैडमिंटन में।
1: इसी प्रकार से अलग अलग गेमों में चलता रहता
0: जी। और इस स्टेडियम में कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिसमें यहाँ नवोदित खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो अपने खेल को निखार कर, प्रोग्रेस करके, उसमें उन्नति करके अयोध्या मंडल का नाम रोशन करेंगे?
1: ये खेल तो जो मैंने आपको नाम बताया ये सर तो लोकल ही बच्चे इसको खेलते रहते हैं और बाहर के भी खेलते रहते हैं। साथ साथ ये स्टेडियम के अंदर 7 जो है गेमों के अंदर हॉस्टल है और वो भी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ सिर्फ बालिकाओं का ही हॉस्टल है। पूरे प्रदेश से हमारे 135 लड़कियाँ यहाँ पर रहकर खाना, उनकी सुविधाएं, ठहरना और सब चीज़ की दी जाती है, जिसमें हॉकी, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, तो कुश्ती और वॉलीबॉल, ये 7 गेम हैं।
0: स्थानीय खिलाड़ियों के अलावा जाहिर सी बात है यहाँ जिले के आसपास के ग्रामीण अंचलों से या प्रदेश के बाहर के भी खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे, ऐसे में क्या खिलाड़ियों को छात्रावास की भी सुविधा है यहाँ रहने के लिए?
1: 7 गेमों के अंदर यहाँ पर हॉस्टल है जिसमें हमारी बालिकाएं रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ बालिकाओं का हॉस्टल है तो उसमें वो लोग कर सकती हैं। और इसका सिलेक्शन होने का प्रोसेस जो है जिला स्तर से शुरू हो जाती है, पहले जिला स्तर पर अपने सिलेक्शन होगा।
0: अच्छा।
1: उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो मंडल पे जाएंगे, मंडल में जो सिलेक्ट होंगे वो फिर स्टेट में जाएंगे, फिर एक स्टेट में उन 15 दिन का एक कैंप लगाया जाएगा, सेंटर कोचिंग कैंप कहते हैं।
0: जी जी।
1: उस 15 दिन बाद जो कोच होगा उसमें से फिर जितनी सीटें होंगी 2, 5, 7 वो बच्चे जो टॉप के होंगे उनको ले लिया जाता है, जिसको सरकार की ओर से रहना, खाना पीना सब चीज़ फ्री।
0: तो उसमें किन किन खेलों के लिए यहाँ पे छात्रावास है? क्योंकि सभी खेलों के लिए तो नहीं होगा।
1: हॉकी है, हैंडबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, कुश्ती है, लगभग इसमें हर एक में 20-20 बच्चे रहते हैं, लड़कियाँ जो कि खेलेंगी या प्रैक्टिस करती हैं।
0: जी। छात्रावास में रहकर खिलाड़ी को अपने खेल कौशल को निखारना है तो उसे एडमिशन के लिए कौन कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं? एडमिशन के लिए उसे क्या कुछ करना होता है?
1: देखिए, लोकल अगर आना चाहता है तो लोकल यहाँ पे केवल 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है
0: वार्षिक,
1: वो करके कोई भी जना कर सकता है 18 साल से कम वर्ष का। और अगर 18 साल से ऊपर है वो लोग जो शौकिया खेलने आते हैं या अगर आप भी घूमने आना चाहेंगे या खेलना चाहेंगे तो उसमें 200 रुपये महीना उसको देकर यहाँ पर उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
0: जो स्पोर्ट्स की किट है वो वगैरह फ्री है सब?
1: नहीं, वो सिर्फ उनको हॉस्टल के जो बच्चे होते हैं उनको होती है, या वो खिलाड़ी जो हमारे यहाँ मंडल में की ओर से राज्य स्तर खेलने जाता है तो उनको जाते वक्त में अयोध्या मंडल की एक किट उनको उपलब्ध कराई जाती है जिससे वो आगे जाके वहाँ पे खेलते हैं।
0: तो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर अयोध्या मंडल के किन किन खिलाड़ियों ने अभी हाल ही में प्रतिभाग किया, उसका क्या परिणाम रहा? अभी हाल ही में कौन सी टीम स्टेट लेवल या नेशनल गेम खेलने गई?
1: नेशनल में अभी जूडो में भी गए हैं, कुछ हॉकी भी जीतती रहती है, हॉकी तो अधिकतर कहीं ना कहीं से हमारा मेडल लेकर आती ही है यहाँ की, वॉलीबॉल से भी 2-3 लड़के इस बार सेलेक्ट हुई थी।
0: बच्चों के पेरेंट्स की ओर से आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है?
1: उसी की जरूरत है, हम उस फिराक में लगे रहते हैं कि किस बच्चे के माँ बाप भी उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि माँ बापों के सपोर्ट के बिना कोई नहीं बढ़ता था। जैसे कोच कोचिंग दे रहा है, हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं, खिलाड़ी भी खेलने जा रहा है लेकिन घर वाले खाना डाइट या उसका ध्यान नहीं दे रहे, या कोचिंग के समय पे उनके रिश्तेदारी में भेज दिया, घर पे आटा लेने भेज दिया, तो वो सब जो सपोर्ट होता है वो घर से बहुत जरूरी है।
0: कभी कभी जूडो में कहते हैं कि बहुत खतरनाक गेम है, उसको मत खेलो, ऐसा डरा भी देते हैं बच्चों को।
1: जूडो में तो सबसे पहले गिरना ही सिखाते हैं, जब गिरना आ जाता है उसके बाद फिर उनको चोट ही नहीं लगती।
0: जी जी।
1: तो ऐसा कोई नहीं किसी भी खेल में चोट करने।
0: तो खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सक्सेना जी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत भी की गई भारत में। अगर हम अयोध्या और इसके आसपास के ग्रामीण अंचलों की बात करें तो इस मुहिम का कितना असर आप देख रहे हैं?
1: शुरुआत हो गई है असल में खेलो इंडिया की तरफ से। एक तो पहले एक जिला एक खेल करके स्कीम है जिसमें हम लोगों को एथलेटिक्स दिया गया, एथलेटिक्स में एक कोच है, उसमें 25 बच्चे उसमें सेलेक्ट कराए गए, उनको किट और वो सब दी जाती है।
0: अच्छा।
1: किट है, जूते, ब्रोजेस, सब चीज़ उनको देके

0: और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तो वो लोग खेलो इंडिया के तहत आगे जा सकते हैं।
1: अगर कोई एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कितने घंटे अभ्यास उसको जरूरी है और डाइट किस तरह की होनी चाहिए?
0: सबसे पहले तो भगवान द्वारा जो आपका शरीर बना के भेजा है
1: जी,
0: अगर वो सही स्वस्थ और उस तरह करके भेजा तो वो पहली बात तो वो स्पोर्ट्स के अंदर आ सकता है। और कई बार कोई दिव्यांग भी होते हैं तो वो भी उस चीज के अलग से, उसके अंदर भगवान से कुछ गलती हो गई लेकिन फिर भी वो लोग उसके अंदर निकल आते हैं। तो इस पहले तो हमारा शरीर उस हिसाब से होना चाहिए, हर गेम के लिए अलग तरीके का शरीर चाहिए होता है
1: जी।
0: एथलेटिक्स के लिए पतला तो गोला फेंकने के लिए तगड़ा
1: जी हाँ।
0: किसी में एजिलिटी ज्यादा है, किसी में स्पीड ज्यादा,
1: हाइट वगैरह भी देखी जाती
0: है, हाइट है तो बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेलेगा। तो इस तरह करके हर खेल के लिए अलग अलग अलग वो चलता है
1: जी।
0: आपका शरीर होना चाहिए पर फिर उसके अंदर जुनून होना चाहिए बहुत सारे।
1: सबसे बड़ी ये चीज है कि जुनून होना चाहिए, अगर जोश नहीं है तो फिर गेम खेल नहीं पाएगा,
0: फिर उसकी स्पीड स्टैमिना स्ट्रेंथ ये सब चीजें होंगी धीरे धीरे डेवलप कर लिया।
1: अनिमेश जी, हमारे जो पारंपरिक ग्रामीण खेल हैं, खो खो कबड्डी है, कुश्ती है, तीरंदाजी है और ये सभी खेल मिट्टी से जुड़े हुए हैं
0: जी, जी।
1: तो इन प्रतिभाओं को आगे लाने और उनके खेल को निखारने का कितना प्रयास इस स्टेडियम में किया जा रहा है?
0: देखिए कबड्डी में भी है, यहाँ पर कोचिंग चलती है, एक महिला है वो कोच है, ऐसी हमारे कुश्ती भी चलती है
1: जी।
0: कुश्ती हमारे गद्दे पे होती है पूरे अच्छे से, कबड्डी भी गद्दे पे होती है नए तरीके से, तो ये सब हमारे यहाँ चल रहा है। अभी खो खो का नहीं है लेकिन खो खो के पोल लगाए गए हैं, लेकिन यदि कोच नहीं है तो इसलिए बिना कोच के बच्चे प्रैक्टिस अपने आप बहुत कम कर पा रहे हैं, तो ये कारण इसके है। बाकी हमने दो गेम तो पकड़ रखे हैं।
1: चलिए, पूरी बातचीत में अगर मुझसे कोई भी बात छूट रही है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं। स्टेडियम के बारे में कुछ और आप विस्तार से बताना चाहें तो बता सकते हैं।
0: जिले में जागरूकता की बहुत जरूरत है, खासतौर के अयोध्या में, क्योंकि वही बात है, एक तो थोड़ा दूर है स्टेडियम हमारे शहर के उससे, तो हमारे आसपास के खिलाड़ी ज्यादा आते हैं
1: जी।
0: बस यही है कि माँ बाप जो भेजेंगे, जागरूकता रहेगी तभी वो आगे निकल सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आएंगे ही नहीं स्टेडियम तो कोई बच्चा निकलेगा कैसे? तो ज्यादा से ज्यादा आए यहाँ पर आगे खेले।
1: तो बातचीत खत्म करने से पहले एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कि इस स्टेडियम में कौन कौन से ऐसे गेम है जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है।
0: कबड्डी है, क्रिकेट है, जैसे कबड्डी है तो कबड्डी हमारे मैट के ऊपर कराई जाती है, मिट्टी पे भी कराई जाती है
1: जी।
0: ये खासियत है। क्रिकेट जो है हमारा इससे बड़ा स्टेडियम शायद ही कहीं, जैसे ग्रीन पार्क है
1: जी जी,
0: इतना बड़ा है जिसके अंदर हम अभी जल्द में रणजी भी कराएंगे। हॉकी जो है, हॉकी एस्ट्रो टर्फ पे खेला जाता है, बाकी सब जो मैदान में खेलते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने एस्ट्रो टर्फ दे रखा है। हैंडबॉल ओपन कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हैंडबॉल जो है इंडोर है, सर्दी गर्मी बरसात कभी भी हॉल के अंदर कर सकते हैं। स्विमिंग पूल सब जगह एक होते हैं, हमारे यहाँ तीन स्विमिंग पूल
1: अच्छा।
0: लर्निंग भी है और मेन भी है, ओलंपिक भी है और डाइविंग पूल भी है। वेट लिफ्टिंग में छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, जूडो है।
1: अभी जहाँ मैं इंटरव्यू कर रहा था हॉकी प्लेयर्स से, तो वहाँ देखा था मैंने एस्ट्रो टर्फ लगी हुई है, सारी सुविधाएं
0: जी, वो पूरा सुविधा है उसके अंदर। तो वही चीज है, अब जो मॉडर्न जमाने में जिस तरह चलना, जैसे एथलेटिक्स है सिंथेटिक ट्रैक पे होता है, तो हमारे सिंथेटिक ट्रैक है। अब मैदान वाला बच्चा जो मैदान में प्रैक्टिस कर रहा है उस ट्रैक पे दौड़ नहीं पाता है
1: जी जी,
0: लेकिन हमारे अयोध्या के लिए सौभाग्य है कि यहाँ के खिलाड़ी उसको ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और आगे निकलते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अयोध्या मंडल श्री अनिमेश सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी अयोध्या की ओर से। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या मंडल के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री अनिमेश सक्सेना जी। आकाशवाणी अयोध्या पर तैयार किया गया खेल दर्पण कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। खेल दर्पण में आज आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति के साथ बरसों पुराना आपका रेडियो मीत एजे अमरजीत सिंह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या में हमने कुछ खिलाड़ियों से भी बातचीत की जो वहां पर अलग अलग खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है?
2: प्रियांश यादव।
1: प्रियांश, आप यहां पर कौन सा गेम खेल रहे हैं?
2: कबड्डी सर।
1: और कब से आ रहे हैं यहां पर?
2: मैं एक साल हो गया सर।
1: तो नेशनल लेवल पे भी आपने गेम खेला है?
2: यस सर।
1: कहाँ गए थे खेलने के लिए?
2: छत्तीसगढ़ सर।
1: और पूरी टीम के साथ गए होंगे आप?
2: यस सर।
1: तो क्या परिणाम रहा, कब गए थे आप?
2: जनवरी में।
1: तो ये बताइए, गेम्स तो बहुत से थे, आपने कबड्डी को ही क्यों चुना, ऐसा क्या था इसमें?
2: सर मुझे अच्छा लगा सर, अच्छा खेल लेता
1: हूं सर। अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है ना। आपका क्या शुभ नाम है?
3: राकेश यादव।
1: राकेश यादव जी, आप इस स्टेडियम में कहाँ से आ रहे हैं?
3: मैं अयोध्या से आता हूँ।
1: किसने बताया आपको कि यहाँ पर इस तरह सिखाया जाता, आपको पता कैसे लगा?
3: पहले मैं स्कूल गेम खेला था, स्कूल में तो भैया आते थे प्रैक्टिस करने, उन्हीं के साथ आए।
1: स्कूल में कौन से गेम्स खेलते थे?
3: कबड्डी ही खेलते थे।
1: कबड्डी खेलने में कौन सी टेक्निक जो है सबसे बेहतरीन होती है, जिसमें जीत बिल्कुल लगता है कि जीत जाएंगे?
3: सर एंकल मारना और उसके बाद चैन मारना।
1: अच्छा,
3: ये बढ़िया टेक्निक है।
1: कहते हैं सांस का बहुत बड़ा, ब्रीथ का बहुत गेम होता है।
3: हाँ ये सर बहुत होता है, उसके बाद ना इसमें डर वर कोई वही नहीं रहता है, बिना डरे खेलो।
1: अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ खेलने गए हैं अभी तक?
3: सर हम आंध्र प्रदेश गए हैं, तेलंगाना गए हैं और इधर बंगाल उंगाल साइड।
1: ये बताइए कि इस गेम में कितनी

0: आपको प्रैक्टिस टाइम देना पड़ता है, कितना अभ्यास?
1: सर न्यूनतम सर सुबह 3 घंटे, 3 घंटे शाम तक।
0: तो डाइट भी कुछ विशेष बताते हैं कि कुछ भी खाइए?
1: नहीं सर, और बताते हैं डाइट कुछ भी थोड़ी ना सर, इस होटल खा सकते हैं जब खेलना है तो, इतना तो सुबह डाइट रहता है।
0: और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किसी भी गेम को खेल रहे हैं अगर, तो हमारी फिजिक बहुत अच्छी रहती है।
1: हाँ ये सब तो अच्छा रहता है
0: ना, और मेंटली भी हम अच्छे,
1: मेंटली भी बढ़िया रहते हैं, फिजिकल भी सब कुछ बढ़िया रहता है बॉडी के लिए।
0: जी जी। आपका क्या नाम है?
2: सौरभ कुमार।
0: आप कब से आ रहे हैं?
2: 2 साल हो गए।
0: 2 साल आपको हो गया?
2: यस।
0: और कहाँ के रहने वाले हैं?
2: अयोध्या जिला।
0: अच्छा, जब आप बाहर खेलने जाते हैं, नेशनल लेवल आप खेलने गए थे,
2: यस,
0: तो वहाँ से भी और भी बाहर से भी बहुत से खिलाड़ी आए होंगे,
2: यस,
0: तो वहाँ पे उनसे मिलकर आपने क्या सीखा वहाँ पर जब बाहर गए?
2: ये सीखा सर और मेहनत करे और अच्छा खेले। हम लोग हार गए थे वहाँ जाके 1 पॉइंट से फाइनल।
0: क्योंकि जब कभी हार मिलती है तो उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हार के आगे जीत होती है।
2: यस।
0: क्योंकि हम किस वजह से हारे तो हम उस पे काम करते हैं, है ना? आपका क्या शुभ नाम है?
3: सत्यम पाल।
0: आप भी ये स्पोर्ट्स स्टेडियम ढाबा सेमर में सीख रहे हैं कबड्डी?
3: जी।
0: कबड्डी खेल आपको क्यों अच्छा लग रहा है?
3: सर ये मिट्टी से जुड़ा है, प्लस इसमें इंटरेस्ट था मेरा।
0: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
3: हम लखनऊ के हैं।
0: तो क्या आप भी नेशनल लेवल कहीं खेलने गए हैं? कहाँ गए?
3: स्कूली गेम मैंने खेला है छत्तीसगढ़ में।
0: अच्छा, तो वहाँ पर जो टीमें और आई होंगी उनसे मिलकर आपको कैसा लगा?
3: उनसे मिलकर अच्छा लगा, और ये देखा कि मतलब कैसे रहना चाहिए, कैसे स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं और वो लोग कैसे स्ट्रेटजी खेलते हैं।
0: वैसे ब्रीथिंग के लिए क्या आप योगा वगैरह भी करते हैं घर पे?
3: हाँ,
0: क्योंकि इसमें सारा खेल तो सांस रोकने वाला है।
3: हाँ वो तो है, मगर जैसे कि प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस में स्टेमिना बढ़ता है, स्टेमिना से ब्रीथिंग भी बढ़ती है।
0: आपका क्या शुभ नाम है?
4: कोमल यादव।
0: आप इस स्टेडियम में कहाँ से आ रही हैं सीखने के लिए?
4: हॉस्टल से।
0: लोकल अयोध्या की रहने वाली हैं?
4: नहीं, बनारस।
0: छात्रावास से यहाँ पे रह रही हैं? अच्छा, तो ये बताइए आपने कौन सा गेम चुना है जो आप सीख रही हैं?
4: 400 मीटर एथलेटिक्स। हमें आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है।
0: अभी देखिए इंडिया में जो है 100 मीटर का भी नेशनल रिकॉर्ड टूट गया। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर कोई जो 100 मीटर भी 10 सेकंड के अंदर पूरा कर लेगा। आप एथलेटिक्स में और कौन कौन सी रेस जो है वो सीख रही हैं?
4: 200, 400।
0: आप कितने साल से सीख रही हैं यहाँ पर?
4: अभी तो हम लोग लखनऊ में थे, यहाँ ट्रांसफर हुआ है, 1 साल हुआ है।
0: और इसी स्टेडियम में श्रोताओं अब हम मिलने जा रहे हैं कुछ हॉकी प्लेयर्स से। आपका क्या शुभ नाम है?
5: तेजस्वी निषाद।
0: तेजस्वी निषाद जी, आप इस हॉकी को कब से खेल रही हैं?
5: 3 साल होने
0: हैं। लोकल यहीं की रहने वाली है कहीं बाहर से?
5: नहीं, प्रयागराज।
0: प्रयागराज से यहाँ हॉस्टल में रह के
5: साल चयन हुआ है।
0: तो आप कहाँ कहाँ तक खेलने गई हैं?
5: अभी तक दादर से नेशनल खेले हैं, राजगीर में हुआ था, और रांची में, राजगीर में कैंप लगा था और रांची में ही हुआ था।
0: तो नेशनल लेवल में तो वहाँ से बहुत सी टीमें आई होंगी।
5: हाँ।
0: तो आपने वहाँ जाकर क्या कुछ सीखा?
5: यही उन लोग पासिंग से खेल रहे थे
0: जी,
5: अच्छा मिला।
0: क्योंकि जब तक हम कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, बड़ी टीमों के साथ जाएंगे नहीं, तब तक हमारे खेल में उतना निखार नहीं आएगा,
5: नहीं
0: है ना? तो हॉकी को ही आपने क्यों चुना? ऐसा क्या था हॉकी में?
5: हॉकी गेम मतलब कि इंटरेस्ट था।
0: जी जी। जैसे फुटबॉल भी बहुत ही स्पीड का गेम है और हॉकी भी बहुत स्पीड का गेम है।
5: नहीं, हॉकी में इंटरेस्ट था इसलिए।
0: जी जी। तो हॉकी में आपका जो आइडियल प्लेयर कौन सा है, किसको आप पसंद करती
5: हैं? सविता पुनिया।
0: आपका क्या शुभ नाम?
6: सर शिवम।
0: शिवम, आप कहाँ से हॉकी खेलने यहाँ पे आ रहे हैं?
6: सर यहीं बगल से, 2-3 किलोमीटर।
0: आप भी कहीं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे खेलने गए हैं?
6: सर।
0: कहाँ गए हैं?
6: सर अंडर 19 खेले थे जालंधर में। अच्छा। 2023 में, और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप खेले थे दिल्ली में, वो भी 2024 में, और सब जूनियर खेले थे वो भी दिल्ली में खेले थे 2022 में।
0: जब पूरी टीम के साथ यहाँ से आप गए होंगे?
6: जी सर।
0: तो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर पहुंचकर आपको दूसरे खिलाड़ी भी वहाँ मिलते हैं?
6: जी सर।
0: तो क्या कुछ वहाँ पे आपको सीखने को नई चीजें मिलती हैं?
6: सर सबसे पहले तो ये रहता है कि हमें टीम कॉम्बिनेशन बना के मैच जीतना रहता है, बाकी अदर टीमों को मैच देख के सीखना रहता है कि अगली टीम कैसे खेल रही है, हमारे अंदर क्या कमी है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
0: आपका शुभ नाम?
7: चंचल मौर्य।
0: चंचल मौर्य, आप कहाँ से इस स्टेडियम में आ रही खेलने के लिए?
7: जी मैं मलिकपुर गांव से आती हूँ, और मैं बहुत ही छोटे घर से बिलोंग करती हूँ। तो
0: आप जब वहाँ से आती हैं तो जो लोग गांव में आपको पूछते होंगे तो वहाँ भी आप प्रमोट करती हैं, लोगों को बताती हैं कि चलिए मेरे साथ आप भी खेलिए वहाँ?
7: जी बोलती हूँ, पर मेरे साथ मेरी फ्रेंड आती है, गांव से ही है। तो मैंने तो हॉकी स्टार्ट तभी किया उसकी वजह से, वो आती थी। अच्छा, तो उसको देख के।
0: आप कब से खेल रही हैं?
7: मुझे 4 साल हो गए हैं।
0: 4 साल हो गए आपको, तो आप तो फिर कहीं बाहर भी खेलने गई होंगी?
7: जी नेशनल खेला है।
0: कहाँ पे गई थी नेशनल गेम खेलने?
7: आंध्र प्रदेश काकीनाडा में हुआ था चैंपियनशिप 2025 में।
0: क्या रिजल्ट रहा वहाँ पे?
7: मेरा गेम थोड़ा लूज था कि जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ नहीं खेल पाई, अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। पहली बार मैं गई थी खेलने तो वहाँ
0: मेन चीज ये होती है ना, जैसे मान लीजिए आप नेशनल लेवल खेलने गई हैं तो अगर नहीं भी जीती हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है वहाँ पर।
7: बहुत कुछ मिला, हमें क्या कमियां हैं, हम क्या अपनी गेम को और कितना डेवलप कर सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी गेम में, वो सारी चीज सीखने को मिली मुझे।
0: ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि हॉकी में जो है थकावट बहुत जल्दी हो जाती है?
7: जी लगता है, जैसे 70 मिनट का मैच होता है उसमें भी 4 क्वार्टर होते हैं।

0: तो हमें टाइम मिल जाता है, हम प्लेयर चेंज करके खेल लेते हैं।
1: तो आइडियल प्लेयर आपका कौन सा है, किसका गेम आपको सबसे अच्छा लगता है?
0: मेरा वंदना कटारिया है और बॉयज में है अभिषेक।
1: आपका शुभ नाम?
2: सब नीलाक्षी।
1: आप इस स्टेडियम में कहाँ से आई खेलने?
2: सर हम ये बगल के 1 किलोमीटर पड़ता है चांदपुर हरबंस, सर यहाँ से आते हैं।
1: तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया होगा, घर के पास ही आपको स्टेडियम मिल गया। तो आपने जब हॉकी को पहली बार चुना तो आपको कैसा लगा?
2: सर हमें बहुत अच्छा लगा सर, पहले तो हॉकी पसंद आई है स्टेडियम में
1: जी। इसके अलावा जब कभी आप खाली होती है तो जो नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं टीवी पे आते हैं, उनको अभी आप देखती होंगी?
2: सर फोन पे।
1: तो आपका भी कोई अच्छा प्लेयर है?
2: सविता पूनिया।
1: चलिए, आकाशवाणी अयोध्या की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने खेल में इसी तरह से अपना खेल निखारते रहें और अयोध्या जनपद का नाम रोशन करें। धन्यवाद आप सभी। और अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं और सबसे पहले चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर 28 जून को खेले गए ग्रुप ए के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की रेस से भारतीय टीम को बाहर कर दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में 7 महीने पहले 50 ओवर्स के एक दिवसीय मैच का वर्ल्ड कप जीतकर अपने नाम किया था। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने 171 रनों के लक्ष्य को एक ओवर बाकी रहते ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 27 गेंदों में 56 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 6 चौकों के साथ अंतिम ओवर में हरमनप्रीत ने 3 छक्के भी लगाए। आखिरी ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 23 रन बटोरकर टीम का स्कोर 170 तक पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। ग्रुप स्टेज में भारत ने 5 मैचों में से 3 मैच ही जीते, लेकिन अंतिम मुकाबले में हार के कारण टीम शीर्ष 2 में जगह बनाने से चूक गई और टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। वनडे विश्व चैंपियन भारतीय महिला टीम का भले ही T20 विश्व कप का सफर जल्दी खत्म हो गया, लेकिन टीम ने क्वालिफाई कर एशिया का कोटा हासिल कर लिया। साथियों, क्रिकेट में जब हम चैंपियन बनते हैं तो हमें पूरी टीम वर्क के साथ लगातार मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं और फिर से चैंपियन बनते हैं। आज मेंस क्रिकेट टीम में इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि 3 क्रिकेट की टीमें तैयार की जा सकती हैं, लेकिन महिला क्रिकेट टीम में वैसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने T20 के पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। 125 के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 13वें ओवर में ही पूरा कर लिया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 40 रनों से हराकर फाइनल में बीते रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला किया। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर बीते रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच महिला T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ये 4थी भिड़ंत थी। इसके पहले 3ों ही बार जीत ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगी और 4थी जीत भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही, उसने 7वीं बार खिताब जीता है। उसके अलावा इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड 1-1 बार चैंपियन बनी है। फाइनल में इंग्लैंड ने 20 ओवर्स में 150 रन ही बनाए, ये टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने 18वें ओवर्स में 3 विकेट खोकर बना लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से 7वीं बार 7वें महीने में ये जीत हासिल की। यही नहीं, वुमेन्स ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप भी 7 बार जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया टीम की विकेट कीपर बेथ मुनी को चुना गया। इस मैच में मुनी ने 64 रन बनाए। लिचफील्ड ने 16 गेंदों में 48 रन बनाए। इन दोनों ने मिलकर टीम के लिए 100 रन की पार्टनरशिप भी की। सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 5 जुलाई को मैनचेस्टर इंग्लैंड में 15 साल 99 दिन में इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 में अपना पहला मैच खेलकर सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव ने इंटरनेशनल क्रिकेट की सिर्फ 3री गेंद पर छक्का जड़ दिया। भारतीय पारी के 3रे ओवर में जोफ्रा आर्चर पहली बार वैभव के सामने आए। वैभव ने घुटना टेकते हुए पहली ही गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। ये उनके इंटरनेशनल करियर का पहला छक्का था। वैभव ने इस मैच में 10 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 14 रन बनाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आगाज किया। हालांकि उनका पहला इंटरनेशनल मैच जीत के साथ यादगार नहीं बन सका। इंग्लैंड ने 191 रन का टारगेट 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दूसरे यंगेस्ट प्लेयर भी बन गए हैं। पाकिस्तान के हसन रजा सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 14 साल 227 दिन की उम्र में डेब्यू कर लिया था। और उधर महान बल्लेबाज द वॉल के नाम से मशहूर और भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने आधिकारिक तौर पर भारत की अंडर 19 में अपना सफर शुरू कर दिया है। श्रीलंका में श्रीलंका अंडर 19 के खिलाफ खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल वनडे मुकाबले

0: में अन्वय को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जो उनके क्रिकेट करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 के रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। राउंड ऑफ 32 की कड़ी चुनौतियों और उलट फेरों के बाद अब टूर्नामेंट में केवल शीर्ष 16 टीमें ही बची हैं, जिनके बीच खिताबी जंग और तेज हो गई है। राउंड ऑफ 32 का सबसे चर्चित मुकाबला अर्जेंटीना और केप वर्डे के बीच रहा। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने गोल किया, लेकिन केप वर्डे ने शानदार संघर्ष करते हुए मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। अंत में अर्जेंटीना 3-2 से जीत कर अगले दौर में पहुंच गया। राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली टीमों में कनाडा, ब्राजील, पैराग्वे, मोरक्को, नॉर्वे, फ्रांस, मेक्सिको, इंग्लैंड, बेल्जियम, अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, मिश्र, अर्जेंटीना और कोलंबिया शामिल हैं। सभी टीमों ने अपने अपने राउंड ऑफ 32 मुकाबले जीतकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और फ्रेंड्स, अब टूर्नामेंट पूरी तरह से नॉकआउट चरण में पहुंच चुका है, जहां हर मैच करो या मरो का होगा। अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, जबकि मोरक्को, नॉर्वे, कनाडा और कोलंबिया जैसी टीमें उलटफेर करने की ताकत रखती हैं। राउंड ऑफ 16 के विजेता क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे, इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल के लिए संघर्ष करेंगे। अब हर मुकाबले में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जिससे प्रतियोगिता का रोमांच और बढ़ता जाएगा। निशानेबाजी। होनहार निशानेबाज जतिन ने जर्मनी में आयोजित जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत और कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा दिया है। जतिन ने कड़ी मेहनत की, उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अर्जित किए। खंडवा जिले के 18 वर्षीय कुश्ती खिलाड़ी नीरज पटेल ने थाईलैंड में एशियन कुश्ती में जापान के नारुसेम्बा को 4-3 से हराकर भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया। नीरज ने अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में प्रदर्शन करते हुए ये पदक हासिल किया। भारतीय हॉकी टीम ने 28 जून को लंदन में खेले गए अपने अंतिम FIH प्रो लीग मुकाबले में इंग्लैंड को शूटआउट में 3-2 से हराकर अभियान का शानदार समापन किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच मुकाबला गोल रहित रहा, इसके बाद भारत ने शूटआउट में जीत दर्ज कर बोनस अंक हासिल कर लिया। शूटआउट में भारत की ओर से अभिषेक, शिलानंद लाकरा और हार्दिक सिंह ने अपने प्रयास से गोल किए। वहीं शानदार डिफेंसिव प्रदर्शन के लिए डिफेंडर संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम ने पूरे अभियान में 4 मैच जीते, 5 ड्रॉ खेले, 2 शूटआउट बोनस अंक अर्जित किए और 7 मुकाबलों में हार का सामना किया, जबकि पाकिस्तान अपने सभी 16 मुकाबले हार कर सबसे निचले स्थान पर रहा। बेल्जियम ने टूर्नामेंट चैंपियन के रूप में 39 अंकों के साथ लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया है। आकाशवाणी अयोध्या केंद्र पर तैयार किए गए खेल दर्पण कार्यक्रम को समाप्त करने की अब अपने बरसों पुराने रेडियो मित्र AJ अमरजीत को आज्ञा दीजिए। खेल दर्पण में वाचन, संकलन और संपादन अमरजीत सिंह का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता सरस्वती पाठक। आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपनों का सबका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आज के कार्यक्रम से अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: दर्पण। अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए विदुषी मुनीर खातून बेगम की गाई राग मिश्र खमाज में ठुमरी और दादरा। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी मुनीर खातून बेगम की गाई राग मिश्र खमाज में ठुमरी, इसके बाद आप सुनेंगे दादरा।

अभी आप सुन रही थी सुश्री मुनीर खातून बेगम की गाई राग मिश्र खमाज में ठुमरी और दादरा, आपके साथ तबले पर संगत की पंकज कुमार श्रीवास्तव ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।